मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है अब हमारे केंद्र से प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा में आज आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र अरुणा वर्मा। सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी 2 दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्ण

0: पूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं समूह स्वर में प्रस्तुत देशगान से।

कार्यक्रम वंदना में अब आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडकर और साथियों के स्वरों में ये गणेश वंदना।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं संजीव अभ्यंकर के स्वर में ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे संजीव अभ्यंकर के स्वर में ये भक्ति रचना। कार्यक्रम वंदना में अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले के स्वर में ये भक्ति गीत।

0: व्यास के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन में डॉक्टर विजय शर्मा के विचार वाणी का महत्व विषय पर। वाचक स्वर है यतीन्द्र चतुर्वेदी का।
1: मनुष्य के जीवन में वाणी का विशेष महत्व है। वाणी ही उसे महान बना देती है और वाणी ही क्लेश कलह का कारण बनती है। वास्तव में ये वाणी क्या है? वो जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावों और स्वभाव को प्रकट करते हैं। वाणी से व्यक्तित्व की भी पहचान होती है। मृदु वाणी सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि क्रोध के समय की कर्कश वाणी सबकी आलोचना का शिकार बनती है। इसलिए महापुरुषों ने वाणी को व्यक्तित्व का आईना भी कहा है। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजदय वचन कठोर। निश्चित रूप से मीठी वाणी से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका अपनी वाणी पर बिल्कुल संयम नहीं है। उनके मन में जो भी आता है बोल देते हैं, चाहे फिर सामने वाले पर इसका कुछ भी प्रभाव पड़े। ऐसे लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। शायद इसीलिए मितभाषी को वाचाल से अच्छा बताया गया है। मितभाषी यदि मृदुभाषी और हितभाषी हो तो सोने पे सुहागा होगा। मृदुभाषा में कहे गए वचन अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, जबकि क्रोध में कहे गए वचन पत्थर के समान कठोर प्रहार करते हैं। हमारी वाणी हमारे हृदय का सच्चा आईना है। हृदय में जैसे भाव होते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, वे सामने आ ही जाते हैं। आज हम अपनी वाणी के सकारात्मक प्रभाव से अपने टूटते रिश्तों को बचा सकते हैं। कविता भी हमारे हृदय की वाणी है और भक्तिकाल के भक्तों और संतों ने अपने हृदय की इसी वाणी से उस समय तथा वर्तमान समय में भी कितने ही लोगों को रास्ता दिखाया है। इन संतों तथा भक्तों ने अपनी वाणी को व्यवहार में भी प्रयोग किया है, जो कहा उसे करके भी दिखाया, क्योंकि ऐसी वाणी का कोई प्रभाव नहीं होता जो आचरण में न हो। आज के मनुष्यों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए बड़े बड़े महात्माओं के उपदेशों से भी समाज में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। वाणी और आचरण में एक रूपता व्यक्तित्व को प्रामाणिक बनाते हैं। पौराणिक कथाओं में इस बात को दिखाया गया है कि कथनी और करनी की एक रूपता से कितने ही पौराणिक पात्र महान बन गए हैं। इसलिए आज वाणी को तराशने, सुधारने और निखारने की जरूरत है। परिवार, समाज और देश स्वस्थ संबंधों से चलता है। आपसी संबंध जीवन की रीढ़ हैं, लेकिन आज रिश्तों में दूरियां आती चली जा रही हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण असंयमित वाणी का प्रयोग करना है। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई आदि संबंधों में संवाद अंतराल की वजह से परिवार और समाज में बिखराव दिखाई दे रहा है। ऐसे में वाणी के जिस संयम की ओर संतों ने बार बार आग्रह

0: किया है उससे मनुष्य अपमान और तिरस्कार से बच सकता है और अपने परिवार और समाज को एक नई दिशा दे सकता है। वर्तमान तकनीक के इस युग में वाणी का महत्व और भी अधिक हो गया है। इंटरनेट, मोबाइल जैसे साधनों के आ जाने से व्यक्ति की निजता बढ़ी है और वो एकांतवासी होता जा रहा है। वो बोलने की अपेक्षा लिखने में अधिक विश्वास करने लगा है और उसमें भी कम से कम शब्दों में अपनी बात कहकर छुट्टी पा लेना चाहता है। इससे उसकी प्राइवेसी तो बची रहती है लेकिन संबंधों में निरंतर एक अंतराल आ जाता है। पहले जहां वो मन की बात अपनों से करता था वहां आज वो सोशल मीडिया पर मैसेज करके मन हल्का कर लेता है। ये ठीक है कि तकनीक हमें आगे ले जाती है, हमें आधुनिक बनाती है, मगर यदि समय रहते हम नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं जब हम हर व्यक्ति अपने आप को अकेला पाएगा। इस अकेलेपन के कारण ही आज मानसिक बीमारियों की भरमार है। ईश्वर ने मनुष्य को वाणी का वरदान इसलिए ही दिया है कि वो इसके माध्यम से दूसरों तक पहुंचे, इसलिए हम वाणी के महत्व को समझें और सरल व मृदु बोलने का प्रयास करें तथा विपरीत परिस्थितियों में मौन रहना सीखें, सहनशील बने। एक बुंदेली कविता है, बोली को बोली न बोलो, बोली गोली सी गलत है।
1: चिंतन में अभी श्रोता सुन रहे थे वाणी का महत्व विषय पर डॉक्टर विजय शर्मा के विचार। वाचक स्वर था यतीन्द्र चतुर्वेदी का। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस का।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अर्जन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा में सामूहिक चर्चा, पशुओं को लंगड़ी ज्वर से कैसे बचाएं, जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, बरसात के मौसम में नमी और गर्मी का वातावरण बना रहता है, मौसम में उमस रहती है, मक्खी मच्छरों की अधिकता से पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे पशुओं में रोग बीमारियां तीव्रता से फैलने लगते हैं। बरसात के मौसम में होने वाले रोगों में लंगड़ी ज्वर प्रमुख है। लंगड़ी ज्वर प्रमुख रूप से गोवंशीय रोग है, लेकिन कभी कभी बकरी और दूसरे पशुओं में भी हो जाता है। नवजात बछड़ों में 6 माह से 2 वर्ष के पशुओं में प्राय यह रोग हो जाता है। रोग का प्रमुख कारक क्लास्ट्राइडियम सोवियाई नामक जीवाणु है। यह जीवाणु वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों में भी जीवित बना रहता है। रोग का संचरण प्रमुख रूप से जीवाणुओं से, दूषित चारागाह से, आहार से, पानी, घाव, मक्खी, मच्छर, किलनी भी रोग को फैलाने में सहायक होते हैं। रोग के जीवाणु पशु के शरीर में खान पान द्वारा आंत में पहुंच जाते हैं, श्लेष्मा द्वारा मांसपेशियों में पहुंचकर कुछ दिनों सुस्त पड़े रहते हैं और प्रवेश पाकर 15 दिन में रोग फैलाने में सक्षम हो जाते हैं। रोगी पशु में अचानक बुखार आ जाता है। रोग के प्रमुख लक्षणों में पशु लंगड़ाकर चलने लगते हैं, आहार के प्रति अरुचि हो जाती है, पशु स्वस्थ हो जाते हैं, वृद्धि करते हुए जीवाणुओं से विष निकलता है जो सूक्ष्म रक्त वाहिनियों की अंतःकला में क्षति उत्पन्न करता है, जिससे पशु की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। पुट्ठों, गर्दन, जांघों की मांसपेशियों में चरचराहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। जहां से चरचराहट की आवाज आती है वहां त्वचा हरी या नीली हो जाती है। मांसपेशियों में छलनी के आकार के छिद्र बन जाते हैं। लंगड़िया रोग में जहरवात उत्पन्न होता है, जिससे सड़े हुए बसा की दुर्गंध आती है। मुख्य छत स्थल में शुष्क गलन होता है, लेकिन इसके आसपास सूजन भी होती है। सूजन का द्रव पीला या रक्त मिश्रित हो जाता है, नाक से झाग निकलने लगता है, रक्त स्राव पिनकी नोक से लेकर बड़े बड़े चक्तों के रूप में मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। ज्यादातर रोग पशुओं में बरसात के मौसम में ही होते हैं, इसलिए रोग से बचाव के लिए गर्मियों के मौसम में ही टीकाकरण करवाना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक रूप से रोग के प्रति प्रतिरक्षा नहीं हो पाती है। जैसे ही रोग के लक्षण पशु में दिखाई दें, पशु चिकित्सक से संपर्क करके रोग की रोकथाम का प्रबंध करना चाहिए। रोग से बचाव के लिए जहां पर पशुओं को बांधते हैं, पशुशाला की स्वच्छता पर अधिक ध्यान दें। पशुशाला में मक्खी मच्छर किलनी न पनपने पाएं, इनके नियंत्रण के लिए

0: समय समय पर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहना चाहिए। जहाँ पर पशुओं को बांधते हैं वहाँ गोबर और मूत्र को हमेशा हटाते रहना चाहिए। पशुशाला ऊंचाई पर बनानी चाहिए जिससे बरसात का पानी एकत्रित न होने पाए। पशुओं का आहार पूर्णतः स्वच्छ हो। बरसात के मौसम में अधिक नमी के कारण चारे में शीघ्र ही फंगस लगने लगता है। फंगस लगा हुआ चारा पशुओं को न खिलाएं। पशुओं को चारागाह में चरने से रोकना चाहिए। भीगा हुआ चारा भी पशुओं को न खिलाएं। पानी की स्वच्छता पर अधिक ध्यान रखें। कुछ अंतराल के बाद पशुओं को नमक का घोल बनाकर पिलाते रहें जिससे पशुओं की पाचन क्रिया सही रहे, क्योंकि बरसात के मौसम में पशुओं की पाचन क्रिया भी कमजोर हो जाती है। रोगों से बचाव का सही तरीका, गर्मियों के मौसम में पशुओं में टीकाकरण अवश्य करवाएं। ये टीके पशुओं में एक दो सप्ताह में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देते हैं और एक वर्ष तक पशुओं में रोग फैलने की संभावना बहुत कम रहती है। पशुओं में समय समय पर टीकाकरण करवाते रहें जिससे पशु भी स्वस्थ रहेंगे और कोई भी दुर्घटना घटने की संभावना नहीं रहेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा में सामूहिक चर्चा, पशुओं को लंगड़ी ज्वर से कैसे बचाएं। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव साथी आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन EIR से भी। लीजिए अब सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
3: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
4: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
3: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
4: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
3: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
4: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
3: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
5: ए भाई जरा देख के।

प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।

0: सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं। रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी संसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री प्रधान मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडम मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ओवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र की वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही श्रोता हमसे

सुबह 7:20 पर श्रोता सुनेंगे कहानी अनुदी। कहानीकार हैं नीरजा वर्मा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता लेंगे सुबह 7:30 पर। प्रातः 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी श्वेता शर्मा। आज आप सुनेंगे इनकी गाई कुछ भक्ति रचनाएं। सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रस्तुत करेंगे प्रातः 9:00।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे डॉक्टर हरिचरण वर्मा। आप सुनेंगे राग नटभैरव में शास्त्रीय गायन। प्रसारण समय रहेगा 9:30। श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनेंगे 10:05 पर। दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आप सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण। अपराह्न 1 बजे महिला कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति। चर्चा होगी कैसा हो हमारा वित्तीय व्यवहार, मौसम के अनुसार घर की साज सज्जा और खान पान से बेहतर बनाए इम्यूनिटी। साथ ही सुनेगा सुश्री भारती जैन से काव्य पाठ।

शाम 5 बजकर का 2 मिनट पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी आज प्रसारित होगा। आज आप सुनेंगे आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति, चर्चा होगी साइबर बुलिंग और युवाओं के लिए कानूनी उपाय। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 5 बजकर 33 मिनट पर और शाम 6 बजकर 30 मिनट पर। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 6 बजे।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होता है शाम 7:20 पर। चर्चा होगी प्रधानमंत्री जनधन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता और सुनिएगा साथ ही कार्यक्रम में भेंट वार्ता, सफेद दाग कारण लक्षण और बचाव डॉक्टर कमल भदौरिया की। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर श्रोता आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। कार्यक्रम चर्चा का विषय है आप सुनेंगे रात 9:30 पर और रात 10 बजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी सुनिएगा रात 10:30 पर। अभी श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी ग्वालियर और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार।

0: पति राघव राजा राम पति पावन सीताराम।
1: महात्मा गांधी एक नाम नहीं एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
0: सबको सम्मति दे भगवान।
1: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में करेंगे भूमि पूजन। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दोनों देशों के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और समुद्री संबंधों को रेखांकित किया। श्री मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी के लिए गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस विजन के 5 प्रमुख स्तंभ सभ्यता का जुड़ाव, सभ्यता विकास, सुरक्षा, समुद्री समृद्धि और ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दोनों का अनुभव वैश्विक स्तर पर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इंडोनेशिया के एमास 2045 विजन और भारत के विकसित भारत 2047 संकल्प को एक दूसरे का पूरक बताया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की और ब्रिक्स में इंडोनेशिया की सदस्यता का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ और भारत प्रशांत क्षेत्र को नई दिशा देंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
0: देश में सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की गरिमामय उपस्थिति में दशकों पुराने नर्मदा जल विवाद का कल सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण लागत साझा करने से जुड़े लंबित भुगतानों का वन टाइम सेटलमेंट करता है। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा, इसे जल सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण राज्यों में आपसी समझ पड़ी है, जिससे राष्ट्रीय नुकसान को रोका जा सका है। इससे पहले अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल रक्षा, रेल, कृषि मंत्रियों से भी मुलाकात कर चर्चा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियोगोग एरिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस नए संयंत्र में 272 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहाँ प्रतिवर्ष 6000 निर्माण उपकरणों का उत्पादन होगा, जिससे आयात कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कि लियो गोंग वर्ष 2008 पीथमपुर में 8 से पीथमपुर में प्रमुख ऋण गारंटी चरण के 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी है और 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक। संवाददाता ने बताया कि शुरू की गई इस योजना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम एमएसएमई से अधिक लाभान्वित हुए हैं।
2: मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इससे वित्तीय संस्थानों को आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंचने निश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है।
3: ये समाचार आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक थी एक्स प्लेटफॉर्म पर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। आप अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
4: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर SI और सूबेदार के पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। विभाग द्वारा कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें से योग्यता के आधार पर 436 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चुन लिया गया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में संजय परमार ने टॉप कर पहला स्थान हासिल किया है। इस बड़ी कामयाबी और भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने पर DGP कैलाश मकवाणा ने खुशी जताई है। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई जगहों पर खूब पानी बरस रहा है तो कुछ स्थानों में पानी की कमी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर और सागर सहित अधिकांश संभागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। झाबुआ जिले में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। उधर मंडला जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए कलेक्टर राहुल धोटे ने नर्मदा घाटों और शहर के जलभराव वाले इलाकों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे सक्रिय रहने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं गुना जिले में 1 जून से कल तक कुल 232.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। आज बड़वानी, धार, गुना सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। कल रात नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया। बता दें कि शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। सीरीज के आखिरी 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड का सामना करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस सांची के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। खंडवा जिले में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत मैराथन और साइबर रन का आयोजन कर नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा ऐप के प्रति जागरूक किया गया। आगर मालवा जिले में आगामी सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग को अधिक से अधिक किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले में युवाओं और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आज 1 दिवसीय तेजस कार्यशाला का आयोजन कर स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग पर मार्गदर्शन दिया गया। इंदौर जिले में आयोजित रोजगार मेले में 12 प्रतिष्ठित निजी कंपनियों द्वारा 300 युवाओं को विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए चयनित कर रोजगार दिया गया। मंडला जिले में MSME उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय कंपोजिट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजनाओं और डिजिटल कॉमर्स पर लाइव सेवाएं मिलेंगी। भोपाल जिले में नगर निगम ने जिला प्रशासन के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध अतिक्रमण हटाए और 5 जर्जर मकानों को जमींदोज किया। सिंगरौली जिले में बलिया नाला में कोयला युक्त दूषित पानी बहाने पर कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खदान प्रबंधन पर 63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। गुना जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द खरीदी के लिए 4 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां नोडल अधिकारियों की निगरानी में पारदर्शी व्यवस्था रहेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अगला
1: मीडियम वेव साथी मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए कहानी अनूदी। कहानीकार हैं नीरजा वर्मा।
2: हमारे मन पर बचपन और किशोरावस्था से कभी कभी कोई ऐसी छवि अंकित हो जाती है जो सारी जिंदगी हमारे साथ साथ चलती है। कुछ ऐसी ही छवि थी अनुदी की। अनुदी का नाम तो अनुप्रिया था, पर सबके लिए वो अनुदी ही थी, मेरे लिए भी। अनुदी मेरे पड़ोस में रहती थी। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था जिसे देखकर कोई भी पहली नज़र में ही उनका मुरीद हो जाता था। गेहुआ रंग, बोलती हुई आंखें, उनका पहनावा, उनकी बातें, सब कुछ उनकी ओर आकर्षित करते थे। मैं उनसे बहुत प्रभावित थी। अपनी पढ़ाई व अपने कामों से फारिग होकर मैं उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। वो भी मुझे बहुत चाहती थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। बहुत होशियार थी हर काम में। एक दिन अचानक मुझसे पूछ बैठी, शुभी मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नहीं दी, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैंने भी तुरंत उत्तर दिया। मैं तो उनका साथ छोड़ना ही नहीं चाहती थी। फिर एक दिन उनकी शादी हो गई। मैं बहुत रोई थी उनके जाने पर। पहली बार जब वो मायके आईं तो कुछ बदली बदली सी लगी। मेरी उम्र उस समय ऐसी नहीं थी कि मैं ज़्यादा कुछ समझ पाती। धीरे धीरे उनका मायके आना कम हो गया। मेरी भी शादी हो गई और मैं अपनी घर गृहस्थी में मगन हो गई। लेकिन दिल के किसी कोने में अनुदी हमेशा विराजमान रहीं। मेरी शादी उसी शहर में हुई थी जहां अनुदी थी, पर उनका पता ठिकाना मालूम नहीं था, क्योंकि उनकी शादी के बाद ही उनका परिवार पड़ोस से चला गया था। जब मेरी शादी इस शहर में हुई तो अनुदी की यादें फिर ताज़ा हो गईं, पर कैसे ढूंढती उन्हें। वक्त बीतता रहा, दो बच्चों की माँ बन गई। अब तो बच्चे भी बड़े हो रहे थे। समीर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। समीर से भी मैं अनुदी की बहुत बातें करती थी। एक दिन बाजार में मेरी नज़र एक महिला पर पड़ी। पहचानने में थोड़ा सा वक्त लगा। अरे ये तो अनुदी हैं, मैंने उन्हें पुकारा। आवाज़ सुनकर उन्होंने मुड़कर देखा तो मैं उन्हें देखती ही रह गई। क्या ये वही अनुदी हैं? आज की अनुदी और पहले की अनुदी में कोई साम्य ही नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरे मन में उनकी छवि अंकित थी, इसीलिए मैं उन्हें पहचान पा रही थी। बुझा बुझा सा चेहरा, सलवटें पड़ी हुई साड़ी, घिसी हुई चप्पलें, ऐसी तो अनुदी कभी ना थी। मेरा घर पास ही था। मैं ज़िद करके अनुदी को घर ले आई। मुझे देखकर वो भी बहुत खुश हुई। घर आकर जल्दी जल्दी चाय और नाश्ता उनके सामने रखा। बच्चे स्कूल गए हुए थे और समीर अपने ऑफिस। मौका था इत्मीनान से बात करने का। मैंने उनसे शिकायत भरे स्वर में कहा, दी ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप नहीं जानती मैं आपको कितना याद करती हूँ, या यूं कहिए आप मुझसे कभी अलग हुई ही नहीं। मेरे मानस पटल पर आज भी आपकी वही छवि अंकित है। आपके इस रूप की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। शुभी, कई बार जिंदगी में ऐसे वाक्य होते हैं जो अपनी सोच से परे होते हैं, दी एक गहरी सांस लेकर बोली। दी बताइए ना, ऐसा क्या हुआ? मैं भी सब कुछ जानना चाहती थी। पहले उन्होंने टालने की कोशिश की, पर मेरे बहुत इसरार करने पर उन्होंने बताना शुरू किया। बस ये समझ लो कि मेरी किस्मत में यही लिखा था। कहाँ से शुरू करूँ? शादी

अभी आपने सुना फिल्म कभी कभी का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, बोल थे साहिर लुधियानवी के और धुन तैयार की थी खयाम ने। श्रोता साथियों, आज मशहूर अभिनेत्री नीतू कपूर का जन्मदिन है। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर ने बाल कलाकार के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया। उन्होंने दीवार, कभी कभी और अमर अकबर एंथोनी जैसी प्रतिष्ठित और लोकप्रिय फिल्मों में अपने चुलबुले अभिनय के लिए अपने आप को स्थापित किया। नीतू कपूर का मूल नाम हरनीत कौर था। उन्होंने महज 5 साल की उम्र में फिल्म सूरज से फिल्मी दुनिया में पदार्पण किया। दो कलिया में उनके दोहरे किरदार को बहुत सराहना मिली। 1973 में उन्होंने फिल्म रिक्शेवाला से मुख्य अभिनेत्री के रूप में फिल्मों में पहला ब्रेक लिया। आइए आपको सुनवाते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का ये गीत। आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल स्वरों में, गीतकार हैं आनंद बख्शी, धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने।

फिल्म अभिनेत्री नीतू कपूर दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर की पत्नी हैं। ऋषि कपूर के साथ उनकी जोड़ी न सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि रियल लाइफ में भी बेहद सफल रही। फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर उनकी दोस्ती हुई और 22 जनवरी 1980 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद नीतू जी ने फिल्मों से दूरी बना ली। आइए अब आपको सुनवाते हैं ऋषि कपूर के साथ फिल्माया गया फिल्म खेल खेल में है का फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने।

0: हमें देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ, तो हो जाए
1: हो जाए।

अभी आप सुन रहे हैं फिल्म अभिनेत्री नीतू कपूर के जन्मदिन पर उनके फिल्माए कुछ फिल्मी गीत। श्रोता मित्रों, फिल्म कभी कभी के दौरान जब ऋषि कपूर पेरिस गए तब उन्हें नीतू की बहुत याद आई। वहीं से उन्होंने नीतू को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें लिखा था, ये सीखनी बड़ी याद आती है। बॉलीवुड में प्रेम विवाह की परंपरा रही है और नीतू और ऋषि कपूर के प्रेम विवाह की मिसालें दी जाती हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं उन्हीं पर फिल्माए फिल्म धन दौलत का ये गीत, बोल है मजरू सुल्तानपुरी के, और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
3: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
2: मतलब?
3: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
2: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
4: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: फिल्म अभिनेत्री नीतू कपूर वर्ष 2009 में 26 साल के लंबे ब्रेक के बाद फिल्म लव आजकल से वापसी की। इसके बाद उन्हें अपने पति ऋषि कपूर के साथ दो दुनी चार और बेशरम जैसी फिल्मों में देखा गया। पति के निधन के बाद वो फिल्मों में कुछ कम सक्रिय हैं, लेकिन अभी भी वे सोशल मीडिया और फिल्मों में थोड़ा बहुत काम करती हैं। उनके चुलबुले अभिनय के जरिए हम आज भी उनके जिंदा दिल को याद कर रहे हैं उनके अभिनीत फिल्मों के गीतों के जरिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म दीवार का ये गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। बोल साहिर का है और धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म याराना के इस गीत के साथ ही फिल्म अभिनेत्री नीतू कपूर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अब दे अनुमति। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी देर में आकाशवाणी का समाचार प्रभाग।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाए।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार

0: प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया

0: प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त

0: की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में तीन व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
2: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership.

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार श्वेता शर्मा के गाए कुछ भक्ति रचनाएं। आइए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये अगली प्रस्तुति।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोता इस समय सुन रहे हैं श्वेता शर्मा की गायी कुछ भक्ति रचनाएं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार श्वेता शर्मा के गाए कुछ भजन। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही आप हमसे जुड़े हुए थे मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR से भी। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित इस घंटे की खास खबरें।

0: खास खबरों के बाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया तीसरा। दोनों का अनुभव वैश्विक स्तर पर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इंडोनेशिया के अमास 2045 विजन और भारत के विकसित भारत 2047 संकल्प को एक दूसरे का पूरक बताया। दशकों पुराने नर्मदा जल विवाद का कल सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रक्षा, रेल और कृषि मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियोगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। इस नए संयंत्र में 272 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहां प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों मुख्य रूप से एक्सकेवेटर का उत्पादन होगा। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर भर्ती के लिए कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिनमें से 436 उम्मीदवारों को चुन लिया गया है। डीजीपी कैलाश मकवाना के अनुसार पूरे 8 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर्स की ये बड़ी भर्ती हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के बड़वानी, धार, गुना, सागर, विदिशा, रायसेन सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच के तीसरे मुकाबले में कल इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया। सीरीज के आखिरी दो मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव साथी मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 9:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुन रहे सभी श्रोता साथियों को अरुणा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता मित्रों, देर से सही, धीरे धीरे ही सही, रुक रुक कर ही सही, लेकिन बारिश की बूंदों ने हमारे शहर में भी दस्तक दे ही दी।

बारिश का मौसम श्रोता साथियों हमारे मन को उल्लास से भर देता है। हम कितने ही दुखी हों, हमारा मूड कितना ही खराब क्यों ना हो, बारिश की बूंदें देखकर, उन्हें महसूस करके हमारा मन खुश हो जाता है। शरीर पर पड़ती ठंडी बूंदें हमें ये एहसास कराते हैं कि यही जीवन है। जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, हमारा मन भी आनंदित हो जाता है। मिट्टी की खुशबू, तन को छूती रिमझिम फुहारें और ठंडी ठंडी हवाएं, इस खिलते मौसम में ऐसा लगता है जैसे भागती जिंदगी की रफ्तार अचानक थम सी गई है। श्रोता दोस्तों, बारिश अक्सर हमें घरों के भीतर रोक भी देती है। बच्चों का स्कूल जाना टल जाता है तो ऑफिस का काम भी ऑनलाइन हो जाता है। बहुत से लोग इसे आइसोलेशन की तरह महसूस करते हैं, लेकिन समय को हम सकारात्मक रूप से जिए तो यह रिश्तों को नया जीवन देने का अवसर बन सकता है। श्रोता मित्रों, यह वह समय है जब हम अपनों के साथ समय बिता सकते हैं, माता पिता के साथ बैठ सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, जीवन साथी के साथ एक कप चाय की चुस्की भी ले सकते हैं। हमेशा हम समय की शिकायत करते हैं, तो प्रकृति ने हमें समय दिया है, इस ब्रेक में अपने को भरपूर समय दें।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वाली में श्रोता मित्रों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। श्रोता साथियों, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण अभियान जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम है कैच द रेन। ये एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन अभियान है। इसे जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा लागू किया गया है। इस अभियान का मुख्य मूल मंत्र है, बारिश के पानी को वहीं थामे जहां वह गिरता है और जब वो गिरता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं, बारिश के पानी को सहेजना। श्रोता मित्रों, तेजी से घटते भूजल स्तर और पानी की बढ़ती किल्लत को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बारिश के पानी की एक एक बूंद को सहेजना है, ताकि पानी को नालियों में बहने से रोका जा सके। इस पानी का उपयोग दैनिक कार्यों में किया जा सकता है और इसे जमीन के अंदर भेजकर भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है। कैच द रेन अभियान की मुख्य विशेषताएं हम इस तरह समझ सकते हैं कि बारिश को वहीं पकड़े जहां हो, ये इसकी टैगलाइन है। सरल शब्दों में इसे हम कह सकते हैं, और ये अभियान देश भर के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में चलाया जाता है। कैच द रेन अभियान मुख्य रूप से प्री मानसून और मानसून के दौरान संचालित किया जाता है। इस अभियान के अंतर्गत बहुत से कार्य होते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी छतों और आंगनों के बारिश के पानी को पाइप के जरिए जमीन के अंदर बने गड्ढों में उतारना, तालाबों और कुओं का जीर्णोद्धार, यानी पुराने तालाबों की सफाई करना, उनकी भंडारण क्षमता बढ़ाना और पारंपरिक कुआं बावड़ियों की मरम्मत करना, खेतों में मेड़बंदी करना, जैसे खेतों का पानी खेतों में ही रोकने के लिए खेती के किनारे मेड़ बनाना, पानी के प्राकृतिक और नए स्रोतों का अमृत सरोवर के अंतर्गत निर्माण करना। अभियान को सफल बनाने के लिए देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की तकनीकी जानकारी, दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन कई बार आम जन में ये बात महसूस की जाती है कि इतना जल संरक्षण जरूरत क्यों है करने की। इसके लिए सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन के दौर में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। भूजल स्तर सही करने से

किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलता है। जल चक्र को संतुलित बनाए रखने के लिए वर्षा जल का संचयन करना बहुत जरूरी है और ये इस कैच द रेन अभियान का मूल मंत्र है।

श्रोता मित्रों, आज के युवाओं के लिए रोजगार एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है। पढ़ लिखने के बाद भी आसानी से नौकरी पाना एक दुष्कर कार्य होता जा रहा है हमारे युवाओं के लिए। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ रोजगार सूचनाएं, कुछ जानकारियां आपके रोजगार से जुड़ी हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिस

सर के 1500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और इसके लिए आज अंतिम तारीख दी गई है। अभ्यर्थी आवेदन पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पीओ की जॉब पा सकते हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री जरूरी है और 21 से 30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। SBI के करियर पोर्टल पर जाकर SBI PO 2026 भर्ती लिंक खोलकर नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, ऑनलाइन शुल्क जमा करें और आवेदन सबमिट कर उसकी प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। इसके अलावा हमारे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की तलाश में एक और दूसरी खबर है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से मैनेजमेंट ट्रेनी जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इच्छुक पद और पात्र उम्मीदवार CCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 9 से शुरू होकर 24 जुलाई तक जारी रहेगी। इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार ने पदानुसार BE, BTech, BSc, BCom, MCA, MBA, CA, CM आदि किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 से 32 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। सभी उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भर सकते हैं। ऑफलाइन या किसी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फॉर्म के साथ जनरल EWS, OBC और 1500 रुपये और SC ST PWCX सर्विसमैन के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है। आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है। इस भर्ती में चयन के लिए उम्मीदवारों को रिटर्न टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन से होकर गुजरना होगा। सभी चरणों में सफल अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। श्रोता साथियों, आजकल युवाओं में नशे की प्रवृत्ति एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। तनाव, साथियों के दबाव और गलत संगति के कारण युवा शराब, सिगरेट और ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं। ये लत न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद करती है बल्कि आपराधिक घटनाओं और पारिवारिक विघटन का मुख्य कारण भी बनती जा रही है। आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारी युवा पीढ़ी है, लेकिन कितनी दुखद बात है कि आधुनिकता की दौड़ और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के युग में युवा वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहा है। किशोर अवस्था में और युवा अवस्था में उत्सुकता, तनाव, बेरोजगारी और दोस्तों का दबाव युवाओं को नशे की पहली खुराक लेने के लिए प्रेरित करते हैं। फिल्मों और सोशल मीडिया के नशे के ग्लैमरस चित्रण ने भी इस प्रवृत्ति को सामान्य बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन हम इस सबसे बच सकते हैं जागरूक रहकर, सचेत रहकर, अच्छी बातों को अपनाकर और नशे की लत को दूर रखकर। नशे की लत प्रभाव विनाशकारी है। इसके कारण युवा अपने करियर और पढ़ाई से भटक जाते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से खोखले होने के साथ साथ व्यवसाय और आक्रामकता के शिकार हो जाते हैं। नशे की आपूर्ति के लिए युवा चोरी और हिंसा जैसे अपराधों की ओर भी मुड़ सकते हैं, जिससे न केवल उस युवा का बल्कि पूरे परिवार का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। श्रोता मित्रों, इस समस्या से निपटने के लिए हमें बहुत सारे बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। माता पिता इस बारे में अपने बच्चों से खुलकर बात करें, उन्हें अपना सहयोग प्रदान करें। इस समस्या से निपटने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों से संवाद
स्थापित करते रहें ताकि वे तनाव या डिप्रेशन में अकेलापन महसूस ना करें। इसके साथ ही सरकार द्वारा नशीली दवाओं की अवैध तस्करी पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया जाता है और लगाना चाहिए भी। अधिक संख्या में युवाओं के लिए व्यसन मुक्ति केंद्र स्थापित करने चाहिए। युवाओं को भी समझना चाहिए कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। स्वस्थ जीवन, योग, खेल और सकारात्मक सोच अपनाकर ही हम युवा पीढ़ी को इस दलदल से निकाल सकते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है।

श्रोता साथियों, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग मेघ और मेघ मल्हार को बारिश का यानी वर्षा का राग माना जाता है। सदियों से इन्हें बरसात के मौसम में गाने की परंपरा रही है। इसकी खुशबू का नाम ही पहली बारिश के साथ मिट्टी से आने वाली खुशबू को पेट्रिकोर कहा जाता है। ये मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया और पौधों के प्राकृतिक तेलों से मिलकर बनती है। बारिश की बूंदें आंसू जैसी नहीं होती। अक्सर हम दोस्तों इस बात को महसूस ही नहीं कर पाते कि फिल्मों में बारिश की बूंदें आंसू के आकार की दिखाई जाती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार असल में वे छोटी छोटी होने पर गोल और बड़ी होकर चपटी होती हैं। बारिश की आवाज़ कई लोगों में कॉर्टिसोल यानी हार्मोन का स्तर कम करने और दिमाग को शांत करने में मदद करती है। इसी कारण इसे प्राकृतिक वॉइस नॉइज भी कहा जाता है। जिन लोगों की बारिश से अच्छी यादें जुड़ी होती हैं, उनके दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन की गतिविधि बढ़ सकती है। उनके लिए बारिश खुली खुशी लेकर आती है और पानी की भाप सीधे बूंद नहीं बनती, वो पहले धूल, समुद्री नमक और धुएं जैसे सूक्ष्म कणों पर बनती है, जमती है, तब जाकर बारिश की बूंद बनती है। कुछ ऐसी ही बातें हैं जिन्हें हम कई बार नहीं समझ पाते और कोशिश करते हैं कि बारिश आखिर होती कैसे है। आकाशीय बिजली में हवा में मौजूद नाइट्रोजन को ऐसे यौगिकों में बदल देती है जो बारिश के साथ मिट्टी में मिलकर पौधों के लिए प्राकृतिक खाद का काम करती है। श्रोता मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा स्थायित्व है और सत्य ही परिवर्तन है। हम आषाढ़ में प्रवेश कर चुके हैं और यह बदलाव बताता है कि कोई भी अवस्था, कोई भी चरण अंतिम नहीं होता। सुख हो या दुख हो, दोनों समय के साथ बदल जाते हैं। जो व्यक्ति बदलते मौसम की भाषा समझ लेता है, वो जीवन से संघर्ष नहीं करता, बल्कि उसके साथ हमेशा चलता रहता है। वो जान लेता है कि गर्मी के बाद बारिश आएगी और धरती और मन को, जमीन को फिर हरा भरा कर देगी। इसी उम्मीद और इसी आशा की बातों के साथ आज का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर को यहीं समाप्त करने की अरुणा को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं डॉक्टर हरिचरण वर्मा। आप सुनेंगे राग नट भैरव में शास्त्रीय गायन।

अभी श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार डॉक्टर हरिचरण वर्मा का राग नटभैरव में शास्त्रीय गायन। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR से भी। प्रातः के 10 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी।

0: हमारी बात,
1: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
0: जंगल है धरती का गहना,
1: सदा इसकी रक्षा करना,
0: होगी जो धरती पर हरियाली।
2: प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी, आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। दमोह जिले के लिए बीता महीना विकास, संस्कृति, कृषि और जन स्वास्थ्य गतिविधियों पर आधारित समसामयिक रूप से समृद्ध रहा। पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद गर्मी के तपन और तेज धूप से अब जिले वासियों को राहत मिली है। बारिश की बूंदों और रिमझिम बारिश ने नदियां, बांध, कुओं में न केवल जल भर दिया है बल्कि चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आने लगी है। पर्यटक प्रकृति की सुंदरता को देखने और लुत्फ उठाने सिंग्रामपुर, सिलापरी, मटककुंड, भदभदा और राजनगर जलाशय सहित जिले की प्रसिद्ध लघु वृहद सिंचाई परियोजनाओं की तरफ रुख कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपसे ने आगामी समय में जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिले में सोयाबीन की बोनी के लिए 10 से 12 जुलाई तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। जिन खेतों में पानी भर गया है वहां से जल निकासी कर दें ताकि खेत जल्दी तैयार हो सके। जिले में खरीफ सीजन की बोनी शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग ने इस साल जिले में 3,950 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी की है जो पिछले वर्ष से लगभग 1,000 हेक्टेयर से अधिक है। इसमें धान 80,500 हेक्टेयर, मक्का 40,000 हेक्टेयर, उड़द 60,000 हेक्टेयर और सोयाबीन 1.25 लाख हेक्टेयर में बोई जानी है। खरीफ सीजन के बीच किसानों को राहत देते हुए जिले में 2600 मीट्रिक टन डीएपी की खेप पहुंच गई है। जिले में आई एफको की डीएपी खेप में से 2000 एमटी विपणन संघ, 1200 मीट्रिक टन सहकारी समितियां और 800 एमटी मार्कफेड गोदाम में भेजे गए हैं। वर्तमान में समितियों में 1200 मीट्रिक टन पहुंच चुका है। इसके अलावा 1000 मेट्रिक टन डीएपी मिलने की संभावना है। वहीं 100 एमटी डीएपी पहले से स्टॉक में है। कुल मिलाकर समितियों के पास करीब 2300 मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध होगा। वहीं जिले में

0: करीब 2000 मीट्रिक टन यूरिया की भी स्टॉक मौजूद है। दमोह जिले में साइबर अपराधों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले दिनों सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया ने भी भाग लिया। मैराथन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े खतरों के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले के 256 श्रद्धालु पिछले दिनों हरिद्वार, ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान दमोह रेलवे स्टेशन पर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्म स्वराज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया ने तीर्थयात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय तथा सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। कुछ दिनों पहले दमोह नगर के प्रसिद्ध बेलाताल जलाशय में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन हुआ, जिसमें राज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया और दमोह विधायक जयंत मलैया ने भाग लिया। इसी दौरान मंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन की आमजन को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण जन जन का अभियान बन गया है। आपको बता दें कि सिंचाई परियोजनाओं से न केवल दमोह की तस्वीर बदली है, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ी है। प्रदेश भर में 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे हुए हैं। 10,514 करोड़ रुपए की लागत से जल संरचनाओं के संरक्षण को नई गति मिली है। दमोह नगर टर्फ हॉकी स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल और विधायक जयंत मलैया सहित गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। राज्य मंत्री पटेल ने सभी नागरिकों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने की अपील की है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के लाइव संबोधन को भी उपस्थित जनों द्वारा देखा और सुना गया। जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला अस्पताल में बच्चों को दवाई पिलाकर की। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। अभियान के दौरान लक्ष्य पूर्ति के लिए 1339 बूथ बनाए गए थे। दमोह जिले के हटा की धरती पर जन्मे तबला वादक रामेंद्र सिंह सोलंकी का चयन प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के लिए किया गया है। रामेंद्र सिंह हटा स्थित डाइट में शिक्षक रहे अजय सिंह सोलंकी के सुपुत्र हैं। इन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दक्षिण कोरिया में तबला वादन की प्रस्तुतियां दी हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव, साथ ही आप हमसे जुड़े हुए मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। आवाजें हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की। गीत समीर का है, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने। पसंद क्या है आप सभी श्रोता साथियों ने। पिंगावाला चौक गोरेया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत, कमल साहनी। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार। गांव केरू जिला तरनतारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोता गुरशबद। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनना चाहे मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि सुरोशे और मायरा सुरोशे ने। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। सनावत से बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, आयशा बी खत्री, सादिया बी खत्री, नवासी जिक्रा और मोहम्मद शादाब खत्री। आप सब सुनिए फिल्म दिल है कि मानता नहीं का गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम अभी सुबह के 10:58 तक आप सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म आशिकी से। स्वर है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण का, गीत एक बार फिर से समीर का है, संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेम्पा खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज आर्यन, बेबी आरोही, एशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजी है ग्राम डोही लोहीडील जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रौनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। आप सब सुनिए फिल्म आशिकी का गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में आप आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म खेल का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज के युगल स्वरों में, बोल जावेद अख्तर के हैं, धुन तैयार की है राजेश रोशन ने। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। ततरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्ल्यू वली जाटव, सोनम वली जाटव, सरगुजा मेन पार्ट से रूबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा और रेशमा थापा। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर। आप सब सुनिए फिल्म खेल का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज के युगल स्वरों में।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम अभी सुबह के 10:58 तक आप सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म आदमी खिलौना है का गीत। अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज के युगल स्वरों में गीतकार हैं समीर, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। छठिया पोखर डूमराव से फातिमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार, सोनम वली बेलदार और बिहार भवन दिल्ली से अकरम कुटरिया, उल्लाह कुटरिया। इसी गीत को सुनना चाहे कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन और संतोष चंदन ने। बिहारी कॉलोनी महासमुंद छत्तीसगढ़ से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी और जेलोट मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ बेलदार। छत्रपति संभाजीनगर से महेंगेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज विराज। नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म आदमी खिलौना का गीत। और इससे पहले आपने सुना था फिल्म यारा दिलदारा का गीत। कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज़ों में गीतकार थे मशरू तुल्तानपुरी और संगीत दिया था जतिन ललित ने। पसंद का हमारे आप सभी श्रोता साथी थे। छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के और गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के। पुणे से अंकिता कांबले, विजय कांबले, बेबी शौर्य और श्रेयस कांबले। कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदूरकर, तेजस्विनी चौहान, बेबी शौर्य, श्रेयसा अंकिता और अनिकेत चौहान। इसी गीत को सुनना चाहा था जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र, रूपेश संघई, महेश संघई, प्यकेश संघई और प्रीतेश संघई ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में फिल्म आदमी खिलौना है का ये गीत।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, और अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज और अंशुमन और बेबी ओवी। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमलका का ये गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। बोल है मजरू सुल्तानपुरी के, धुन तैयार की है आनंद मिलिंद ने। इसी गीत को आप सब ने भी पसंद किया है। हरगोविंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिक्षा संधू और प्रतीक्षा संधू और साथ में मैक्स। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। सारेमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। आप सब सुनिए फिल्म लाल दुपट्टा मलमलका का गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में।

से आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की, बोल है हसरत जयपुरी के, धुन तैयार की है अन्नू मलिक ने। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल कुमार खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका, बेबी वाणी थांदी। इसी गीत को सुनना चाहा है। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह ने। कोयले बस्ती पुनावले से अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे और अविका सोनवणे, साथ में साईशा सोनवणे। सदर बाजार मारवाड़ बिलारा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान और तरुण चौहान, साथ में प्रतीक चौहान। आप सब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को फिल्म राधा का संगम में।

अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अभी श्रोता हमसे जुड़े हुए थे मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण।

रोशन हम फोन कर हमसे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है श्वेता सिंगर ने।
1: चारों तरफ छा गई है काली घटाएं, बरखा की बूंद बरस रही है। ऐसा लगता है बड़ी दूर से हमसे मिलने आई हैं ये। हम भीग रहे हैं और चारों तरफ हमारी वसुंधरा भी भीग रही है। सब कुछ हरा और संपूर्ण सा लग रहा है और इस मौसम का नाम ही तो है बरखा बहार। तो चलिए इस मौसम में हम भी स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, जिसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 2660902 पर। बाहर के श्रोता साथी 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो इंतजार है हमें आपके फोन। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार
2: नमस्कार भाई।

0: तो कौन से फिल्म का गीत सुनाएंगे?
1: गाने के बोल रहेंगे, मेघ हरे मेघा मत ऊपर।

0: जा रहे
1: हाँ बिल्कुल, परदेश हम यही चाहेंगे कि वो ना जाए, खूब अच्छी
0: जा
1: बारिश हो, है ना?
0: जी जी जी
1: बिल्कुल, तो आपने फोन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत
0: तो
1: धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, मित्रों को याद कर सकता हूँ मैं।
1: बिल्कुल, नाम बताएं।
0: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी।
1: जी जी जी
0: और बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ये मौसम बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है बारिश के मौसम।
1: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है ना?
0: तो आसमान में काले काले बादल होते हैं, ठंडी फुहार देते हैं, हवा चलती है
1: जी,
0: ठंडी, तो बहुत बढ़िया सुहावना लगता है।
1: बिल्कुल, है ना? और इस सुहाने मौसम में हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आज आपका फोन लगा है, फोन करें गीत सुने में, है ना?
0: जी
1: तो कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: हिंदी फिल्म का नाम रहेगा प्यासा सावन।
1: जी, प्यासा सावन।
0: गाने
1: जी,
0: और गाने के बोल रहेंगे, मेघ हरे मेघा मत तू परदेश जा रहे।
1: हाँ बिल्कुल, परदेश हम यही चाहेंगे कि वो ना जाए, खूब
0: ना
1: अच्छी
0: जा रहे।
1: बारिश हो, है ना?
0: जी जी जी
1: बिल्कुल, तो आपने फोन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत
0: तो
1: धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, मित्रों को याद कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: मैं ग्राम गौर जामर जिला सागर मध्य प्रदेश से कटारे बात कर रहा हूँ
0: जी। तो बताएं कैसे हैं आप?
1: जी मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ। आपका फोन लगा है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज गाने तो मुझे दो तीन याद आ रहा है, लेकिन फिल्म है जंगबाज
0: जी,
1: और गाना इसी में गंगा जैसा मन तेरा, और मोहम्मद अजीज और कविता कृष्ण मूर्ति जी ने गाया है। आप सविता जी बोल रही हैं?
0: जी बिल्कुल।
1: आवाज तो लगी रही थी
0: जी। और एक और पिक्चर का नाम बता दीजिए, एक और फिल्म आपकी जो पसंद के गीत है एक और बता दीजिए।
1: तो दूसरी मूवी रहेगी भ्रष्टाचार, और इसी में एक गाना है सुरेश वाटिकर और अनुराधा पोटवाल ने गाया है
0: जी,
1: तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती।
0: बिल्कुल। तो क्या करते हैं आप बताएं?
1: वैसे हम किसान हैं, खेती किसानी का काम है, बाकी फिर घर में बहुत सारे काम होते हैं वो करते हैं, और इसके अलावा रेडियो सुनते हैं, और अलग अलग शौक है उनको भी पूरा करते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप तो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं खेती किसानी, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, और इसके अलावा और कौन कौन से शौक हैं आपके, रेडियो सुनने के अलावा?
1: तो रेडियो के अलावा ऐसा कोई चीज ही नहीं जिसमें मेरा शौक ना हो। स्पोर्ट में मेरा काफी इंटरेस्ट है, क्रिकेट वगैरह है।
0: अच्छा।
1: और इसके अलावा शेरो शायरी का शौक है, गाना सुनने
0: अच्छा,
1: का बहुत
0: अच्छा,
1: शौक
0: अच्छा।
1: है।
0: जी जी जी
1: शेरो शायरी करता हूँ, दूसरों को फॉलो करता हूँ, इसके अलावा बहुत सारे शौक है मेरे।
0: बहुत अच्छी बात है, है ना? देखिए आपने फोन किया, हमसे अच्छी बातें शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं कृष्णपाल परमा, 6 महीना सोनकी तहसील देवा जिले।
0: हाँ जी, नाम बताएं एक बार फिर से।
1: कृष्णपाल परमार, 6 महीना, गांव का नाम।
0: अच्छा जी, तो बताएं कैसे हैं आप।
1: बढ़िया है दीदी,
0: हाँ, आपका फोन लगा
1: गाना
0: है।
1: सुनना था।
0: हाँ जी बिल्कुल, तो क्या हालचाल है आपके यहाँ मौसम का।
1: बस बढ़िया, पानी गिर गया था अभी 2 दिन से, बारिश थोड़ी
0: अच्छा
1: रुकी है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: मौसम अच्छा हो गया।
1: मौसम अच्छा है मैम, बिल्कुल। पर उमस तो है अभी, क्या पानी
0: हाँ
1: गिरा, पानी पर्याप्त तो हुआ नहीं है, तो उमस तो है।
0: चलिए,
1: गाना
0: कौन सी
1: सुनना
0: फिल्म।
1: था,
0: हाँ बताएं, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: सेनाई पिक्चर का था मैम,
0: हाँ जी,
1: सेनाई,
0: शहनाई जी।
1: ना झटको जुल्फ से पानी, ये
0: हाँ
1: मोती फूट जाएंगे।
0: बिल्कुल, और एक और मूवी बता दीजिए आप जिनका गीत सुनना चाहेंगे।
1: एक सुना दीजिए, सिंदूर पिक्चर का, पतझड़ सावन बसंत बहार,
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो
1: दोनों
0: देखिए।
1: में जो मिल जाए, ये
0: हाँ हाँ
1: दादाजी का
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, हाँ आपने
1: दोनों गाने पुराने हैं, अच्छे गाने हैं।
0: बहुत अच्छे गाने हैं, तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: ठीक है दीदी, नमस्ते।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो
0: हेलो। हाँ
1: जी,
0: जी नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: बताएं, नाम बताएं आपका।
1: रानू गुप्ता।
0: हाँ जी रानू गुप्ता, स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, है ना।
1: जी,
0: कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी।
1: मूवी का नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके, और उसी में एक सॉन्ग है, देखने वालों ने क्या क्या देखा नहीं होगा।
0: बिल्कुल, चुपके चुपके है फिल्म का नाम, चोरी
1: चोरी
0: चोरी।
1: चोरी चुपके चुपके,
0: जी
1: ठीक है।
0: चलिए, आपने फोन किया, हमसे बातें करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: अच्छी कि आप नौकरी भी करती हैं साथ साथ रेडियो भी सुनती हैं।
1: मेरे हस्बैंड भी करते हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: हाई स्कूल में
0: जी,
1: और मैं इसमें बैंक में हूँ।
0: बिल्कुल, तो कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: मेरे फोन लग गया है, कोई खुशी का ठिकाना नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। बारिश के ऊपर कोई सा भी गाना, बादल यूं गरजता है।
0: जी जी, ये बेताब फिल्म का गाना है ना, बादल यूं गरजता, बहुत प्यारा सा गाना है।
1: अच्छे से बोलती हूँ आपका।
0: नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं।
1: पूछ रही हूँ इसमें क्या दीदी,
0: हाँ,
1: आवाज बहुत दबी आती है, लेकिन रेडियो में जो सुनते हैं ना,
0: जी जी,
1: तो बहुत क्लियर आती है आवाज।
0: जी जी जी, हाँ। और आपकी भी आवाज हमें बहुत अच्छी लग रही है, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे सब लोगों से बात।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल है ना। तो चलिए, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नहीं नहीं आप बहुत अच्छा बोलते हैं।
1: पूछ रही हूँ इसमें क्या दीदी,
0: हाँ?
1: आवाज बहुत दबी आती है, लेकिन रेडियो में जो सुनते हैं ना
0: जी जी
1: तो बहुत क्लियर आती है आवाज।
0: जी जी जी
1: हाँ,
0: और
1: हाँ.
0: आपकी भी आवाज हमें बहुत अच्छी लग रही है, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा
1: मुझे
0: लगा।
1: भी बहुत अच्छा लगा मुझे सब लोगों से बात।
0: जी जी जी जी बिल्कुल है ना। तो
1: जी
0: चलिए
1: जी
0: आपसे
1: जी
0: बात
1: जी
0: करके हमें अच्छा लगा, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: हसीन मुलाकात हो और रिमझिम बरसात हो
0: जी,
1: और फिर उसमें कहीं मध्य प्रदेश आकाशवाणी में बात हो,
0: बिल्कुल
1: सौगात ही सौगात हो, सौगात ही सौगात हो। नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, हम जानते हैं शायद आपका नाम बताएं।
1: जी बता दीजिए बहन जी।
0: मैं कुछ भूल जा रही हूँ, माफी चाहूंगी, आपका नाम बताएं।
1: जी जी जी बिल्कुल
0: जी, नाम बताएं आपका।
1: जी बिल्कुल बताइए।

0: तो ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दीजिए मुझे इजाजत आपके रेडियो मित्र श्वेता को, नमस्कार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:00 बजकर

ने एक पोस्ट में संस्कृत का प्रेरक कथन साझा करते हुए कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा है कि स्वच्छ मध्य प्रदेश हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने और स्वच्छ, सुंदर तथा स्वस्थ मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी कर श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य ने गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षकों पर कार्रवाई कर तत्काल प्रभाव से 47 शिक्षकों को उनकी मूल पदस्थापना वाली शाखाओं से कार्यमुक्त कर दिया है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के बड़वानी, धार, गुना, सागर, विदिशा, रायसेन सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये चिट्ठी आई है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार की, साथ ही श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू ऋषि रैकवार, कंवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके परिवार के सदस्य, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की यह चिट्ठी है। दीवाना फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है, कुमार सानू का गाया हुआ। नदीम श्रवण ने धुन बनाई है, समीर ने गीत लिखा है।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाएं उसके पहले एक सूचना आपको दे देते हैं। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक या कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानूनन व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं

संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा भी है कि वे केवल प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में यह अगला पत्र हमें मिला है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा का। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित पसंद और भेजते हैं। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। सुनना चाहा है अभिमान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मनहर उदास का गाया। मजरू के बोल है, एस टी बर्मन की धुन है।

अगले गीत के लिए फरमाइश आई है बनिया पारा छत्तीसगढ़ धमतरी से रामचंद्र माखीजा का, फिर श्रीमती सविता बेबी स्वाति माखीजा, पूजा छुटकी शरद और पूरा माखीजा परिवार। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। चंबल की कसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। खयाम के संगीत निर्देशन में साहिल रुध्यानवी ने लिखा है।

और कार्यक्रम में ये अगला गीत नसीब फिल्म का कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर और साथियों ने इसे गाए हैं। आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, सुनना पसंद किया है। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जुंदले और आरती जुंदले। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद, आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज बिटिया, रोजमीन, तैमूर और समस्त तड़वी परिवार। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर।

फिल्म नसीब के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब समय है एक अंतराल का।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब?
2: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से एचआईवी एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
6: आप भी सतर्कता अपनाएं और एचआईवी के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
8: आकाशवाणी

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं, मगर इतने भी नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ ना समझते हो। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने।
1: फैक्ट्री से एक सज्जन जब चले, वो बड़े मूडी आदमी थे साहब, फैक्ट्री से जैसे ही चले तो तुमने देखा कि एक दूध वाला भी चला जा रहा है, वो भी साइकिल में और वो भी साइकिल में, साइकिल में ये चले जा रहे हैं। दूध वाले की कुछ पता नहीं जल्दी जाना होगा या जो भी, तो उसने दूध वाले ने थोड़ी साइकिल की स्पीड बढ़ाई और इनसे आगे निकला। जैसे ही इनसे आगे निकला, अच्छा हमसे आगे, नहीं साइकिल की स्पीड बढ़ाई, हम आगे, कभी वो आगे, कभी ये आगे, कभी वो आगे। फैक्ट्री से उन्हें मान लीजिए रांझी जाना था, और साहब ये आगे पीछे आगे पीछे। फिर हमने पूछा कि ये हुआ क्या आगे पीछे आगे पीछे, कह लगे नहीं जाना तो रांझी था, लेकिन गुरु कभी वो आगे कभी हम पीछे, मेडिकल में जाके हराया उसको। ऐसा आजकल देखा जा रहा है कि आजकल मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले तो बहुत कम थे, और इस समय मीडिया क्रांति है। कोई अगर न्यूज दिन भर की दिखा रहा है तो कोई दिन में 6 बार दिखा रहा है, कोई दिन में 15 बार दिखा रहा है, कोई 24 घंटे न्यूज दिखा रहा है, पता नहीं कहीं 48 घंटे ना दिखाने लगे, कोई तुरंत की, कोई अब्बी की न्यूज दिखा रहा है। ऐसी न्यूज में एक न्यूज एक ने सुनी और क्या कहा दूसरे दोस्त से, दूसरे दोस्त ने क्या कहा, हाय बोले वो देखी, बोले कौन सी, बोले न्यूज वो अब्बी वाली, बोले नहीं यार नहीं देखी। अरे उसमें दिखाया गुरु बहुत डेंजर वाला दिखाया। क्या दिखाया गया? उसमें दिखाया कि एक आदमी अपने शहर का, वो गुरु 72 घंटे माने अफ्रीका के और इंडिया के और बने विदेश के और एक से एक खतरनाक सांपों के बीच में। अच्छा कहने कितने घंटे? 72 घंटे उस्ताद, मतलब अपन 1 घंटे के साथ नहीं रह सकते सांप के साथ, मतलब सांप कितना डर लगता है, लेकिन वो 72 घंटे सांपों के बीच में। अरे कहने कोई बड़ा काम नहीं। अरे अरे तुम 72 घंटे तुम बोल रहे बड़ा काम नहीं, बोले भैया ऐसा है 72 घंटे वो सांपों के बीच रहा ना, 2 घंटे हमारी पत्नी के बीच रह के दिखाए। स्टेज पर, चैनल्स में, मीडिया में, सभी तरफ हम लोगों को प्रोग्राम करने होते हैं। खासकर लाइव प्रोग्राम में जब हम लोग शहर से बाहर जाते हैं, तो एक दूर दराज के गांव में भी मैं गया, और वहां पर चूंकि हम लोग प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा का था, हम लोग गए हुए थे, पूरी टीम हमारे साथ थी, लेकिन वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा था कि भाई हमारे जो आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट, उनको भी आपको मौका देना पड़ेगा। हमने कहा अवश्य देंगे। तो ब्रेक के दौरान उनको भी मौका मिला, और उन्होंने भी कुछ अपने गीत प्रेजेंट किए, कुछ अपने आइटम्स प्रेजेंट किए, और उसका एक अलग मजा है। देखे साहब, वो एक ऑब्जर्वेशन, हम लोगों की ऑर्केस्ट्रा चल रही थी और वहां से अनाउंस हुआ कि और इसी के साथ ऑर्केस्ट्रा धमाल झमाल कमाल आपसे थोड़ी देर के लिए विराम लेती है, तब तक आपके लोकल आर्टिस्ट होंगे, आपके अपने आर्टिस्ट होंगे, आप खुद होंगे। आइए सुनते हैं आपके आर्टिस्टों को और आपके अपनों को। बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद, बहुत अच्छा, जबलपुर से आए आप लोगों ने सुनाया, बड़ा हम लोग का दिल जो है गदगद हो गया, और अब इसके बाद अनाउंसमेंट हम ही करेंगे और हम ही सुनाएंगे और हमारे बीच के लोग भी सुनाएंगे। हाँ सुनाइए साहब। उनने अनाउंसमेंट किया और म्यूजिशियन को रोक लिया कि भाई आप बजाएंगे, यहाँ म्यूजिशियन तो नहीं, लेकिन मैं आइटम वो बता रहा हूँ कि कैसे उस आइटम को किया। और सबसे पहले बड्डू भैया और बड्डू भैया की श्रीमती जी आ रही हैं, और वो एक गाना पेश करेंगे। आजा ना करिया, अब मधुर चाल में दोनों चले आ रहे हैं बड़े प्यार के साथ, मंच पे आए बकायदा, मंच के उन्होंने पैर पड़े, घुटना पड़े, और फिर उसके बाद मंच पे चढ़े। मंच पे जैसे चढ़े तो अच्छा कौन सा गाना गाएंगे भाभी जी आप बताइए। नहीं अल्लाह जी जी बोल आप तुम ही बता दो ना, वो क्या बताएं आपको, चांदनी पिक्चर का गाएंगे। अच्छा गाइए भाई, चांदनी का पिक्चर का गाना गाएंगी, और बहुत बढ़िया गाती हैं, और उसके पहले बलुआ में भी गा चुकी हैं, 3 इनके प्राइवेट एल्बम लॉन्च हो चुके हैं। कौन सा हुआ? एक सोहरों का एल्बम लॉन्च हुआ, और एक दो जो है बधाई गीत का लॉन्च हो गया, और हमने 3-4 जो है दादरे कहरवा और पता नहीं कई कई चीजें हमने गाई, बहुत बढ़िया, मतलब बन्ना बन्नी गाए हैं, और मतलब बहुत अच्छा अच्छा हमने गाया है, तो चांदनी पिक्चर का गाएंगे। अच्छा ठीक है, तो शुरू करिए। नहीं पहले म्यूजिक तो लगाओ। अब साहब म्यूजिक वाले ने म्यूजिक व्यूजिक बजाया और उन्होंने गीत गाया, कैसे दोनों ने ड्यूट गाओ सॉन्ग है। हाँ तुम तो शुरू करो पहले, तब तो हमारा नंबर है। अच्छा हम शुरू कर रहे हैं, सोचे कि तुम शुरू। नहीं आप शुरू करो। अब उन्होंने शुरू किया, चांदनी चांदनी तैमूरी चांदनी।
2: डेढ़ घंटा हो गया चांदनी चांदनी आगे कहाँ नहीं गाओ
3: गाधो राय।
1: फिर उन्होंने गाए, रंग भरे बदरा से तुरने अनन के कजरा से मैंने जादू।

0: फूल कोई तोहफा तुम कछु भी साथ नहीं लाए, कितनी महबूबा से मिलने खाली हाथ नहीं जाते। तुम्हें नहीं पता था तू वही ले आते, यहाँ से छूछे हाँ चले आए तो
1: साहब ये आइटम का। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास रहा, आप चलिए दूसरे और हमारे जो गाने के लिए आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया गाते हैं। आज अब ये तुम्हारा क्या नाम?
2: हमारा नाम है
1: वही
2: वही नहीं हम भूल गए नाम, नाम बताओ।
1: हमारा नाम है कुरकुर कुरकुर कुरकुर।
2: क्या नाम है?
1: कुरकुर कुरकुर कुरकुर।
2: कैसा नाम है?
1: शॉर्टकट में है ना लंबा, बहुत बड़ा है, वो हम नहीं बता पाएंगे, हमारे भैया बता पाते।
2: अच्छा अच्छा ठीक है, आप कौन सा गाना गाएंगे?
1: आशिकी पिक्चर का गाएंगे।
2: अच्छा गाइए आशिकी पिक्चर का गाना, देखिए बहुत बढ़िया है खुरखुर खुरखुर जी, और ये आशिकी पिक्चर का गाना गाएंगे।
1: कौन सा वाला?
2: टाइटल वाला गाना गाएंगे। टाइटल वाला गाना गाइए। कैसे उन्होंने गाना का सत्यानाश किया।
1: मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, अगर साथ छोड़ा ये बाधों न तोड़ा, मैं तुमको भुला दे आऊंगा।
2: ऐसा गा रहा है बेसुरा। चलो इसके बाद एक बहुत बढ़िया बात है कि हमारे यहाँ जो गांव के मुखिया हैं उनकी बिटिया है और वो भी गाना गाएगी। अच्छा अच्छा बिटिया नहीं आ रही है, उन्होंने अपने भैया को भेज दिया है और उनके भैया रामलीला में काफी फीमेल रोल करते हैं, कौशल्या सुमित्रा और न जाने कितने रोल किए हैं उन्होंने, फीमेल रोल किए हैं, और इसके अलावा वो सहेली सखी भी बन चुके हैं। आइए
1: बहुत बढ़िया, कौन सा गाना गाओगे?
3: हम पिक्चर वाले गाने गाएंगे।
2: हाँ मैं रामलीला का नहीं गा पा रहा हूँ, आप गाइए पिक्चर के गाने। कौन सा गाएंगे?
3: हम वाली पिक्चर का गाएंगे जो ऋतिक रोशन की पिक्चर का है।
2: हाँ गाइए। तो उन्होंने गाना गाया

0: प्यारी है, कहो ना प्यारी है।
1: और अब एक बार फिर मैं आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी एक फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ। ऐसी फिल्म की कहानी जिसको मैं देखने गया था, वो मेरा साथी था मेरे साथ लल्लू। लल्लू जो था उसको पान खाने का बड़ा शौक था, तो मैं और लल्लू दोनों फिल्म देखने के लिए गए। बड़े प्यारे प्यारे गाने थे उस फिल्म में, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे। तो साहब ऐसा है कि फिल्मों का शौक तो सभी को है, रेडियो के माध्यम से बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हम सुनते हैं। कभी कभी हमारे दूरदर्शन वाले भी बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चरें दिखाते हैं, गाने भी दिखाते हैं। खैर, तो उसी शौक को पूरा करने के लिए हम फिल्म देखने के लिए गए। साहब टिकट ली, टिकट लेने के बाद जब उस थिएटर में यानी टॉकीज का जो द्वार था, दरवाजा था, वहां जब हम पहुंचे तो हमने अपनी टिकट किसको दी? गेटकीपर को। उसने टिकट ली और हमसे कहा कि हाँ आप बैठिए, आपकी चेयर का नंबर है K4142, यानी के सीरीज में 4142। तो हमने लल्लू से बोला चल भाई अपन बैठे। तो लल्लू मुझसे बोलता है, इसके मुंह में पहले से पान था, उसके बाद मुझसे लल्लू बोलता है,
2: एक काम करो भाई साहब, आप जाकर बैठो, मैं एक आध पान खा के आता हूँ।
1: हमने कहा भाई साहब आपके मुंह में पान तो पहले से है। तो वो मुझसे बोलता है,
2: अरे नहीं ऐसा है कि अब एक आध पान और खा लेंगे, एक आध हम आपके लिए ले आएंगे।
1: हमने बिल्कुल ठीक है। मैं अकेला उस हॉल में जाकर बैठ गया, लल्लू भैया गए थे पान खाने। तो मैं जहां बैठा था क्या देखता हूं क्या सुनता हूं, एक भाई साहब बिल्कुल मेरे बाजू वाली कुर्सी में बैठ के सो रहे थे। बड़े खर्राटे ले रहे थे, बड़ी जोर जोर से। हमने कहा भाई साहब, ओ भाई साहब ये सोने की जगह नहीं है भाई साहब, यहाँ लोग सिनेमा देखने आते हैं, हैं? आप सिनेमा देखने की जगह सो रहे हो, अब घर में जाके सो? तो ये मुझसे बोलते हैं, साहब ऐसा है हम घर में जाके सो नहीं सकते। मैंने कहा आप क्यों घर में जाके सो नहीं सकते? इसलिए नहीं सो सकते भाई साहब कि मेरी धर्मपत्नी मेरे को सोने नहीं देती है। कभी बोलती है बर्तन मांजो, कभी बोलती है कपड़े धो, कभी बोलती है घर में झाड़ू लगाओ, कभी बोलती है पैर में मालिश करो, ये करो वो करो, फलाना करो ठिकाना करो। हमने अरे अरे अरे अरे बड़ी दयनीय स्थिति है तुम्हारी, तुमने क्या दहेज वगैरह ज्यादा लिया था क्या शादी में? तो वो मुझसे बोलते नहीं साहब दहेज मैंने नहीं लिया, मैं तो बिल्कुल दहेज का विरोधी हूं, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने दहेज जरूर लिया था, वो काम उन्होंने गलत किया था, लेकिन दहेज लेने के थोड़े दिन के बाद वो चल दिए ऊपर चले गए। वो तो खैर ऊपर चले गए लेकिन ये सब काम काज करने को मुझको छोड़ गए। हमने कहा चलिए ठीक है, आप सो जाइए या देखिए पिक्चर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है साहब, ये तो सो गए। अब इनके खर्राटे की आवाज मेरे दाहिने कान में आ रही थी और जो बायां कान मेरा खाली था वो क्या सुन रहा था, जो पर्दे के अंदर से गाना आ रहा था। कलाकार पर्दे पे आ गए, उन्होंने फटे कपड़े पहने हैं और पागल जैसा उनका सीन मतलब दृश्य है, ड्रेसेस है पूरा बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। वो गाना आया, बाएं कान से सुना, दाहिने कान से जो भैया बाजू में बैठे थे, भगवान इनका भला करे, इनके खर्राटे। तो खर्राटे और गाना, गाना और खर्राटे कैसे सुनाई दे रहा सुनिए।

हमने कहा उठो यहाँ से, उठो यहाँ से, और तुम सीधे घर जाओ। अरे हम फिल्म देखने के लिए आए हैं, गाना सुनने आए हैं, तुम तो खर्राटे लिए जा रहे हो, जमाई लिए जा रहे हो। इनको तो साहब मैंने भगा दिया, ये तो चल दिए। एक भाई साहब मेरे इस तरफ यानी बाएं की तरफ बैठे हुए थे, बाएं हाथ की तरफ, वो तालियां बजा रहे थे, बड़ी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। मैंने उनसे बोला, क्यों भाई ताली क्यों बजा रहे हैं? कोई अच्छा सीन पर्दे पे आए, जब कोई बहुत बढ़िया सा डायलॉग आए, उस समय आपको ताली बजाना चाहिए। तो ये मुझसे क्या बोलते हैं कि साहब हम ताली इसलिए बजा रहे हैं कि कहीं हमको नींद ना आ जाए। तो साहब उनको शांत किया, पिक्चर आगे बढ़ी, बड़ा मजा आया। फिर वो मेन पिक्चर चालू हो गई, उसमें आगे कौन वो मुख्य कलाकार हीरो थे।

के चले जा रहे थे, उसका एक मेन गाना आया, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा साधा। ये गीत भी मैं अच्छे से नहीं सुन पाया साहब। क्यों नहीं सुन पाया? इसलिए नहीं सुन पाया कि एक भाई साहब मेरे पीछे बैठे हुए थे, उनको खांसने की बीमारी थी। अब आप सोचेंगे उनके खांसने में क्या तकलीफ, हम जो भारत के वासी हैं उनकी और हमारी, हमारी और आपकी खांसी कैसी होती, बड़ी साधारण, किस तरह से कुछ इस तरह की खांसी। लेकिन उनकी खांसी ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि विदेश से बुलवाई हो, भगवान जाने कहां से बुलवाई थी, उत्तर से बुलवाई थी कि दक्षिण से बुलवाई थी कि पश्चिम से, मालूम नहीं कहां से बुलवाई थी। क्योंकि उनकी खांसी, खांसने का बड़ा अजीब और गरीब स्टाइल था। जब वो खांसते थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रॉकेट, हवाई जहाज आसमान की तरफ हाई स्पीड में चला जा रहा हो। किस तरह से खांसते थे जरा देखेंगे। ये उनके खांसी की आवाज। अब बताइए, ये खांस रहे हैं पीछे से, हीरो पर्दे पे है, वो गा रहा है आगे से, मैं बीचों बीच। गाना खांसना, खांसना गाना, एक साथ कैसे सुनाई दिया? पहले तो वो गाना सुन लें आप, दो तीन लाइन ओरिजिनल जो बिना खांसी का है, और उसके बाद खांसी के साथ किस तरह से सुनाई दे रहा है मुझको, मैंने कैसा सुना वो मैं सुनाता हूं आपको ओरिजिनल गीत।

ये ओरिजिनल गीत है, ये सुनने मैं गया था जिसका मैंने शुल्क दिया था, लेकिन एक सेवा जो निशुल्क पीछे से उपलब्ध हो रही थी वो भी मेरे अपने मेरे भाग में आ गई। तो कभी गाना कभी खांसना, कभी गाना कभी खांसना, कैसा सुनाई दे रहा है सुनिए।

तेरे गया बंदा में सीधा दाते रावा दाते रावा दे पे तेरे गया बंदा में सीधा दाते रावा अरे दाते रावा अरे दाते रावा अरे दाते रावा हमने उठो उठो यहां से अलग हो हट जाओ यहां से। तो इनको तो खैर भगा दिया लेकिन ये दो मिनट के बाद फिर वापस आ गए। हमने क्यों आ गए तुम घर क्यों नहीं गए? तो ये मुझसे बोलते हैं कर कैसे जाएंगे साहब घर वालों ने यहाँ पे भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा घर वालों ने यहाँ पे भेजा है हाँ। तो भैया दवाई क्यों नहीं करा लेते भाई साहब? दवाई कराइए, होम्योपैथिक कराइए, एलियोपैथिक कराइए, आयुर्वेदिक कराइए, यूनानी कराइए, नेचुरोपैथी कराइए भाई साहब, कुछ ना कुछ तो इलाज होगा इसका खांसी का। आप कब से खांस रहे हैं? तो ये मुझसे बोलते हैं भाई साहब मैं 18 साल से अखंड खांस रहा हूँ। 18 साल से आप अखंड खांस रहे हैं? बहुत अच्छे साहब, वाह भगवान आपका भला करे हैं। और ये खांसी लेके आप मेरे सामने आए, मेरी पूरी पिक्चर आपने गड़बड़ कर दी भाई साहब। ओहो। तो पिक्चर में यानी हॉल में अंधेरा था, ना हाथ को हाथ दिख रहा था, ना पैर को पैर दिख रहा था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, अंधेरे में एक गोली उनको दे दी। किनको दे दी? वो खांसने वाले को। खांसने वाले को मैंने कहा लो भाई साहब इसको आप चूसते रहना, जैसे बच्चे मुंह में आपके चॉकलेट वगैरह लेके गोली बिस्कुट वगैरह लेके चूसते रहते हैं ना, वैसा आप चूसते रहिएगा हैं। इसको गले से नीचे नहीं उतारना, नहीं तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो ये मुझसे बोलता है ये साहब काहे की दवाई है? ये आपके खांसी की दवाई है, इससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा। चलिए ठीक है साहब। उनको मैंने अंधेरे में एक गोली दे दी। उनको तो खैर आराम 2-4 मिनट के बाद मिला, तो मुझसे क्या बोलते हैं भाई साहब। मैंने कहा बोलिए साहब क्या बात? अरे साहब ऐसी कौन सी जादू वाली गोली दे दी साहब आपने, भगवान आपका भला करे साहब, बिल्कुल मेरी खांसी तो बिल्कुल रुक गई साहब। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आप तो मेरे को एक काम करिए, वो जो दवाई आपने मेरे को दी है ना, उसका आप मेरे को नाम लिख के दे दीजिए ताकि मैं बाजार से खरीद लेता हूँ। भाई साहब मैं 18 साल से अखंड खांस रहा था, विदाउट ब्रेक खांस रहा था, मैं अखंड खांस रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, वो क्या है कि वो जो हमने तुमको दवाई दी है वो बाजार की दवाई नहीं है, हमारा अपने घर का ओन प्रोडक्ट है, हम स्वयं उस दवाई को बनाते हैं, बाजारू दवाई हमने तुमको नहीं दी। भगवान भला करे उस खांसी वाले का, भगवान मेरा भी भला करे, उसकी खांसी बंद हो गई। लेकिन उसने जो मुझसे

0: पूछा था कि दवाई का नाम लिख के दीजिए, तो मैं क्या दवाई का नाम लिख के देता? अरे मैंने उसको दवाई दी ही नहीं थी, मैंने तो अपने कोट का बटन तोड़ा और उसको दे दिया था। चलिए साहब, पिक्चर आगे बढ़ती है, बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आ रहा था। अचानक एक आवाज मेरे कान में आई, वो कौन सी आवाज थी?
1: भाई साहब, ए भाई साहब, भाई साहब।
0: हमने कौन है भाई?
1: मैं लल्लू आपका दोस्त।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई साहब जो पान खाने गए थे मेरे मित्र, ये आ गए हैं हमने। अच्छा अच्छा, आ जाइए अंदर, आ जाइए हॉल के अंदर आ जाइए। तो ये मुझसे बोलते हैं,
1: कहां से आ जाइए, हमको तो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है।
0: हमने किसी को नहीं दिखता भाई साहब अंधेरे में, आपको कैसे दिखाई देगा अंधेरे में है? चले आइए, एक काम करिए, वो जो कुर्सियों के बीच में रास्ता है जहां और लोग बैठे हुए हैं, जो कुर्सियों की लाइन है उसके जो बीच में रास्ता है, धीरे धीरे चले आइए, धीरे धीरे चले आइए है, वहां मैं आपका आगे आके हाथ पकड़ लूंगा।
1: जी भाई साहब।
0: तो ये साहब अंधेरे में धीरे धीरे धीरे धीरे चले आ रहे हैं, मेरी तरफ बढ़े जा रहे हैं, लेकिन इनके कारण अंधेरे में किसको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, जरा मैं उनकी कहानी आपको सुनाता हूं, बड़े संक्षिप्त में, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। तो ये धीरे धीरे चले आ रहे, ये अंधेरे में चले, ये चले, एक ने कहा, अरे अरे ये क्या करते हो? क्यों भाई साहब क्या हो गया?
1: अरे क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया?
0: अरे मेरी मूंगफली पूरी आपने गिरा दी, मेरी पूरी मूंगफली गिरा दी। अरे अरे अरे ये मेरे जूते, जूते कहां लेके जा रहे हो भाई, मेरे जूते कहां?
1: अरे साहब गलती हो गई साहब, कुछ नहीं दिखाई दे रहा साहब। अरे बाप रे,
0: ये चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। अचानक किसी ने मजाक कर दिया बीच में, कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ये सोचे कि मेरे पास आ गए, मैंने बोला बैठ जाओ, मैं तो बहुत दूर बैठा था, किसी ने मजाक कर दिया, कहा बैठ जाओ, तो ये बैठ गए। एक छोटा बच्चा बैठा था, उसकी गोदी में वो बैठ गए। उनकी गोदी में बैठ गए, तो उनके पिताजी ने एक तमाचा उसको मारा, वो गिरते पड़ते वो लल्लू लाल हमारे पास आए। हमने उनसे बोला, क्यों लल्लू लाल, कहां बैठ गए थे?
1: अरे कहले बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन एक हमको भगा दिया मारपीट के।
0: हमने, वो तो बच्चा बैठा था भाई साहब, है वहां नहीं बैठना चाहिए आपको। खैर, मैंने उनको बैठाया अपने पास, फिल्म आगे बढ़ी, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। इंटरवल हो गया मध्यांतर, जब मध्यांतर होता है, हम और आप सभी जब टॉकीज से बाहर चाय कॉफी वगैरह पान वगैरह लेने जाते हैं, तो सब अपने कपड़े अपड़े सब सही करते हैं, कोई सामान छूट ना जाए, उसकी खास ध्यान देते हैं उस बात पे। तो वो सब कुछ मैंने किया जो आप करते हैं, हम सभी करते हैं। तो मैंने अपने लल्लू भैया से बोला, चलो इंटरवल होने के 5 मिनट पहले तो आप आए हो यार, हैं? चलो फिर से एक पान खा लेना, मैं चाय पी लूंगा। तो हम लोग कुर्सी से जब खड़े होने लगे, तो मैंने अपना जो कोट पहना था, नया कोट पहना था, उसका मैंने दाहिना हाथ देखा, बहुत बुरी तरह गीला था। हमने, ओहो हो, ये गीला कैसे हो गया भाई, किसी ने पानी फेंका क्या? पानी कौन फेंकता भाई, किसी के हाथ में थाली नहीं, लोटा नहीं, गिलास नहीं, शीशी नहीं, बॉटल नहीं, हमने फिर पानी किसने फेंका? चारों तरफ देखा, किसी के हाथ में कुछ नहीं। अचानक मैंने बालकनी की तरफ ध्यान दिया, बालकनी की तरफ मतलब यह हुआ कि मैं नीचे बैठा था, वो कम पैसे वाली जो क्लास होती है, 5 रुपए की टिकट थी या 10 रुपए की, कुछ याद सा नहीं है, ऊपर बालकनी थी, नीचे मैं बैठा था। अचानक मैंने ऊपर की तरफ देखा, तो एक बहन जी बालकनी से नीचे झांक रही थी और रो रही थी बड़ी जोर जोर से। हमने कहा, बहुत अच्छे बहन जी, आपने तो क्या रोया भाई, वाह वाह, मेरे पूरे कोट में आपके आंसू गिर गए हैं। फिर मैंने चिल्लाया, मैंने कहा,
1: बहन जी, ए बहन जी, इधर देखिए बहन जी।
0: तो बहन जी ऊपर से देख के मुझको बोलती है, क्या है?
2: अरे बहन जी, ऐसा कैसा रोया बहन जी आपने, हैं? आपके आंसुओं से तो हमारा पूरा कोट खराब हो गया है, पीछे होके रोइए।
0: तो वो पीछे हो गई और अपने पतिदेव, जो उनके पतिदेव उनके साथ आए थे, उनसे फौरन उन्होंने बोला
3: कि आपको कितनी बार बोला था, यहां बालकनी की दीवार के वहां पर आप मुन्ने को मत खड़ा करो।
0: आप समझ रहे होंगे कि उनके बच्चे ने ऊपर से क्या किया, जो भी कुछ किया वो पूरा दाहिने हाथ के, मेरे कोट के दाहिने हाथ में चला आया। वो तो अच्छा हुआ मैं जमाई नहीं ले रहा था, नहीं तो पानी भी पीने नहीं उठना पड़ता मेरे को। फिल्म में हम लोग बाहर निकले, एक कैंटीन होती जहां चाय, समोसे, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी वगैरह सब कुछ मिलता है, वहां हम पहुंचे। तो हमने क्या देखा, हमने तो खैर होटल के नौकर को बुला लिया, हमने, भाई साहब यहां आइए, मेरे लिए 2 चाय ले आइएगा, एक इनके लिए हमारे लल्लू भैया के लिए और एक मेरे लिए। तो साहब 2 चाय आ गई, हम पीने लगे, हम क्या देखते हैं कि हमारी कुर्सी के सामने 2 सज्जन आकर बैठ गए। वो 2 सज्जन कौन थे? वो थे तो बड़े अच्छे, लेकिन उन्होंने होटल के नौकर को थोड़ा सा

0: सताने के लिए न जाने कुछ क्या किया, कुछ कॉमेडी के मूड में थे, हंसी मजाक के मूड में थे, तो एक जो सज्जन थे उन्होंने कुछ खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन सही तरीके से नहीं दिया। वो थे बहुत सही, लेकिन वो अटक अटक के बोल रहे थे। हाँ, उन्होंने कुछ मजाक सा किया, अटक अटक के बोलने लगे। उनके साथ जो दूसरे सज्जन थे उन्होंने भी मजाक का मूड बनाया, उन्होंने क्या किया, वो नाक से बोलने लगे। अब बताइए, एक सच्चा बढ़िया बोलने वाला आदमी अगर नाक से बोले तो कैसा बोलेगा, और सही बोलने वाला, बिल्कुल लगातार शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, अगर अटक अटक बोले, अटक अटक के बोले तो कैसा बोलेगा। तो उन्होंने होटल के नौकर को बुलाया, सबसे पहले बुलाया अटक अटक के बोलने वाले भाई ने, मजाक के बतौर, इधर आ भाई। नौकर आ गया, उसने कर्मचारी ने, होटल के कर्मचारी ने उनसे पूछा, हाँ साहब क्या चाहिए। तो वो अटक अटक के बोलने वाला बोलता है, आपकी दुकान में के के के के के के के के के के के क्या क्या है। तो नौकर बोलता है, आलू बंडा है, समोसा है, दालमोठ है, भाजी बड़ा है, रोटी है, पराठा है, चावल सादा है, चावल फ्राई है, नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, सब कुछ होगा साहब, अंडा भी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी मिलेगा, चाय मिलेगा, कॉफी चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो वो जो अटक अटक के बोल रहे थे उनने फिर मजाक किया, उन्होंने कहा, ये वो सब नहीं, वो सुबह सुबह तुम लोग कढ़ाई में तेल डालकर चने के आटे में प्याज लहसुन पालक की भाजी सोडा नमक डालकर वो दे दे दे दे ला दो प्लेट। तो नौकर बोलता है, साहब हम तो, हमको समझ में नहीं आया साहब, आपको चाहिए क्या है, ये धे धे धे धे हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जरा अच्छे से बोलिए साहब, ये मिस्टर भाई साहब, ये जी क्या आप इनके साथ आए क्या। तो वो जो दूसरा था जो नाक से बोलने का मूड बना रहा था वो बोलता है, तो उन्होंने, नौकर ने बोला, भाई साहब फिर आप ही बताइए ना, आपको क्या चाहिए और इनको क्या चाहिए। तो नौकर जो खड़ा हुआ था उसके साथ साथ कौन खड़ा हो गया, वो नाक से बोलने वाला, नाक से बोलने वाला खड़े होके क्या बोलता है, अब बताइए, इंटरवल 5-10 मिनट का वक्त का होता है, उसके बाद फिर पिक्चर चालू हो जाती है। लेकिन ये दोनों मित्र बड़े मजाक के मूड में, नौकर के समझ में नहीं आया, उन्होंने फिर से उसको बोला, अटक अटक के बोलने वाले को, किसने बोला, ये नौकर ने फिर से बोला कि भाई साहब एक काम करिए, वो जो भाई साहब सामने हैं उनकी तो बात समझ में नहीं आ रही, वैसे तो आपकी भी समझ में नहीं आई, लेकिन अगर एक बार और बता देंगे तो मेरे समझ में आ जाएगा कि आपको आलू बनना चाहिए कि समोसा चाहिए कि क्या चाहिए। तो अटक अटक के बोलने वाला फिर मजाक के मूड में आ गया, उसने फौरन बोला, समझने की कोशिश करो भाई साहब, जो सुबह सुबह आप लोग कढ़ाई में तेल गरम करते हो, है ना, उसके बाद चने का आटा लेते हो, उसमें पालक की भाजी डालते हो, हरी मिर्ची डालते हो, नमक डालते हो, सोडा डालते हो और वगैरह वगैरह बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें डाल के वो गोल गोल घुमा के वो ऐसा करके जब तेल में दें दें दें दें ला दो प्लेट। नौकर बोलता, भाई साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप जितना सब वो सब ठीक है, लेकिन आप बाकी तो सब सही बोलते हो, लेकिन जिस शब्द को आपको बोलना चाहिए वहीं पे आप जाके सॉलिड हो जाते हो, ये बात गलत है, हैं? जरा फिर से आप बताइए, किसको बोला इसने, वो नाक से बोलने वाले को। वो फिर खड़ा हुआ, फिर उसने वही बात सब रिपीट की, कहता है वो, तुम लोग हमने कहा, नौकर बोलता, अरे बाप रे, इंटरवल तो गया भाई साहब, मेरे को बहुत नुकसान हो गया भाई साहब, आप मेरी दुकान में काहे को आए भाई साहब, काहे को आए भाई साहब।
1: संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक हंसना मना है, इसकी 7वीं कड़ी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: 6,500 निर्माण उपकरणों मुख्य रूप से एक्सकेवेटर का उत्पादन होगा। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर भर्ती के लिए कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें 436 उम्मीदवारों को चुन लिया गया है। डीजीपी कैलाश मकवाना के अनुसार पूरे 8 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टरों की यह बड़ी भर्ती हुई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के तीसरे मुकाबले में कल भारत को इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज के आखिरी दो मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम।
2: महिला सभा सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को आपकी सखी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हम सभी घर के काम करने के साथ साथ बाहर के भी सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन सखियों अभी भी आर्थिक निर्णय लेने, निवेश करने, टैक्स से जुड़े निर्णय लेने में कई बार हम अपने हस्बैंड, अपने पापा या घर के सदस्यों पर निर्भर हो जाती हैं। सखियों, यदि हम कमा रहे हैं या हाउसवाइफ घर में पैसा बचा रही हैं, तो उससे जुड़ी हर जानकारी, हर निर्णय में हमारी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना या पैसा बचाना ही जरूरी नहीं है, इसके साथ ही अपने पैसों को समझना, संभालना व सही उपयोग करना भी हमें आना चाहिए। सखियों, हमें फाइनेंशियल मुद्दों पर भी अपनी राय बनानी होगी। इसके लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे बैंकिंग की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए, बैंक खाता कैसे खोलते हैं, चेक कैसे भरा जाता है या डिजिटल भुगतान कैसे किया जाता है। आज के डिजिटल युग में नेट बैंकिंग, कार्ड से पेमेंट करना, ये सब काम हमें आना चाहिए। हम हमेशा आय और व्यय का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखें, इससे हमें आर्थिक स्थिति समझने एवं बेहतर निर्णय लेने में आसानी होगी। और हाँ सखियों, वित्त से संबंधित सारे दस्तावेज को भी समझना और संभाल कर रखना आना चाहिए, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, भुगतान रिकॉर्ड इत्यादि। टैक्स से संबंधित जानकारी भी हमें रखनी होगी, आयकर रिटर्न कैसे भरते हैं, किन खर्चों पर टैक्स से छूट मिलती है और अपनी आय को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तब हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सखियों, समय पर हमें बिलों का भुगतान करना चाहिए, ताकि हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे, जिससे भविष्य में लोन लेने में हमें आसानी होगी। खुद के लिए और पूरे फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना भी आज की जरूरत बन गया है। और कोशिश करें कि हम अपने या अपने घर की कुल इनकम का 50% घर के जरूरी खर्चे, 30% अपनी इच्छाओं और 20% भविष्य की बचत में निवेश करें। छोटी छोटी सेविंग भी लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड बनाकर देती हैं। सखियों, कमाने के साथ साथ हमें निवेश के फैसले भी लेने होंगे, ना कि घर के अन्य सदस्यों पर हम निर्भर हो जाएं। वर्तमान में निवेश के कई सुरक्षित व लाभदायक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बीमा, पेंशन स्कीम, SIP। इससे हम भविष्य की अपनी आर्थिक सुरक्षा को बेहतर बना सकती हैं। तो आइए सखियों, हम भी अपने वित्तीय व्यवहार को निखारें और अपने परिवार की मेहनत की कमाई को समझदारी से मैनेज करें।

0: सखियो, समय समय पर हम आपके लिए कहानी, काव्य पाठ, वार्ता लेकर आते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य पाठ। कवित्री हैं सुश्री भारती जैन। तो आइए सखियो, सुनते हैं ये काव्य पाठ।
1: नमस्कार, आज मैं आपके लिए कुछ गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ, सुनिएगा। हे आदि देव अच्युत।

हर अभिलाषा हो निठुर नियति के ही अधीन, बदले सब कथ्य कथानक हैं, है प्रश्न चिन्ह में तरुणाई मा

वन सुर भित चंदन कर दो, घट घट मैं खुशियों के घट भर, ये मान सरोवर मन कर दो। हो धन्य धरा का ज्योतिर्मय, हो धन्य धरा का ज्योतिर्मय, हर दृश्य अलौकिक अन्य।

एक तारा और अंतिम बंद देखें कि हो प्रेम प्रतिष्ठित हर घर में, नफरत डर से कांपे थर थर। हो प्रेम प्रतिष्ठित हर घर में, नफरत डर से कांपे थर थर। हो प्रेम सुधा से ही सिंचित, चिंतन के चौराहे प्रभुवर। महिमा मंडित सम्मान रहे, माटी का अक्षत मान रहे। और जब तक जीवन है धरती पर, हर दिल में हिंदुस्तान रहे। हो राष्ट्रभक्ति ही परम धर्म, हो राष्ट्रभक्ति ही परम धर्म। जय हिंद हमारा।

प्रतिपल बस बजे प्रेम का एक तारा, बस बजे प्रेम का एक तारा, बस बजे प्रेम का एक तारा। इसी श्रृंखला में आगे का गीत है।

0: नमस्कार, धन्यवाद।
1: सखियों, अभी आपने सुना काव्य पाठ। कवित्री थी सुश्री भारती जैन। सखियों, हर मौसम खास होता है, उसमें बारिश का मौसम राहत और खुशी की लहर लेकर आता है। बारिश हमेशा पुरानी यादें और सुकून का एहसास लेकर आती हैं। सखियों, अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के अनुसार घर की साज सज्जा बदलने से न केवल घर का माहौल तरोताजा रहता है, बल्कि बदलते मौसम में आराम भी मिलता है। अभी चारों ओर हरियाली है, ऐसे में घर के बगीचे से फूलों को तोड़कर लिविंग रूम की सेंटर टेबल पर फूलदान में सजाएं। जब आप फूलों से भरे गुलदस्ते देखेंगी ना, तो इससे आपका मूड तुरंत अच्छा हो जाएगा। लिली, चमेली और गुलाब जैसे मधुर सुगंध वाले फूल किसी भी स्थान की सुंदरता बढ़ाने या उसे मनमोहक खुशबू से महकाने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। सखियों, विंड चाइम्स घरों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को

आमंत्रित करती हैं। उन्हें अपने बेडरूम स्पेस या लिविंग एरिया की खिड़कियों से लटका दें। इनकी आवाज से वातावरण में शांति और सुकून का संचार होता है। सखियों, बारिश में भारी पर्दे के कपड़े नमी को अवशोषित करते हैं और फिर एक अजीब सी स्मेल बनी रहती है। इसलिए इन दिनों हल्के रंग के लाइट पर्दे, जिससे हवा एवं रोशनी आसानी से प्रवेश कर सके। शिफॉन, नायलॉन, लिनन जैसे हवादार कपड़े घर में प्राकृतिक रोशनी आने देने के लिए एकदम सही रहेंगे, क्योंकि ये ताज

रहती है, इसलिए इन दिनों हल्के रंग के लाइट पर्दे जिससे हवा एवं रोशनी आसानी से प्रवेश कर सके। शिफॉन, नायलॉन, लिनन जैसे हवादार कपड़े घर में प्राकृतिक रोशनी आने देने के लिए एकदम सही रहेंगे, क्योंकि ये ताज

सखियों, आज के समय में स्वस्थ रहने के लिए मजबूत इम्यून सिस्टम होना बेहद ज़रूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम ही शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और अन्य संक्रमण से बचाने का काम करता है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमज़ोर होती है, तभी हम जल्दी बीमार पड़ते हैं और शरीर को संक्रमण से लड़ने में कठिनाई होती है। सखियों, आप जो खाते हैं वह आपके स्वास्थ्य और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा खान पान आपको स्वस्थ रखने, बार बार बीमार पड़ने से बचने और हर दिन अच्छा महसूस करने में मदद करता है। कुछ आसान आदतें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती हैं। विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर भोजन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। सखियों, पानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने

सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा

घनश्याम कुशवाहा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं स्वाति पाराशर के गाए गीत और भजन। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

स्वाति पाराशर के गाए गीत और भजन अभी आप सुन रहे थे। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। संगीत आनंद मिलिंद का है और फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और अब सुनवाते हैं परदेश फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: कुमार सानू की आवाज में परदेश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी ये जो गीत परदेश फिल्म का अभी आपने सुना, इस गीत की धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से जुड़ने का उन्हें बार बार सौभाग्य मिला है। इंडोनेशिया के प्रांबानन मंदिर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को अपने लिए विशेष महत्व का बताया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। केदारनाथ और महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान को भी उन्होंने अपना सौभाग्य बताया।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स का जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुमांगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है। नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6,500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकवेटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर योजना का 30 से 40 साल पुराना विवाद सुलझा लिया गया है। अब गुजरात 75% लागत वहन करेगा। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम योजना में प्रदेश पांडुलिपि संकलन में देश में पहले नंबर पर है। टीकमगढ़ से जम्बूद्वीप का नक्शा और बुरहानपुर से 220 वर्ष पुरानी श्री भागवत गीता पांडुलिपि मिली है। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान में साल करीब 7 करोड़ परिवारों की भागीदारी और 10,600 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हुआ। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझाकरण के दीर्घकालिक विवाद को समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर है। श्री शाह ने इसे सहकारी संघवाद का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकारों से राज्यों के बीच विवाद तेजी से सुलझ रहे हैं। भोपाल में 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीसीसी डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। पिछली दो कॉन्क्लेव में कुल 32,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। कार्यक्रम में देश विदेश की कई अग्रणी कंपनियां शामिल होंगी। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निगम ने अब तक फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। अन्य संस्थानों को 15 से 30 दिन में कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी भवनों में फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम और 2 सुरक्षित इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच आज अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 7वां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ। यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी रफ्तार से सक्रिय है। पन्ना, छतरपुर, खंडवा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने आज श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर और टीकमगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दान चढ़ावे की गड़बड़ियों की शिकायत पर जांच समिति बनाई गई है। कलेक्टर प्रीति यादव ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष सीईओ बीएस सोलंकी हैं। आगरमालवा जिला पुलिस ने कल जिले भर के स्कूलों, ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर सेफ क्लिक 2.0 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी प्रकार से रायसेन में भी सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान का समापन कल किया गया। नर्मदापुरम के पिपरिया रेलवे चिकित्सालय और रेलवे स्टेशन पर जबलपुर रेल मंडल द्वारा टीबी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जर्जर और जीर्ण शीर्ण भवनों में स्कूल संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एनसीईओई भोपाल के दो कैनो खिलाड़ी एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह सत्तावत का चयन 2026 आईसीएफ कैनो स्प्रिंट व पैरा कैनो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रामबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रामबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रामबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
3: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
3: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में

0: शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालू में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं दिलवाले फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और अंतरा मिश्रा की आवाजों में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत प्रीतम का है। इस गीत को पसंद किया है कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। साथ ही साथ ये फरमाइश हमें मिली है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश ठाकुर और छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की।

दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। यह हमारे श्रोता है अनिल फड़वाड़े, सीमा, स्मिता, श्वेता, सारथी, पूजा, आरती, अमृत, तृप्ति, रूपाली और अमृता, ये है हमारे गुमाश्ता नगर इंदौर से हमें फरमाइश मिली है। साथ ही साथ दिल तो पागल है फिल्म के इसी गीत को पसंद किया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जतिन बीरक और मीका बीरक के साथ ही साथ। ये पत्र है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से और पसंद करने वाले हमारे ये श्रोता है कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोत्रा, मुस्तवा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं। इसे आवाज से सजाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत उत्तम सिंह का है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और आज इस कार्यक्रम के साथ हूं मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा है, राम लक्ष्मण ने इसकी धुन बनाई है और आवाज एसपी बालासुब्रमण्यम की है। इस गीत को पसंद किया है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया और बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी रचाती माखीजा और पूरा माखीजा परिवार। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।

एसपी बालासुब्रमण्यम की ही आवाज में आप सुनेंगे अगला गीत, जिसे पसंद किया है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार। और इस गीत को सुनने के लिए हमें खत लिख भेजा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। और साथ ही साथ ये इन श्रोता का खत भी हम शामिल करते हैं।

जो है नेपाल पैलेस, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, ये सभी सुनना चाहते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का गीत। राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में इसके बोल लिखे हैं देव कोहली ने, आवाज एस पी बालासुब्रमण्यम की।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत जतिन ललित का है। इस गीत को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। ये फरमाइश है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और श्रीमती शीतल राजेश और

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गीत, जिसकी धुन बनाई थी जतिन ललित ने और गीत लिखा था समीर ने। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और अब इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से जुड़ने का उन्हें बार बार सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को अपने लिए विशेष महत्व का बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुआंगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर योजना का 30 से 40 साल पुराना विवाद सुलझा लिया गया है। अब गुजरात 75% लागत वहन करेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझाकरण के दीर्घकालिक विवाद को समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर है। भोपाल में 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीसीसी, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। पिछली दो कॉन्क्लेव में कुल 32,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। और लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम अब तक फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर चुका है।

आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम युववाणी। संध्याकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत होगा 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 बजे। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र के योगदान से आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा शाम 7:21 पर। रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से पुनः जुड़कर सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे चर्चा का विषय है। रात 10 बजे सुनिए नाटक बंटवारा, जिसके लेखक है मुरलीधर बलवानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा, जिसमें आप सुनेंगे पंडित कुमार गंधर्व का राग हमीर में ख्याल गायन। ये थी जानकारी हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:25 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। डीटीएच के श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं लोक संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे घनश्याम कुशवाहा के गाए लोकगीत।

घनश्याम कुशवाहा के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब सुनते हैं स्वाति पाराशर के गाए गीत व भजन सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत।

स्वाति पाराशर के गाए गीत और भजन अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए, अब पेश है चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको हम सुनवाने जा रहे हैं हम किसी से कम नहीं फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत

चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब सुनते हैं कारवां फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। आरडी वर्मा के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

आनंद बख्शी का लिखा गीत आप आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसकी लक्ष्मीकांत ने इस गीत को गाया है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, और फिल्म का नाम है

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत लता मंगेशकर के साथ आवाज है महेंद्र कपूर की, गीत रचना अनजान की है और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में है। गुलजार ने इस गीत के बोल लिखे हैं, संगीत आर डी बर्मन ने दिया है और

0: लिबास फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, जिसकी धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने और गीत लिखा था अंजान ने। इसी के साथ ये चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा के बाद मेलबर्न रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मित्रता के विशेष प्रतीक के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी को हवाई अड्डे पर विदाई दी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर योजना का 30 से 40 साल पुराना विवाद सुलझा लिया गया है। अब गुजरात 75% लागत वहन करेगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकेथॉन 2026 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देश के हथकरघा उद्योग को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बाघों की गतिविधियों को लेकर फैले भ्रम पर वन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। जांच में सामने आया है कि मोहली परिक्षेत्र में एक की जगह दो बाघ सक्रिय हैं। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जुलाई 2026 सेमेस्टर से स्वयं पोर्टल के मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाएंगे। छात्र किसी भी डिग्री या डिप्लोमा में 40% तक क्रेडिट पॉइंट ऑनलाइन कोर्स से पूरे कर सकेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज 2% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। और मौसम विभाग ने आज श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर और टीकमगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, जिसे हमने लिया है तीसरी मंजिल फिल्म से।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की ही आवाजों में एक बार फिर मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत राहुल देवबर्मन का है और फिल्म का नाम है यादों की बारात।

साजन की सहेली इस फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं दिलीप ताहिर का लिखा गीत राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में आशा भोसले भूपिंदर और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है उस्तादी उस्ताद से।

उस्तादी उस्ताद से फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 4:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। आज इसमें आप सुनेंगे हंसना मना है, इस हास्य धारावाहिक की 7वीं कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं, मगर इतने भी नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ ना समझते हो। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने।
1: फैक्ट्री से एक सज्जन जब चले, वो बड़े मूडी आदमी थे साहब, फैक्ट्री से जैसे ही चले तो उसने देखा कि एक दूध वाला भी चला जा रहा है, वो भी साइकिल में और वो भी साइकिल में। साइकिल में ये चले जा रहे हैं, दूध वाले की कुछ पता नहीं जल्दी जाना होगा या जो भी, तो उसने दूध वाले ने थोड़ी साइकिल की स्पीड बढ़ाई और इनसे आगे निकला। जैसे ही इनसे आगे, अच्छा हमसे आगे, मेरी साइकिल की स्पीड बढ़ाई, हम आगे, कभी वो आगे, कभी ये आगे, कभी वो आगे। फैक्ट्री से उन्हें मान लीजिए रांझी जाना था, और साहब ये आगे पीछे आगे पीछे। फिर हमने पूछा कभी ये हुआ क्या आगे पीछे आगे पीछे, कह लगे नहीं जाना तो रांझी था, लेकिन गुरु कभी वो आगे कभी हम पीछे, मेडिकल में जाके हराया उसको। ऐसा आजकल देखा जा रहा है कि आजकल मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले तो बहुत कम थे, और इस समय मीडिया क्रांति है। कोई अगर न्यूज दिन भर की दिखा रहा है तो कोई दिन में 6 बार दिखा रहा है, कोई दिन में 15 बार दिखा रहा है, कोई 24 घंटे न्यूज दिखा रहा है, पता नहीं कहीं 48 घंटे ना दिखाने लगे, कोई तुरंत की, कोई अब्बी की न्यूज दिखा रहा है। ऐसी न्यूज में एक न्यूज एक ने सुनी और क्या कहा दूसरे दोस्त से, दूसरे दोस्त ने क्या कहा, हाय बोले वो देखी, बोले कौन सी, बोले न्यूज वो अब्बी वाली, बोले नहीं यार नहीं देखी। अरे उसमें दिखाया गुरु बहुत डेंजर वाला दिखाया। क्या दिखाया गया? उसमें दिखाया कि एक आदमी अपने शहर का, वो गुरु 72 घंटे माने अफ्रीका के और इंडिया के और बने विदेश के और एक से एक खतरनाक सांपों के बीच में। अच्छा कहने कितने घंटे? 72 घंटे शायद, मतलब अपन 1 घंटे के सांप नहीं ले सकते, सांप के सांप मतलब सांप कितना डर लगता है, लेकिन वो 72 घंटे सांपों के बीच में। अरे कहने कोई बड़ा काम नहीं। अरे अरे तुम 72 घंटे तुम बोल रहे बड़ा काम नहीं, बोले भैया ऐसा है 72 घंटे वो सांपों के बीच रहा ना, 2 घंटे हमारी पत्नी के बीच रह के दिखाए। स्टेज पर, चैनल्स में, मीडिया में, सभी तरफ हम लोगों को प्रोग्राम करने होते हैं। खासकर लाइव प्रोग्राम में जब हम लोग शहर से बाहर जाते हैं, तो एक दूर दराज के गांव में भी मैं गया, और वहां पर चूंकि हम लोग प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा का था, हम लोग गए हुए थे, पूरी टीम हमारे साथ थी, लेकिन वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा था कि भाई हमारे जो आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट, उनको भी आपको मौका देना पड़ेगा। हमने कहा अवश्य देंगे। तो ब्रेक के दौरान उनको भी मौका मिला, और उन्होंने भी कुछ अपने गीत प्रेजेंट किए, कुछ अपने आइटम्स प्रेजेंट किए, और उसका एक अलग मजा है। देखे साहब, वो एक ऑब्जर्वेशन, हम लोगों की ऑर्केस्ट्रा चल रही थी, और वहां से अनाउंस हुआ कि और इसी के साथ ऑर्केस्ट्रा धमाल झमाल कमाल आपसे थोड़ी देर के लिए विराम लेती है, तब तक आपके लोकल आर्टिस्ट होंगे, आपके अपने आर्टिस्ट होंगे, आप खुद होंगे। आइए सुनते हैं आपके आर्टिस्टों को और आपके अपनों को। बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद, बहुत अच्छा, जबलपुर से आए आप लोगों ने सुनाया, बड़ा हम लोग का दिल जो है गदगद हो गया, और अब इसके बाद अनाउंसमेंट हम ही करेंगे और हम ही सुनाएंगे और हमारे बीच के लोग भी सुनाएंगे। हाँ सुनाइए साहब। उनने अनाउंसमेंट किया और म्यूजिशियन को रोक लिया कि भाई आप बजाएंगे, यहाँ म्यूजिशियन तो नहीं, लेकिन मैं आइटम वो बता रहा हूँ कि कैसे उस आइटम को किया। और सबसे पहले बड्डू भैया और बड्डू भैया की श्रीमती जी आ रही हैं, और वो एक गाना पेश करेंगे। आ जाने कर, अब मधुर चाल में दोनों चले आ रहे हैं बड़े प्यार के साथ, मंच पे आए बकायदा, मंच के उन्होंने पैर पड़े, घुटना पड़े, और फिर उसके बाद मंच पे चढ़े। मंच पे जैसे चढ़े तो, अच्छा कौन सा गाना गाएंगे भाभी जी आप बताइए। नहीं अल्लाह जी जी बोल, आप तुम ही बता दो ना, वो क्या बताएं आपको, चांदनी पिक्चर का गाएंगे। अच्छा गाइए भाई, चांदनी का पिक्चर का गाना गाएंगी, और बहुत बढ़िया गाती हैं, और उसके पहले बलुआ में भी गा चुकी हैं, 3 इनके प्राइवेट एल्बम लॉन्च हो चुके हैं। कौन सा हुआ? एक सोहरों का एल्बम लॉन्च हुआ, और एक दो जो है बधाई गीत का लॉन्च हो गया, और हमने 3-4 जो है दादरे कहरवा और पता नहीं कई कई चीजें हमने गाई, बहुत बढ़िया, मतलब बन्ना बन्नी गाए हैं, और मतलब बहुत अच्छा अच्छा हमने गाया है, तो चांदनी पिक्चर का गाएंगे। अच्छा ठीक है, तो शुरू करिए। नहीं पहले म्यूजिक तो लगाओ। अब साहब म्यूजिक वाले ने म्यूजिक व्यूजिक बजाया और उन्होंने गीत गाया, कैसे दोनों ने ड्यूट गाओ, सॉन्ग है। हाँ तुम तो शुरू करो पहले, तब तो हमारा नंबर है। अच्छा हम शुरू कर रहे हैं, हम सोचे कि तुम शुरू, नहीं आप शुरू करो। अब उन्होंने शुरू किया, चांदनी चांदनी टैमोरी।

0: घंटा हो गए चांदनी चांदनी आगे कहीं आओ।
1: गादो राय फिर उन्होंने कहा रंग भरे बदरा से तुरने नन के कजरा से मैंने जा दिल पे लिख दो तुरना चांदनी ते मोरी चांदनी ते मोरी चांदनी
0: कोई फूल कोई तोहफा तुम कछु भी साथ नहीं लाए कितनी महबूबा से मिलने खाली हाथ नहीं जाते तुम्हें नहीं बता सत वही ले आते यहाँ तो छूछे हाँ चले आए तुम
1: साहब ये आइटम का खैर कोई बात नहीं बहुत अच्छा प्रयास रहा आप चलिए दूसरे और हमारे जो गाने के लिए आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया गाते हैं आ जाओ भैया तुम्हारा क्या नाम
2: हमारा नाम है
1: वही नहीं हम भूल गए नाम नाम बताओ
2: हमारा नाम है कुरकुर कुरकुर कुरकुर
1: क्या नाम है
2: कुरकुर कुरकुर कुरकुर
1: कैसा नाम है
2: शॉर्टकट में है ना लंबा बहुत बड़ा है वो हम नहीं बता पाएंगे हमारे भैया बता पाते
1: अच्छा अच्छा ठीक है आप कौन सा गाना गाएंगे
2: आज की पिक्चर का गाएंगे
1: अच्छा गाइए आज की पिक्चर का गाना देखिए बहुत बढ़िया है खुरखुर खुरखुर जी और ये आज की पिक्चर का गाना गाएंगे
2: कौन सा वाला टाइटल वाला गाना गाएंगे
1: टाइटल वाला गाना गाइए कैसे उन्होंने गाना का सत्यानाश किया
2: मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में अगर साथ छोड़ा ये बादों न तोड़ा मैं तुमको भुला दे आऊंगा
1: ऐसा गा रहा है बेसुरा चलो इसके बाद एक बहुत बढ़िया बात है कि हमारे यहाँ जो गांव के मुखिया हैं उनकी बिटिया है और वो भी गाना गाएगी अच्छा अच्छा बिटिया नहीं आ रही है उन्होंने अपने भैया को भेज दिया है और उनके भैया रामलीला में काफी फीमेल रोल करते हैं कौशल्या सुमित्रा और न जाने कितने रोल किए हैं उन्होंने फीमेल रोल किए हैं और इसके अलावा वो सहेली सखी भी बन चुके हैं आइए बहुत बढ़िया कौन सा गाना गाओगे
0: हम पिक्चर वाले गाने गाएंगे
1: हाँ मैं रामलीला का नहीं गा पा रहा हूँ आप गाइए पिक्चर के गाने कौन सा गाएंगे
0: हम वो वाली पिक्चर का गाएंगे जो ऋतिक रोशन की पिक्चर का है
1: हाँ गाइए तो उन्होंने गाना गाया

0: प्यारी है, कहो ना प्यारी है।
1: और अब एक बार फिर मैं आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी एक फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ। ऐसी फिल्म की कहानी जिसको मैं देखने गया था और मेरा साथी था मेरे साथ लल्लू। लल्लू जो था उसको पान खाने का बड़ा शौक था, तो मैं और लल्लू दोनों फिल्म देखने के लिए गए। बड़े प्यारे प्यारे गाने थे उस फिल्म में, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे। तो साहब ऐसा है कि फिल्मों का शौक तो सभी को है, रेडियो के माध्यम से बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हम सुनते हैं। कभी कभी हमारे दूरदर्शन वाले भी बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चरें दिखाते हैं, गाने भी दिखाते हैं। खैर, तो उसी शौक को पूरा करने के लिए हम फिल्म देखने के लिए गए। साहब टिकट ली, टिकट लेने के बाद जब उस थिएटर में यानी टॉकीज के जो द्वार था, दरवाजा था, वहां जब हम पहुंचे तो हमने अपनी टिकट किसको दी? गेटकीपर को। उसने टिकट ली और हमसे कहा कि हाँ आप बैठिए, आपकी चेयर का नंबर है K4142 यानी के सीरीज में 4142। तो हमने लल्लू से बोला चल भाई अपन बैठे। तो लल्लू मुझसे बोलता है, इसके मुंह में पहले से पान था, उसके बाद मुझसे लल्लू बोलता है,
2: एक काम करो भाई साहब, आप जाकर बैठो, मैं एक आध पान खा के आता हूँ।
1: हमने कहा भाई साहब आपके मुंह में पान तो पहले से है। तो वो मुझसे बोलता है,
2: अरे नहीं ऐसा है कि अब एक आध पान और खा लेंगे, एक आध हम आपके लिए ले आएंगे।
1: हमने बिल्कुल ठीक है। मैं अकेला उस हॉल में जाकर बैठ गया, लल्लू भैया गए थे पान खाने। तो मैं जहां बैठा था क्या देखता हूं क्या सुनता हूं, एक भाई साहब बिल्कुल मेरे बाजू वाली कुर्सी में बैठ के सो रहे थे। बड़े खर्राटे ले रहे थे, बड़ी जोर जोर से। हमने कहा भाई साहब, ओ भाई साहब ये सोने की जगह नहीं है भाई साहब, यहाँ लोग सिनेमा देखने आते हैं, हैं? आप सिनेमा देखने की जगह सो रहे हो, अब घर में जाके सो? तो ये मुझसे बोलते हैं, साहब ऐसा है हम घर में जाके सो नहीं सकते। मैंने कहा आप क्यों घर में जाके सो नहीं सकते? इसलिए नहीं सो सकते भाई साहब कि मेरी धर्मपत्नी मेरे को सोने नहीं देती है। कभी बोलती है बर्तन मांजो, कभी बोलती है कपड़े धो, कभी बोलती है घर में झाड़ू लगाओ, कभी बोलती है पैर में मालिश करो, ये करो वो करो, फलाना करो ठिकाना करो। हमने अरे अरे अरे अरे बड़ी दयनीय स्थिति है तुम्हारी, तुमने क्या दहेज वगैरह ज्यादा लिया था क्या शादी में? तो वो मुझसे बोलते, नहीं साहब दहेज मैंने नहीं लिया, मैं तो बिल्कुल दहेज का विरोधी हूं, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने दहेज जरूर लिया था, वो काम उन्होंने गलत किया था, लेकिन दहेज लेने के थोड़े दिन के बाद वो चल दिए।

ऊपर चले गए, वो तो खैर ऊपर चले गए, लेकिन ये सब काम काज करने को मुझको छोड़ गए। हमने कहा चलिए ठीक है, आप सो जाइए या देखिए पिक्चर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है साहब, ये तो सो गए। अब इनके खर्राटे की आवाज मेरे दाहिने कान में आ रही थी और जो बायां कान मेरा खाली था वो क्या सुन रहा था, जो पर्दे के अंदर से गाना आ रहा था। कलाकार पर्दे पे आ गए, उन्होंने फटे कपड़े पहने हैं और पागल जैसा उनका सीन, मतलब दृश्य है, ड्रेसेस है, पूरा बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। वो गाना आया, बाएं कान से सुना, दाहिने कान से जो भैया बाजू में बैठे थे, भगवान इनका भला करे, इनके खर्राटे। तो खर्राटे और गाना, गाना और खर्राटे कैसे सुनाई दे रहा, सुनिए।

ने कहा उठो यहाँ से, उठो यहाँ से, और तुम सीधे घर जाओ। अरे हम फिल्म देखने के लिए आए हैं, गाना सुनने आए हैं, तुम तो खर्राटे लिए जा रहे हो, जमाई लिए जा रहे हो। इनको तो साहब मैंने भगा दिया, ये तो चल दिए। एक भाई साहब मेरे इस तरफ यानी बाएं की तरफ बैठे हुए थे, बाएं हाथ की तरफ, वो तालियां बजा रहे थे, बड़ी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। मैंने उनसे बोला क्यों भाई ताली क्यों बजा रहे हैं? कोई अच्छा सीन पर्दे पे आए, जब कोई बहुत बढ़िया सा डायलॉग आए, उस समय आपको ताली बजाना चाहिए। तो ये मुझसे क्या बोलते हैं कि साहब हम ताली इसलिए बजा रहे हैं कि कहीं हमको नींद ना आ जाए। तो साहब उनको शांत किया, पिक्चर आगे बढ़ी, बड़ा मजा आया। फिर वो मेन पिक्चर चालू हो गई, उसमें आगे कौन वो मुख्य कलाकार हीरो थे उस फिल्म के, चले जा रहे थे, उसका एक मेन गाना आया, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा साधा। ये गीत भी मैं अच्छे से नहीं सुन पाया साहब। क्यों नहीं सुन पाया? इसलिए नहीं सुन पाया कि एक भाई साहब मेरे पीछे बैठे हुए थे, उनको खांसने की बीमारी थी। अब आप सोचेंगे उनके खांसने में क्या तकलीफ, हम जो भारत के वासी हैं उनकी और हमारी, हमारी और आपकी खांसी कैसी होती, बड़ी साधारण, किस तरह से कुछ इस तरह की खांसी। लेकिन उनकी खांसी ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि विदेश से बुलवाई हो, भगवान जाने कहां से बुलवाई थी, उत्तर से बुलवाई थी कि दक्षिण से बुलवाई थी कि पश्चिम से, मालूम नहीं कहां से बुलवाई थी। क्योंकि उनकी खांसी, खांसने का बड़ा अजीबोगरीब स्टाइल था, जब वो खांसते थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रॉकेट, हवाई जहाज आसमान की तरफ हाई स्पीड में चला जा रहा हो। किस तरह से खांसते थे जरा देखेंगे, ये उनके खांसी की आवाज। अब बताइए ये खांस रहे हैं पीछे से, हीरो पर्दे पे है वो गा रहा है आगे से, मैं बीचों बीच, गाना खांसना खांसना गाना एक साथ कैसे सुनाई दिया? पहले तो वो गाना सुन लें आप, दो तीन लाइन ओरिजिनल जो बिना खांसी का है, और उसके बाद खांसी के साथ किस तरह से सुनाई दे रहा है मुझको, मैंने कैसा सुना वो मैं सुनाता हूं आपको ओरिजिनल गीत।

ओरिजिनल गीत है, ये सुनने मैं गया था जिसका मैंने शुल्क दिया था, लेकिन एक सेवा जो निशुल्क पीछे से उपलब्ध हो रही थी वो भी मेरे अपने मेरे भाग में आ गई। तो कभी गाना कभी खांसना, कभी गाना कभी खांसना, कैसा सुनाई दे रहा है सुनिए।

0: तेरे गया बंदा में सीधा दाते रावा दाते रावा दे पे तेरे गया बंदा में सीधा दाते रावा अरे दाते रावा अरे दाते रावा अरे दाते रा हमने उठो उठो यहां से अलग हो हट जा यहां से।
1: तो इनको तो खैर भगा दिया लेकिन ये दो मिनट के बाद फिर वापस आ गए। हमने क्यों आ गए तुम घर क्यों नहीं गए? तो ये मुझसे बोलते हैं
0: कर कैसे जाएंगे साहब घर वालों ने यहाँ पे भेजा है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा घर वालों ने यहाँ पे भेजा है हाँ। तो भैया दवाई क्यों नहीं करा लेते भाई साहब? दवाई कराइए, होम्योपैथिक कराइए, एलियोपैथिक कराइए, आयुर्वेदिक कराइए, यूनानी कराइए, नेचुरोपैथी कराइए भाई साहब, है कुछ ना कुछ तो इलाज होगा इसका खांसी का। आप कब से खांस रहे हैं? तो ये मुझसे बोलते हैं
0: भाई साहब मैं 18 साल से अखंड खांस रहा हूँ।
1: 18 साल से आप अखंड खांस रहे हैं? बहुत अच्छे साहब, वाह भगवान आपका भला करे हैं। और ये खांसी लेके आप मेरे सामने आए, मेरी पूरी पिक्चर आपने गड़बड़ कर दी भाई साहब। ओहो, तो पिक्चर में यानी हॉल में अंधेरा था, ना हाथ को हाथ दिख रहा था, ना पैर को पैर दिख रहा था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, अंधेरे में एक गोली उनको दे दी। किनको दे दी? वो खांसने वाले को। खांसने वाले को मैंने कहा लो भाई साहब इसको आप चूसते रहना, जैसे बच्चे मुंह में आपके चॉकलेट वगैरह लेके गोली बिस्कुट वगैरह लेके चूसते रहते हैं ना, वैसा आप चूसते रहिएगा हैं। इसको गले से नीचे नहीं उतारना, नहीं तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो ये मुझसे बोलता है
0: ये साहब काय की दवाई है?
1: ये आपके खांसी की दवाई है, इससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा। चलिए ठीक है साहब। उनको मैंने अंधेरे में एक गोली दे दी, उनको तो खैर आराम 2-4 मिनट के बाद मिला। तो मुझसे क्या बोलते हैं भाई साहब मैंने कहा बोलिए साहब क्या बात? अरे साहब ऐसी कौन सी जादू वाली गोली दे दी साहब आपने, भगवान आपका भला करे साहब, बिल्कुल मेरी खांसी तो बिल्कुल रुक गई साहब। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आप तो मेरे को एक काम करिए, वो जो दवाई आपने मेरे को दी है ना उसका आप मेरे को नाम लिख के दे दीजिए ताकि मैं बाजार से खरीद लेता हूँ। भाई साहब मैं 18 साल से अखंड खांस रहा था, विदाउट ब्रेक खांस रहा था, मैं अखंड खांस रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, वो क्या है कि वो जो हमने तुमको दवाई दी है वो बाजार की दवाई नहीं है, हमारा अपने घर का ओन प्रोडक्ट है, हम स्वयं उस दवाई को बनाते हैं, बाजारू दवाई हमने तुमको नहीं दी। भगवान भला करे उस खांसी वाले का, और भगवान मेरा भी भला करे, उसकी खांसी बंद हो गई। लेकिन उसने जो मुझसे पूछा था कि दवाई का नाम लिख के दीजिए, तो मैं क्या दवाई का नाम लिख के देता? अरे मैंने उसको दवाई दी ही नहीं थी, मैंने तो अपने कोट का बटन तोड़ा और उसको दे दिया था। चलिए साहब पिक्चर आगे बढ़ती है, बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आ रहा था। अचानक एक आवाज मेरे कान में आई, वो कौन सी आवाज थी?
2: भाई साहब, ए भाई साहब, भाई साहब।
1: हमने कौन है भाई?
2: मैं लल्लू आपका दोस्त।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई साहब जो पान खाने गए थे मेरे मित्र, ये आ गए हैं हमने। अच्छा अच्छा, आ जाइए अंदर आ जाइए, हॉल के अंदर आ जाइए। तो ये मुझसे बोलते हैं
2: कहां से आ जाइए, हमको तो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है।
1: हमने किसी को नहीं दिखता भाई साहब अंधेरे में, आपको कैसे दिखाई देगा अंधेरे में है? चले आइए, एक काम करिए, वो जो कुर्सियों के बीच में रास्ता है जहां और लोग बैठे हुए हैं, जो कुर्सियों की लाइन है उसके जो बीच में रास्ता है, धीरे धीरे चले आइए, धीरे धीरे चले आइए है, वहां मैं आपका आगे आके हाथ पकड़ लूंगा।
2: जी भाई साहब।
1: तो ये साहब अंधेरे में धीरे धीरे धीरे धीरे चले आ रहे हैं, मेरी तरफ बढ़े जा रहे हैं। लेकिन इनके कारण अंधेरे में किसको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, जरा मैं उनकी कहानी आपको सुनाता हूं, बड़े संक्षिप्त में, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। तो ये धीरे धीरे चले आ रहे, ये अंधेरे में चले, ये चले, एक ने कहा अरे अरे ये क्या करते हो? क्यों भाई साहब क्या हो गया?
2: अरे क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया?
1: अरे मेरी मूंगफली पूरी आपने गिरा दी, मेरी पूरी मूंगफली गिरा दी। अरे अरे अरे ये मेरे जूते जूते कहां लेके जा रहे हो भाई, मेरे जूते कहां?
2: अरे साहब गलती हो गई साहब, कुछ नहीं दिखाई दे रहा साहब। अरे बाप रे,
1: ये चले आ रहे चले आ रहे चले आ रहे। अचानक किसी ने मजाक कर दिया बीच में, कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ये सोचे कि मेरे पास आ गए, मैंने बोला बैठ जाओ, मैं तो बहुत दूर बैठा था, किसी ने मजाक कर दिया, कहा बैठ जाओ, तो ये बैठ गए। एक छोटा बच्चा बैठा था उसकी गोदी में वो बैठ गए उनकी गोदी में बैठ गए। तो उनके पिताजी ने एक तमाचा उसको मारा, वो गिरते पड़ते वो लल्लू लाल हमारे पास आए। हमने उनसे बोला क्यों लल्लू लाल कहां बैठ गए थे?
2: अरे कहले बहुत अच्छी जगह थी लेकिन एक हमको भगा दिया मार पीट के।
1: हमने वो तो बच्चा बैठा था भाई साहब, है वहां नहीं बैठना चाहिए आपको। खैर मैंने उनको बैठाया अपने पास, फिल्म आगे बढ़ी, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। इंटरवल हो गया मध्यांतर, जब मध्यांतर होता है हम और आप सभी जब टॉकीज से बाहर चाय कॉफी वगैरह पान वगैरह लेने जाते हैं तो सब अपने कपड़े अपने सब सही करते हैं, कोई सामान छूट ना जाए उसकी खास ध्यान देते हैं उस बात पे, तो वो सब कुछ मैंने किया जो आप करते हैं, हम सभी करते हैं। तो मैंने अपने लल्लू भैया से बोला, चलो इंटरवल होने के 5 मिनट पहले तो आप आए हो यार, हैं, चलो फिर से एक पान खा लेना, मैं चाय पी लूंगा। तो हम लोग कुर्सी से जब खड़े होने लगे तो मैंने अपना जो कोट पहना था, नया कोट पहना था, उसका मैंने दाहिना हाथ देखा, बहुत बुरी तरह गीला था। हमने ओहो हो ये गीला कैसे हो गया भाई, किसी ने पानी फेंका क्या? पानी कौन फेंकता भाई, किसी के हाथ में थाली नहीं, लोटा नहीं, गिलास नहीं, शीशी नहीं, बॉटल नहीं, हमने फिर पानी किसने फेंका? चारों तरफ देखा, किसी के हाथ में कुछ नहीं। अचानक मैंने बालकनी की तरफ ध्यान दिया, बालकनी की तरफ मतलब यह हुआ कि मैं नीचे बैठा था, वो कम पैसे वाली जो क्लास होती है, 5 रुपए की टिकट थी या 10 रुपए की, कुछ याद सा नहीं है, ऊपर बालकनी थी, नीचे मैं बैठा था। अचानक मैंने ऊपर की तरफ देखा तो एक बहन जी बालकनी से नीचे झांक रही थी और रो रही थी बड़ी जोर जोर से। हमने कहा बहुत अच्छे बहन जी, आपने तो क्या रोया भाई, वाह वाह, मेरे पूरे कोट में आपके आंसू गिर गए हैं। फिर मैंने चिल्लाया, मैंने कहा बहन जी, ए बहन जी इधर देखिए बहन जी। तो बहन जी ऊपर से देख के मुझको बोलती है, क्या है? अरे बहन जी ऐसा कैसा रोया बहन जी आपने, हैं, आपके आंसुओं से तो हमारा पूरा कोट खराब हो गया है, पीछे होके रोइए। तो वो पीछे हो गई और अपने पतिदेव, जो उनके पतिदेव उनके साथ आए थे, उनसे फौरन उन्होंने बोला कि आपको कितनी बार बोला था यहाँ बालकनी की दीवार के वहां पर आप मुन्ने को मत खड़ा करो। आप समझ रहे होंगे कि उनके बच्चे ने ऊपर से क्या किया, जो भी कुछ किया वो पूरा दाहिने हाथ के, मेरे कोट के दाहिने हाथ पे चला आया। वो तो अच्छा हुआ मैं जमाई नहीं ले रहा था, नहीं तो पानी भी पीने नहीं उठना पड़ता मेरे को। फिल्म में हम लोग बाहर निकले, एक कैंटीन होती जहां चाय समोसे कॉफी कोल्ड ड्रिंक लस्सी वगैरह सब कुछ मिलता है, वहां हम पहुंचे तो हमने क्या देखा, हमने तो खैर होटल के नौकर को बुला लिया, हमने भाई साहब यहां आइए मेरे लिए दो चाय ले आइएगा, एक इनके लिए हमारे लल्लू भैया के लिए और एक मेरे लिए। तो साहब दो चाय आ गई, हम पीने लगे, हम क्या देखते हैं कि हमारी कुर्सी के सामने दो सज्जन आकर बैठ गए। वो दो सज्जन कौन थे? वो थे तो बड़े अच्छे, लेकिन उन्होंने होटल के नौकर को थोड़ा सा सताने के लिए न जाने कुछ क्या किया, कुछ कॉमेडी के मूड में थे, हंसी मजाक के मूड में थे। तो एक जो सज्जन थे उन्होंने कुछ खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन सही तरीके से नहीं दिया, वो थे बहुत सही लेकिन वो अटक अटक के बोल रहे थे। हाँ, उन्होंने कुछ मजाक सा किया, अटक अटक के बोलने लगे। उनके साथ जो दूसरे सज्जन थे उन्होंने भी मजाक का मूड बनाया, उन्होंने क्या किया, वो नाक से बोलने लगे। अब बताइए एक सच्चा बढ़िया बोलने वाला आदमी अगर नाक से बोले तो कैसा बोलेगा, और सही बोलने वाला बिल्कुल लगातार शब्दों का इस्तेमाल करने वाला अगर अटक अटक बोले, अटक अटक के बोले तो कैसा बोलेगा। तो उन्होंने होटल के नौकर को बुलाया, सबसे पहले बुलाया अटक अटक के बोलने वाले भाई ने मजाक के बतौर, इधर आ भाई। नौकर आ गया, उसने कर्मचारी ने, होटल के कर्मचारी ने उनसे पूछा, हाँ साहब क्या चाहिए? तो वो अटक अटक के बोलने वाला बोलता है, आपकी दुकान में के के के के के के के के के के के क्या क्या है? तो नौकर बोलता है, आलू बंडा है, समोसा है, दालमोठ है, भाजी बड़ा है, रोटी है, पराठा है, चावल सादा है, चावल फ्राई है, नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, सब कुछ होगा साहब, अंडा भी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक लस्सी मिलेगा, चाय मिलेगा, कॉफी चाहिए, आपको क्या चाहिए? तो वो जो अटक अटक के बोल रहे थे उनने फिर मजाक किया, उन्होंने कहा ये वो सब नहीं, वो सुबह सुबह तुम लोग कढ़ाई में तेल डालकर चने के आटे में प्याज लहसुन पालक की भाजी सोडा नमक डालकर वो दे दे दे दे लाड ऑमलेट। तो नौकर बोलता है, साहब हम तो, हमको समझ में नहीं आया साहब आपको चाहिए क्या है, ये धे धे धे धे हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जरा अच्छे से बोलिए साहब, ये मिस्टर भाई साहब, ये क्या आप इनके साथ आए क्या? तो वो जो दूसरा था जो नाक से बोलने का मूड बना रहा था वो बोलता है, तो उन्होंने नौकर ने बोला, भाई साहब फिर आप ही बताइए ना आपको क्या चाहिए और इनको क्या चाहिए। तो नौकर जो खड़ा हुआ था उसके साथ साथ कौन खड़ा हो गया, वो नाक से बोलने वाला, नाक से बोलने वाला खड़े होके क्या बोलता है, अब बताइए
3: इंटरवल 5-10 मिनट का वक्त का होता है, उसके बाद फिर पिक्चर चालू हो जाती है। लेकिन ये दोनों मित्र बड़े मजाक के मूड में, नौकर के समझ में नहीं आया, उन्होंने फिर से उसको बोला अटक अटक के बोलने वाले।

किसने बोला? ये नौकर ने फिर से बोला कि भाई साहब एक काम करिए, वो जो जो भाई साहब सामने हैं उनकी तो बात समझ में नहीं आ रही, वैसे तो आपकी भी समझ में नहीं आई, लेकिन अगर एक बार और बता देंगे तो मेरे समझ में आ जाएगा कि आपको आलू बनना चाहिए कि समोसा चाहिए कि क्या चाहिए। तो अटक अटक के बोलने वाला फिर मजाक के मूड में आ गया, उसने फौरन बोला, समझने की कोशिश करो भाई साहब, जो सुबह सुबह आप लोग कढ़ाई में तेल गरम करते हो है ना, उसके बाद चने का आटा लेते हो, उसमें पालक की भाजी डालते हो, हरी मिर्ची डालते हो, नमक डालते हो, सोडा डालते हो और वगैरह वगैरह बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें डाल के वो गोल गोल घुमा के वो ऐसा करके जब तेल में दें दें दें दें लाडो प्लेट। नौकर बोलता भाई साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप जितना सब वो सब ठीक है लेकिन आप बाकी तो सब सही बोलते हो, लेकिन जिस शब्द को आपको बोलना चाहिए वहीं पे आप जाके सॉलिड हो जाते हो, ये बात गलत है, है? जरा फिर से आप बताइए किसको बोला इसने? वो नाक से बोलने वाले को। वो फिर खड़ा हुआ, फिर उसने वही बात सब रिपीट की, कहता है वो हमने कहा, नौकर बोलता रे बाप रे, इंटरवल तो गया भाई साहब, मेरे को बहुत नुकसान हो गया भाई साहब, आप मेरी दुकान में काहे को आए भाई साहब, काहे को आए भाई साहब, कहीं और चले जाते, भगवान आपका भला करे, काहे को आ गए भाई साहब। तो मेरे को बड़ी दया आ गई, मैंने होटल के कर्मचारी को बुलाया, हमने क्यों भाई क्या हो गया? कहले देखिए साहब, ये अटक बोल अटक अटक के बोलने वाला भी कुछ मांग रहा है और इधर नाक से बोलने वाला है ये भी कुछ मांग रहा है, अब ना मेरे समझ में आ रहा है, न इनकी बात न इनकी बात, किसी किसी तो आप मेरी मदद कीजिए भाई साहब। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे समझ में आ गया है ये दोनों लोग क्या मांग रहे हैं, तू इधर आ मैं तेरे को बताता हूं कि इनको क्या चाहिए। होटल का नौकर बिल्कुल मेरे नजदीक आ गया और मैंने उसके कान में कुछ कह दिया। किसके? उस कर्मचारी के कान में मैंने कुछ कह दिया। वो समझ गया, वो फौरन जाता है किसके पास? वो अटक अटक के बोलने वाले के पास और कहता है, हाँ भाई साहब अब आप बताइए आपको क्या चाहिए, अब मेरे समझ में आ जाएगा। वो जो भाई साहब बैठे हुए हैं ना, वो दो लोग बैठे हुए हैं जो, उन लोगों ने मुझको बता दिया है कि आपको क्या चाहिए, वो उन्होंने तरीका बता दिया है। तो आपके जो अटक अटक के बोल रहा था वो फिर बोलता है आखिरी में कि समझने की कोशिश करो कर्मचारी, कितनी बार बोला कि सुबह सुबह कढ़ाई में तेल गरम हुआ, चने का आटा, पालक की भाजी, हरी मिर्ची, सोडा, नमक, लाल भाजी, ये सब मिला के वो जो तुम लोग गोल गोल करके उसमें तेल में डालते हो और जब वो निकलता है दही दही दही लाल ऑमलेट। तो नौकर बोलता हाँ अब समझ में आया साहब, आपको वो गोल गोल वाला चाहिए ना? तो अटक वाला बोलता हाँ। तो नौकर बोलता वो खत्म हो गया।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक हंसना मना है की सातवीं कड़ी। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 5 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नवीन विनिर्माण संयंत्र के भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण के तहत इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी कर दूसरे चरण

0: देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के अंतर्गत संचालित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर तक रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जाए और प्रदेश के सभी शासकीय अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त उत्कर्ष भार्गव और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है, आप भी किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के दौर में हमारी पढ़ाई में एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट की मदद से पूरा होता है, लेकिन दोस्तों इंटरनेट उपयोग करने की भी अपनी अलग चुनौतियां हैं। कई तरह के स्पैम, वायरस, गलत लिंक या मालवेयर सॉफ्टवेयर का भी सामना हमें इंटरनेट के उपयोग से करना पड़ता है। तो आज क्यों ना इसी टॉपिक पर बात करते हैं। आगे बात करने से पहले क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

दोस्तों, तकनीकी युग में मानव जीवन को नई गति दी है। इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने संवाद, शिक्षा और अभिव्यक्ति के अनगिनत अवसर उपलब्ध कराए हैं, किंतु इन सुविधाओं के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। उन्हीं में से एक है साइबर बुलिंग। दोस्तों, आज का युवा डिजिटल दुनिया का नागरिक है। उसकी पढ़ाई, दोस्ती, मनोरंजन और बातचीत काफ़ी हद तक इंटरनेट के माध्यम से होती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। तो दोस्तों, आइए समझते हैं साइबर बुलिंग क्या है। साधारण शब्दों में, इंटरनेट या डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को बार बार अपमानित करना, धमकाना, उसका मजाक उड़ाना या उसकी निजी जानकारी का दुरुपयोग करना साइबर बुलिंग कहलाता है। दोस्तों, इसके कई तरीके हैं, जैसे फर्जी प्रोफाइल बनाना, अपमानजनक टिप्पणियाँ करना, निजी तस्वीरें साझा करना, धमकी भरे संदेश भेजना, झूठी अफवाह फैलाना और किसी व्यक्ति का उपहास करना। दोस्तों, पहले जहां उत्पीड़न केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित रहता था, वहीं आज इंटरनेट के कारण यह 24 घंटे कहीं भी संभव हो गया है। यही कारण है कि साइबर बुलिंग का प्रभाव अधिक गहरा होता है। हमारे शास्त्रों में सदैव संयमित वाणी और मर्यादित आचरण का संदेश दिया है। संत कबीर का यह दोहा आज भी उतना ही सार्थक है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। डिजिटल युग में भी यह शिक्षा हमारे लिए मार्गदर्शक है। दोस्तों, साइबर बुलिंग केवल तकनीकी समस्या नहीं, यह सामाजिक, मानसिक और नैतिक चुनौती भी है। इसके प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास, शिक्षा और पारिवारिक जीवन तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि साइबर बुलिंग का युवाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, किसी के कठोर शब्दों का घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका दर्द बहुत गहरा होता है। जब यही व्यवहार इंटरनेट के माध्यम से बार बार होता है, तो उसका प्रभाव और भी गंभीर होता है। आज साइबर बुलिंग के कारण युवाओं में कई सारी समस्या

समस्याएं देखी जा रही हैं और इसके कारण हैं। तनाव और चिंता बढ़ सकती है, आत्मविश्वास की कमी आ सकती है, पढ़ाई और एकाग्रता प्रभावित हो सकती है तथा सामाजिक अलगाव की भावना भी हो सकती है। कई युवा अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं करते, वे सोचते हैं कि शायद यह केवल मजाक है या फिर शिकायत करने से स्थिति और बिगड़ जाएगी। लेकिन याद रखिए, चुप्पी समाधान नहीं, जागरूकता ही सुरक्षा है। समस्या को स्वीकार करना और सहायता मांगना साहस का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। दोस्तों, भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए अनेक कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जो डिजिटल माध्यमों में होने वाले अपराधों पर नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत पहचान को छिपाना, धोखाधड़ी करना, अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार। यदि कोई युवा साइबर बुलिंग का शिकार हो जाए तो क्या करें? तो दोस्तों, सबसे पहले घबराए नहीं। दूसरा, सभी डिजिटल प्रमाण सुरक्षित रखें, जैसे स्क्रीनशॉट, संदेश, ईमेल या प्रोफाइल लिंक। तीसरा, संबंधित प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट और ब्लॉक करें। चौथा, अपने माता पिता, शिक्षक या विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी दें और आवश्यकता पड़ने पर साइबर अपराध या साइबर सेल और पुलिस से संपर्क करें। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान करता है। तकनीक का सही उपयोग विकास का मार्ग बनता है और उसका दुरुपयोग समाज को पीड़ा देता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। कानून हमें सुरक्षा देता है, लेकिन समाज और परिवार हमें संस्कार देते हैं। जब दोनों साथ चलते हैं, तभी सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण होता है। दोस्तों, इस तरह के साइबर अपराधों से लड़ने के तरीकों और इसके निराकरण पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी समय है एक प्यारे से गीत का।

दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस चुनौती का समाधान केवल कानून से नहीं बल्कि परिवार, विद्यालय और समाज के सामूहिक प्रयास से संभव है। परिवार बच्चे का पहला विद्यालय होता है। माता पिता यदि बच्चों के साथ खुलकर संवाद करें, उनकी ऑनलाइन गतिविधियों में रुचि लें और उन्हें सही गलत का विवेक सिखाएं, तो अनेक समस्याओं को प्रारंभ में ही रोका जा सकता है। बच्चों को यह विश्वास होना चाहिए कि किसी भी कठिन परिस्थिति में उनका परिवार उनके साथ है। विश्वास और संवाद, यही है सुरक्षित परिवार का आधार। दोस्तों, कोविड काल के बाद इंटरनेट का उपयोग बच्चों को भी करना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए आज आवश्यकता है कि विद्यालयों को साइबर सुरक्षा पर कार्यशालाएं आयोजित करना चाहिए। डिजिटल नैतिकताओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाना चाहिए तथा संवेदनशील और सम्मानजनक ऑनलाइन व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोस्तों, हमें खुद भी यह याद रखना चाहिए कि हम किसी की निजता का सम्मान करें, बिना अनुमति के किसी की तस्वीर या वीडियो साझा

असुविधा न करें, अपमानजनक टिप्पणियों से बचें, फर्जी समाचारों को आगे न बढ़ाएं और यदि कोई साइबर बुलिंग का शिकार हो तो उसका सहयोग करें। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था, किसी समाज की महानता इस बात से आंकी जाती है कि वह अपने सबसे कमजोर और पीड़ित लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता। डिजिटल समाज भी इस सिद्धांत से अलग नहीं है। यदि हम इंटरनेट को सम्मान, सहानुभूति और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें तो तकनीक मानवता के विश्वास का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। इसीलिए क्लिक करने से पहले सोचें, पोस्ट करने से पहले समझें और किसी को आहत करने से पहले स्वयं को उसकी जगह रख कर देखें। दोस्तों, तकनीक के इस युग में ज्ञान के साथ विवेक, अधिकारों के साथ कर्तव्य और स्वतंत्रता के साथ संवेदनशीलता का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, हम सब मिलकर एक ऐसा डिजिटल भारत बनाएं जहां प्रत्येक युवा सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करें।

दोस्तों, आशा है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको साइबर बुलिंग की समस्या, उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के महत्व के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ते रहें। हम कल नई बातों को और गीतों के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना।
5: बदलो बदलो, आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में फिल्म लाल सिंह चड्ढा से।

प्रीतम का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म थैंक गॉड से। आवाज है योहानी, जुबिन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन की।

तनिष्क बागची और शामत संगीत का संगीत, रश्मि विराग दुल्हन एरेक्स और मेलोडी का के लिखे बोल, योहानी जुबिन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन की आवाज में गीत सुनाते फिल्म थैंक गॉड से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म सीतारामम से, आवाज है अरुणिता और शाश्वत सिंह की।

विशाल चंद्रशेखर का संगीत, कुमार के लिखे बोल, अरुणिता और शाश्वत सिंह की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म सीतारामम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कविता और कनिष्क सेठ की आवाज में फिल्म जुग जुग जियो से।

कविता सेठ, कनिष्क सेठ का संगीत और आवाज भी उन्हीं की थी। फिल्म थी जुग जुग जियो। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म जयेश भाई जोरदार से। आवाज है शेखर रविजानी और प्रिया सरैया।

शिखर अवजानी और प्रिया सरैया की आवाज़ में गीत सुना आपने, फिल्म जयेश भाई जोरदार से आवाज़ से हमने आपको बता दी, और संगीत था विशाल शेखर का, बोल लिखे थे जयदीप साहनी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है जुबिन नौटियाल की आवाज़ में, फिल्म का नाम है रूही।

सचिन जिगर का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल जुबिन नौटियाल की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म रूही से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं। इसमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र जिलाधार में आयोजित लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नवीन विनिर्माण संयंत्र के भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकेथॉन 2026 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के अंतर्गत संचालित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर तक रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जाए और प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेले का आयोजन कर रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
0: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
0: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।

0: गांधीनगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
1: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
0: श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की।
1: जी,
0: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात।
1: जी,
0: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था।
1: जी अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
0: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने।
1: जी,
0: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही।
1: जी,
0: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
1: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
0: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
1: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
1: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
0: क्यों?
1: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
1: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी।
1: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800-440-559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आ

0: आते
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज

0: कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया वो देखने में कैसे लगते हैं।
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं। और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेज

0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आइए।

0: गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
1: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो आदिवासी का ये चित्र।
0: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
2: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
0: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
2: हाँ।
0: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
0: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
2: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
0: अच्छा अच्छा।
2: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
1: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
2: जी।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
1: वाकई कमाल है।
2: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
0: सचमुच?
1: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
0: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
2: लीजिए, ये आपका हुआ।
0: इसकी कीमत?
2: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
0: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं, एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जहां पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म ताल से।

ए आर रहमान का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ताल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म दिल्ली 6 से, आवाज़ है मोहित चौहान की।

या रहमान का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल मोहित चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दिल्ली 6 से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुनिधि चौहान की आवाज़ में, फिल्म का नाम है चमेली।

संदेश शांडिल्य का संगीत अरशाद कामिल के लिखे बोल, सुनीति शाहन की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म चमेली से। कार्यक्रम का अगला गीत चित्रा और उस्ताद सुल्तान खां की आवाज में फिल्म ट्रैफिक सिग्नल से।

संदेश शांडले का संगीत खिलेश शर्मा के लिखे बोल, चित्रा और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म ट्रैफिक सिग्नल से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है फिल्म गुरु से श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज में।

यार रहमान का संगीत गुलजार के लिखे बोल, श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म गुरु से। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब एक सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जाति अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की

0: सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये संदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने का अपील करती है। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल। सूचना समाप्त हुई।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय

0: मोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्तीय पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसकी संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें।

कार्यक्रम सुर्खियों में सुनिएगा रात 8 बजे। चर्चा का विषय है, प्रसारित होगा रात 9:30 पर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। मुरलीधर बलवानी द्वारा लिखित नाटक बटवारा सुनवाया जाएगा आज रात 10 बजे। प्रस्तुत करता है राकेश ढौंडियाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन सुन सकेंगे रात 10:30 पर। राग हमीर।

सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, माफ कीजिएगा, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे प्रसारित होगा कल दोपहर 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम संग्रहालय सिंह के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है की 8वीं कड़ी सुनवाई जाएगी कल दोपहर 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दोपहर 1:30 पर। और कल दोपहर 1:45 पर सुने सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होंगे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकेंगे कल दोपहर 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा कल शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। प्रायोजित कार्यक्रम NCRT सुनवाया जाएगा कल शाम 6 बजे। सुर्खियों में सुनिएगा कल रात 8 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश प्रसारित किया जाएगा रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरजनी में कल रात 10:30 पर सुन सकेंगे वसंत रानाड़ी का वायलन वादन राग कमोद।

आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। रात 7:21 पर सुनेगा कार्यक्रम ग्राम सभा। कार्यक्रम नमस्कार भोपाल सुन सकेंगे कल सुबह 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम

कार्यक्रम वतन का राग सुनवाया जाएगा कल सुबह 8:30 पर। कल सुबह 9:15 पर सोम संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा भाग्यश्री सहस्त्रबुद्धि द्वारा गाए भजन। निकोलाई गोगोल द्वारा लिखित नाटक इंस्पेक्टर जनरल सुनवाया जाएगा कल सुबह 9:30 पर। प्रस्तुत करता है राकेश ढौंडियाल। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10:00। कार्यक्रम गीत सागर प्रसारित होगा कल सुबह 10:05 पर और कल रात 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

0: ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा पूरी कर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया और दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो को लेकर की समीक्षा, कहा अच्छी बारिश से वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या घटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण के तहत इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी कर दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने खुद एयरपोर्ट पर उन्हें विदाई दी। इस दौरे में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल प्रणालियों से जुड़े रक्षा समझौते हुए, जिससे दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने योग्याकार्ता स्थित करीब 1000 साल पुराने परम्बानंद मंदिर में पूजा अर्चना की और राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मिलकर मंदिर के पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से अपने आध्यात्मिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए वड़नगर, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि केदारनाथ धाम, उज्जैन महाकाल लोक के बाद अब परम्बानंद मंदिर के पुनर्निर्माण से जुड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। वे भुवनेश्वर में समुद्री मत्स्य संसाधनों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ओयूटी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़े दस्तावेज का लोकार्पण भी होगा। इसके बाद वे नाइसर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह खोरधा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना की लागत को लेकर 3 दशक से लंबित विवाद सुलझ गया है।

0: के तहत अब मध्य प्रदेश गुजरात को 217 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिलों में छोटे आईटी पार्क विकसित करने के साथ ही डेटा सेंटर उन्नयन के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। वहीं उज्जैन के निकट डोंगला वेदशाला के विकास कार्यों के लिए 39 करोड़ रुपए और नमो हरित नगर योजना के तहत 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए से नगर वन विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है।
1: पर्यावरण से संबंधित नई योजना बनाई जा रही है, वह योजना है नमो हरित नगर योजना, जो हर नगर के अंदर नगर वन बनाने हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। उसके लिए नमो हरित योजना में अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन बने, नगर वन जो बने, उन वनों में स्थापना के समय भी CSR या स्थानीय जन भागीदारी की राशि जो मिलेगी उसका बराबरी का राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रति वर्ष 5 सालों तक उनको मेंटेनेंस की राशि भी राज्य सरकार देगी।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुआंगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है।
2: इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का लोकार्पण, दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही है, और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पर काम कर रहा है जिसकी आज दरकार है।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6,500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकेवेटर बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हवाई अड्डों की सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ ये बैठक की। श्री शाह ने सभी हवाई अड्डों पर स्वचालित एक्सरे ट्रे सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। एयरो ब्रिज और बैगेज ड्रॉप सुविधा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2027 तक सभी राज्यों में विदेशी पंजीकरण कार्यालय शुरू होंगे। अगरतला और जेवर हवाई अड्डों पर जल्द आवर्जन जांच चौकी शुरू करने को भी कहा गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में वर्षा की स्थिति पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के प्रभाव पर हुई समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने बताया कि जून में 33% बारिश की कमी थी, जो जुलाई में घटकर 24% रह गई है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 350 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल से कम है। मंत्री ने किसानों को मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम पानी वाली फसलें बोने की सलाह दी है।
4: अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है उस पर लगातार हमारी नजर है। अभी हाल में 3-4 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, कई राज्यों में बारिश हुई है, और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे उनकी संख्या घटकर 178 रह गई है। कल तक 350 लाख 85 हजार हेक्टर में बोनी हुई है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह, क्योंकि अब देर हो जाएगी, तो मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि की फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: धार वन मंडल ने जनवरी से मई 2026 के बीच वन भूमि संरक्षण अभियान चलाकर करीब 590 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। सबसे ज्यादा जमीन बाघ परिक्षेत्र में छुड़ाई गई है, जिसके बाद धार, टांडा, मांडव, सरदारपुर, कुक्षी और धामनोद का नंबर आता है। इस मुक्त कराई गई जमीन पर अब सागौन के पौधे लगाकर पुनर्वनीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कामकाज की समीक्षा की। CEO आयुष्मान अरविंद कुमार शाह ने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 5,86,00,000 आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं, जबकि लगभग 20,000 अस्पताल और 18,000 डॉक्टर नर्स डिजिटल रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। प्रदेश के 533 अस्पतालों में स्कैन एंड शेयर सुविधा से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा OPD टोकन जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी शासकीय अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है। यह हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें विद्यार्थियों को एक ही जगह पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। राजधानी भोपाल में दवा दुकानों पर सख्ती की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शहर के कई मेडिकल स्टोर्स की अचानक जांच की। जांच में गड़बड़ी मिलने पर 32 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है। बिना फार्मासिस्ट दवा बेचने वाले 2 स्टोर्स का लाइसेंस रद्द किया गया। डॉक्टर के पर्चे के बिना दवा बेचने पर 1 स्टोर का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। इसके अलावा 8 स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर 21 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है। भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र से 2 कैनो खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह शक्तावत अब भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। दोनों खिलाड़ी 2026 ICF कैनो स्प्रिंट और पैरा कैनो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ये प्रतियोगिता 9 से 12 जुलाई तक कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में होगी। कैनो स्प्रिंट एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी जल क्रीड़ा है, जिसमें एथलीट शांत या समतल पानी पर विशेष रूप से डिजाइन की गई नावों में एक सीधी रेखा में कम दूरी की रेस लगाते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ने जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर सभी बेड पर बच्चों को भर्ती करने और फायर सेफ्टी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय शिक्षा दिवस पर भारतीय ज्ञान परंपरा एवं चरित्र निर्माण विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन नागानंद नाटक की पृष्ठभूमि और रस सिद्धांत पर व्याख्यान हुआ। देवास जिला चिकित्सालय में विश्व क्लब फुट माह के तहत जनजात पैर के तिरछेपन से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। आगरमालवा कलेक्टर ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान को गंभीरता और आपसी समन्वय से संचालित करने के निर्देश दिए। सीहोर में सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत आज भैरुंदा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अशोकनगर में स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी में विद्यार्थियों को रोजगार परक और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए कई नवाचारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और झाबुआ में शासकीय विद्यालय पिपलिया पारा रोड और आंगनवाड़ी केंद्र का कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनन वारे सभी किसान भैया बहनन का बिजलता बहन की दोई हाथ जोड़ के नेवरी राम राम। और भैया हरो देखो आप और सभी राज्य खुशी कुशल मंगल हो। काहे कि हम जो ही चाहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। काहे कि भैया देखो सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और भैया सभी जो है मस्त रहें। तो हम तो यही चाहते हैं। और भैया देखो आप और देख ही रहे हो कि आषाढ़ को महीना चल रहा है और जुलाई के महीना की जो है आज 8 तारीख भी शुभ हो गई है। ये सभी बातें जासों कही जा रही हैं कि खेती बाड़ी की जो है कामकाज चल रही हुई है। सभी प्रकार की जो है बोनी करी जा रही है। ज्वार बाजरा मक्का उड़द मूंग तिल्ली और मूंगफली आदि फसलें जो है बोई जा रही हैं। और कछु भैया हर तो तैयारी में लगे हुई हैं, जैसे कि साग भाजी जैसे लौकी तुरैया करेला कद्दू भिंडी टमाटर मिर्ची बैगन आदि की जो है पौधे भी तैयार शुरू करी जा रही हैं। जिनके द्वारा देखो जैसे घर के साग भाजी अपनी खेती से प्राप्त कर सके और अपने व्यवसाय के रूप में आय को साधन भी प्राप्त हो। और भैया हर जा बात का

हम और आप औरें अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि खेती ही हम किसान भैयन को जो है आय को जो है मुख्य और प्रमुख साधन है। इसे कहा है कि हम जो है अपनों अच्छे से अच्छो जो है रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कछु भैया हरण का है, कम पढ़े लिखे हुई हैं, जिनकी जैसे नौकरी चाकरी नहीं है और धंधे पानी की जो है नहीं है, उनके लिए जैसे खेती बाड़ी ही तो जीविका को जो है मुख्य स्रोत है और जो है जीविका को जरिया है। और जैसे स्वयं की भूमि नहीं है तो वे क्या करते हैं कि दूसरों की जैसे भूमि को बटिया से कर सकते हैं और बाड़ा से भी ले सकते हैं। और आज भी भैया गाँव में ऐसे सीधे सांचे भैया आ रहे हैं जिन्हें अपनी जैसे पूंजी है या रकम है, यानी कि रुपया पैसा को जैसे किसी जैसे प्रकार से बचत करें तो उनको कहाँ पर रखा जाए। पहले का है कि पहले के लोग कई बार का हो तो रख करके भूल जाते, चोरी चपाटी हो जाती थी या जगह पर जैसे रखते थे तो भूल जाते, तो जैसे कहीं भी ज़मीन में भूमि में के अंदर जो है छुपा कर रख देते थे और भूल जाते थे, तो जा प्रकाश से धन को जो है सही उपयोग नहीं कर पाते थे। तो ये सभी बातों को देखो ध्यान में रख कर के हमें देश के जो है भारत सरकार द्वारा जो है सभी बातों को रख के ध्यान में तो ये चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना, और यह योजना भैया हरो या को मुख्य उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक के उन गरीब परिवारों को जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा जो है जीरो से खाता खोलो जाए। जो गरीब हैं या जो वंचित वर्ग के लोग हैं उन्हें सुविधाएं प्राप्त हों, जिनके बैंकों में खाते नहीं हैं, खुले नहीं हैं, उन्हें सभी जो है सुविधाएं बैंक प्रणाली में जो है खाता खोलो जाए और उनके जैसे सभी आवश्यक जो है दस्तावेज वो है जैसे आधार कार्ड है या मतदाता पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एक फ़ोटो जैसे, और भैया हमें जैसे और भारतीय नागरिक हों और जैसे और भी जैसे 10 वर्ष के या उससे अधिक आयु के बच्चे भी हैं, उन्हें निर्धारित शर्तों के साथ खाता खोल सकते हैं। जिनको जैसे किसी बैंक में खाता नहीं है, जिन्हें प्राथमिकता दी जाता है। और भैया हरो यह सरकार की बहुत ही नौनी योजना है, जहाँ में कहा है कि सीधे लेन देन जो है जो भी धनराशि खाते में आती है और बैंकों में सुरक्षित रहते हैं। ना तो देखो भैया चोरी चपाटी को डर रहते ना खोबे को डर रहते है? तो यह योजना भैया हरो 28 अगस्त 2014 को जो है शुरू करी गई थी माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो है आर्थिक सुरक्षा आत्मनिर्भर भी बनाती है, ये अपन सभी जानते हैं। और कोनो तरह का जो और चोरी चपाटी का डर भी नहीं है रहते। और भैया हरो देखो प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत की वित्तीय समावेशन की जो है दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, जो गरीब वंचित वर्ग को जो है बैंकिंग सेवाओं जैसे बीमा पेंशन और सरकारी बहुत ही जो है ये योजनाओं के लाभ से जुड़कर उनकी जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है भूमिका निभाते है। और भैया हरो आज की यह है योजना, आजकल आप देख ही रहे हो कि सबका साथ सबके विकास की भावना को भी सरकार जो है साकार भी करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो भैया हरो जो तो चर्चा थी अपनी प्रधानमंत्री जनधन योजना पर, और भैया हरो देखो मौसम तो आप और देख ही रहे हो, देख रहे हो ना जैसे कि वर्षा अपन और पहले के समय में देखता थे कि जो है 15 दिन तक लगातार जो है रात दिन पानी पड़ता है, तो और अब तो देखो पर भैया देखो चर्चा से पहले अब सुनवा रहे हैं आप औरन को कि आज बुधवार है, बुधवार को जो है गणेश भजन से जो है

भैया और देखो, अभी आप और सुन रहे थे जो है देवी भजन। काहे कि देखो आज है शीतला साथ हैं, और जो भजन गा रहे थे नारायण सिंह कुशवाहा और साथी। तो भैया देखो, आप और को जरूर जो है मैया के प्रति जो है भावना व्यक्त हुई हुई है, और जो है नौनी भी लगो हुए। और भैया अब लेते हैं तनिक विराम और सुन पाते हैं जो संदेश।

0: हाँ भैया, और तो देखो विराम के बाद हम फिर से हाजिर हैं अपने चौपाल कार्यक्रम में। और भैया देखो, अपन कई बार कहा है ऐसे व्यक्तियों को सुई दे कहते हैं जिनके जैसे शरीर में सफ़ेद दाग धब्बे होते हैं, जैसे त्वचा पर, पूरे हाथ पांव में, मुंह पे तो सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। तो यही संबंध में आज हम अधिक जानकारी के लिए सुनवा रहे हैं जो भेंट वार्ता बाको विषय है सफ़ेद दाग कारण लक्षण और बचाव। तो हमारे बीच जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कमल भदौरिया और उनसे बातचीत कर रहे हैं सोहन सिंह। तो आओ भैया हरो सुनत हैं जो भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों अपना सामाजिक जीवन जीते हैं, कभी कभी हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ऐसी होती हैं जो सामाजिक से जुड़ी होती हैं। सफ़ेद दाग क्यों होते हैं और इनसे किस तरह बचाव कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर कमल भदौरिया। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि कहीं कहीं किसी किसी के सफ़ेद दाग पाए जाते हैं, तो डॉक्टर साहब ये सफ़ेद दाग किस कारण से हो जाते हैं?
2: सफ़ेद दाग गांवों में, शहरों में काफ़ी व्यापकता से बढ़ रहे हैं। सफ़ेद दाग जो हमारे शरीर में रंग बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं जिनको हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं, उनके डिस्ट्रक्शन होने से या उनके काम बंद करने से हो जाते हैं। अब सफ़ेद दाग कई कारणों से होते हैं, जो साइंस बताता है उसमें एक जेनेटिक कारण है, स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल है, न्यूट्रिशनल है, माइक्रोसेल बैलेंसिंग है, और भी अज्ञात कई कारण है। एग्जैक्ट इटियोलॉजी अभी सफ़ेद दाग की साइंस को भी ज्ञात नहीं है। जितने प्रकार के सफ़ेद दाग होते हैं उनमें से 60-70% सफ़ेद दाग ठीक हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, ये सफ़ेद दाग होते हैं क्या डॉक्टर साहब ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहते, जेनेटिक होते हैं?
2: नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, जिनके परिवारों में, पूर्वजों में या पहले सफ़ेद दाग रहे उनमें ज़्यादा होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि उनमें हो गई, पर एक संभावना ये भी है कि उनमें होने की आशंका ज़्यादा प्रबल होती है बजाय एक नॉर्मल परिवार में।
1: डॉक्टर साहब, सफ़ेद दागों को लेके ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियाँ पाई जाती हैं।
2: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सफ़ेद दाग यों तो केवल त्वचा के रंग में विभेद करने वाला केवल एक सामान्य सी स्किन बीमारी है। इसको समझने के लिए ज़रूरत है कि ये एक तो छुआछूत की नहीं है, ना ही साथ में खाने से, न रहने से, न पहनने से ये फैलती है। इसका सामाजिक स्टिग्मा बड़ा बना लिया है जिसके कारण सामाजिक छुआछूत तक की इसके लिए बात आती है। सफ़ेद दाग को बहुत हमको सामान्य और सहज रूप से लेना चाहिए। ये बीमारी सामान्यतः तो ठीक हो जाती है 60-70% लोगों में, अगर उसके बावजूद भी किसी बहन भाई के ये रह जाती है तो उससे हमको डरने या उसकी ज़रूरत नहीं होती है।
1: डॉक्टर साहब, ये जो सफ़ेद दाग होते हैं डॉक्टर साहब ये किसी भी अवस्था में हो सकते हैं?
2: किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, और सामान्यतः छोटी उम्र में, मतलब टीनेजर्स और अर्ली एडल्ट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, और फीमेल्स में भी होते हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा हमारी माताएं बहनें प्रभावित होती हैं। ठीक से

0: लोगों को ज्ञान नहीं होता या अंधविश्वास होता है कि ये और कोई बीमारी है ऐसी छुआछूत की है जिसके कारण हमको भी हो सकती है, तो उनको उपेक्षा और उसका वो झेलना पड़ता है जो कि गलत है। हमारे और आपकी तरह ही वो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जिनको सफ़ेद दाग होते हैं, और उसमें हमको कतई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चियां या बच्चे इस रोग से पीड़ित हो जाते हैं और उनकी उम्र जब शादी संबंध बनाने की आती है तो उन्हें सामाजिक दृष्टि से काफ़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है और इनमें बहुत परेशानी आती है।
0: बड़ा दुर्भाग्यजनक है, जिन लोगों को ठीक से इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होती वो इस प्रकार की धारणा को फैलाते हैं। जैसे सफ़ेद दाग किसी बच्ची को है तो ये धारणा हो जाती है कि अब शादी नहीं कर सकते। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये कुष्ठ रोग है, जबकि स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है साइंस में भी और तमाम प्रकार की खोजों से ये स्थापित हुआ है कि ये कुष्ठ रोग अलग है, कुष्ठ रोग का भी पूरा 100% इलाज है और कुष्ठ रोग नहीं है। कुष्ठ रोग और सफ़ेद दाग का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है, अतः उनकी उपेक्षा करना बहुत ही गलत बात है। वो हमारे जैसे ही नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, उनको ज़रूरत है हमारे संबल की। केवल उनका कलर कुछ हिस्से का अलग हो जाता है, वहाँ सेल्स के प्रॉपर नहीं काम करने से, तो वो ठीक भी हो जाते हैं और किसी कारणवश से वो इलाज नहीं ले पाते हैं या ठीक नहीं होते। हमारे ही जैसे वो नॉर्मल व्यक्ति हैं, उसमें आगे जीवन में न तो कैंसर बनने की संभावना होती है, न ही कोई दूसरी बीमारी बनने की संभावना होती है। इसलिए उनको हमको उसी रूप में लेना चाहिए कि जैसे बाकी के समाज को लेते हैं, और छुआछूत उनसे करना तो बहुत ही गलत बात है, ये उनके साथ अपराध है एक तरह का।
1: डॉक्टर साहब, ऐसे ही जैसे सफ़ेद दाग होते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे ही होते छोटे छोटे स्पॉटों के रूप में, लेकिन एक बनरप होती है डॉक्टर साहब।
0: हाँ, ये भी प्रश्न है कि ज़्यादातर समाज में और स्पेशली जो विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रम रहता है कि जितनी सफ़ेद दाग होते हैं सब वास्तविक में जो विटिलिगो होता है वो नहीं होता। जैसे एक बनरफ, इसको हम लोग पिट्रेसिस वर्सिकोलर कहते हैं या टीनिया वर्सिकोलर जो बीमारी का नाम होता है, ये एक प्रकार का बहुत माइल्ड फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें भी सफ़ेद दाग से मिलते जुलते दाग होते हैं। ऐसे ही बच्चों में एक पिट्रेसिस एलवा होता है, वो भी सफ़ेद दाग। ये भी 50 से 60% टोटल सफ़ेद जो हाइपोपिगमेंटेशन, जो त्वचा के कलर से नीचे के कलर वाली बीमारियां हैं, उनमें 60 से 70% जो बनरफ, जिसको पिट्रेसिस वर्सिकोलर कहते हैं, और PLY ये होते हैं, उसमें 30-35% ही विटिलिगो के मरीज होते हैं। तो पहले तो हमको किसी को अगर दाग है तो किसी योग्य चिकित्सक को दिखा के इस बात की संतुति कर लेनी चाहिए कि वास्तव में वो विटिलिगो है भी या नहीं। जैसे आपने कहा कि बनरफ, तो बनरफ भी उससे ही मिलता जुलता, मिमिक करता है उसे। तो बनरफ एक फंगल इन्फेक्शन है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये बालों की जड़ों में फंगल होता है, इसमें खासियत ये है इसमें खुजली नहीं होती है, और ये विशेषता है गर्दन के चारों तरफ त्वचा से कम कलर के पाए जाते हैं या सफ़ेद कलर के पाए जाते हैं। जिनको लंबे समय डैंड्रफ रहता है, जिसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, उनके लोगों में ज़्यादा पाया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, ये कुछ खान पान से भी संबंधित रहते हैं?
0: खान पान से नहीं, जो लोग नमी या कपड़े शेयर करते हैं ऐसे लोगों को ज़्यादा होने की संभावना रहती है, तो थोड़ी सी मेडिसिन जो इसके लिए एंटी फंगल लोशन वगैरह आते हैं, उससे ठीक होके बाद में त्वचा कलर ही उनका हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो सफ़ेद दाग है उससे ही जोड़ कर देखते हैं?
0: जब सफ़ेद दाग हमारे जहन में आए या किसी मरीज को दिखे या किसी व्यक्ति को दिखे, तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि उसको विटिलिगो ही है। सफ़ेद दाग विटिलिगो से मिलती जुलती कई और प्रकार की भी स्किन डिसीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, तो ये हमको पता लगेगा किसी योग्य डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए, जो कोई त्वचा रोग विशेषज्ञ से दिखाएंगे, तो वो अपने ज्ञान क्लिनिकल मॉर्फोलॉजी के आधार पर बता पाएगा कि ये PLY है, कि पिट्रेसिस वर्सिकोलर है, कि और भी जो डिसीजेज होती हैं उनमें है, तो जो पहले हमको पता कर लेना चाहिए।
1: ये डॉक्टर साहब, सफ़ेद दाग और बनरफ दोनों का इलाज संभव है?
0: हाँ, बनरफ का तो 100% है, और सफ़ेद दागों में भी 70 से 80% पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। फिर आजकल तो और एडवांसमेंट हुआ है, जिसमें मेलेनोसाइट ग्राफ्टिंग, मतलब सफ़ेद दागों की भी सर्जरी होने लगी है। जिन जगह दवाई से ठीक नहीं कर सकते, तो शरीर के दूसरी हिस्से से, वहाँ से उसकी सेल्स कोशिकाओं को लेके हम लोग वहाँ प्रत्यारोपित करते हैं, जिससे कि वो सामान्य दिखने लगते।
1: हमारे

0: जो ग्रामीण भाइयों को अगर ये समस्या आ रही है तो कोई भी जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं उनसे जाके संपर्क करना चाहिए।
1: आजकल तो भारत सरकार ने हर जिले और लोकसभा लेवल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, तो ये अपने लिए बड़ा अच्छा है कि मतलब अपन मेडिकल कॉलेज में चर्म रोग विभाग होता ही होता है। वैसे चर्म रोग विशेषज्ञों की संख्या कम होती है, पर जहाँ भी मेडिकल कॉलेज है नियरेस्ट, तो वहाँ के चर्म रोग विभाग में हम जाके इसका उपचार और मार्गदर्शन ले सकते हैं।
0: अच्छा, ये जो चर्म रोग होते हैं ये कुछ स्वच्छता पर भी निर्भर करते हैं क्या?
1: बहुत ज़्यादा स्वच्छता पर चर्म रोग ही क्या, जीवन की अधिकांश बीमारियाँ निर्भर करती हैं। अगर हम स्वच्छ रहने की हमारी प्रैक्टिस होगी, आदत होगी, दिनचर्या होगी, समय समय पर अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हाथ धोना, खाना साफ सुथरा खाना, कपड़े अपने साफ सुथरे रखना, उनको धूप में सुखाना, शेयर नहीं करना, और बाजार की खुली हुई चीज़ें और दूसरी चीज़ों को नहीं खाना, साफ सुथरा पानी पीना और पानी के जो स्रोत हैं उनके आसपास स्वच्छता रखना, जल भराव नहीं होने देना, ऐसी छोटी छोटी जो हमारी आदतें, इसके कारण हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे ग्रामीण भाइयों को सफ़ेद दाग एक भ्रांति है, कोई रोग नहीं है और इसका इलाज संभव है, इसके बारे में आपने हमारे ग्रामीण भाइयों को जानकारी दी। और हमारे ग्रामीण भाई भी सामाजिक रोग न मानते हुए, एक रोग है जिसका इलाज संभव है, इसके बारे में आपने जानकारी दी और इससे हमारे ग्रामीण भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया, रौदे को अभी सुन रहे थे, भेंट वार्ता, भेंट वार्ता थी अपनी, सफ़ेद दाग कारण लक्षण और बचाव। तो अभी हमारे बीच जानकारी दे रहे थे डॉक्टर कमल भदौरिया जी और उनसे भेंट कर रहे थे सोहन सिंह। तो भैया, रौदे को हमें भी पूरा पूरा विश्वास है जो है कि आप और अन्य ये भेंट वार्ता से ज़रूर सुन के लाभ लियो हो, और हम जो ही चाहते हैं कि देखो डॉक्टर साहब ने कितने जो बातें बताई नोनी नोनी, तो सबसे पहले तो साफ सफाई को ध्यान रखें भैया, स्वच्छता तो जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, शरीर की हो चाहे खान पान की हो है? तो भैया, हृदय को जैसे जो बन रफ है या सफ़ेद दाग हैं उनसे बिल्कुल घबराना नहीं है, और जो है उनको उपचार समय पर कराएँ। और भैया अब लेते हैं तनिक विराम।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाँ भैया, और तो जो है विराम के बाद हम फिर से हाजिर हैं अपने चौपाल कार्यक्रम में। और भैया और देखो, मौसम आप और देख ही रहे हो, हमने पहले भी ये बात कही थी कि जैसी वर्षा अपन और पहले के समय देखा था हते कि कई दिनों तक झर लगे रहे थे, लगातार पानी जो है पड़त रहे तो हतो। अब तो भैया हर साल जो है बरसात को कमती हो चली जा रही है और भूमि को जो है जल स्तर भी कमती हो रहा है। तो भैया हर जो है अपन जो ही कहें कि भूमि के जल स्तर को जैसे बढ़ावे को काम करें, तो बाकी पहले देखो जैसे आवश्यकता के अनुसार सबसे पहले तो पानी को खर्च करें उतनी जितनी अपन को ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक ही पानी को खर्च करें। और भी जैसे कई बातों को ध्यान रखें, जैसे कि घर में नल की टोंटी को खुला ना छोड़ें, नहाते धोते समय जैसे बाल्टी को उपयोग करें, और यानी नल की जो पाइप है या टोंटी है टूटी फूटी है या कटी फटी है, बाय जो है जैसे पानी को रिसाव या टंकी को रिसाव है तो सही कराएं। और रसोई को जैसे पानी है साग भाजी धोते जो का करें कि पेड़ पौधे में डालें, अपने गमलों में डालें और ज़रूरत के अनुसार ही आपको उपयोग करें। और ज़रूर आ बात को ध्यान रखना है, जो भी जैसे आप सोच रहे हों भाई बहने ऐसे काए, तो भैया हर देखो वर्षा का जल बाकों जो है संचय करें, इकट्ठा करें, जासों का है जैसे ज़रूरत पड़ने पर अपन बाकों समय पे उपयोग कर सकते हैं। जब वही तो देखो कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो बात भी साँची है। तो वर्षा का जल संचय करें और भैया बाकों उपयोग समय पर करें। और अब सुनते हैं ओम प्रकाश कुशवाहा के स्वर में जो भजन।

या भजन के बाद हम फिर से हाजिर हैं चौपाल कार्यक्रम में और सभी भैयन को करते हैं स्वागत। तो भैया हरौदी को यद जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो है अपन चर्चा करी जाए, तो किसान भैयन को लें जो है एक महत्वपूर्ण जो है साधन है, जो मिट्टी की वास्तविक स्थिति के आधार पर और वैज्ञानिक खेती अपनाने जैसे उत्पादन बढ़ाने और खेती की लागत कम करने में सहायक है। जासों मिट्टी की जो है दीर्घकालीन उर्वरता बनी रहे, पर्यावरण प्रदूषण कम हो और टिकाऊ कृषि को जो है बढ़ावा मिलत रहे। और भैया हरो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता से हमारे सभी किसान भैयन का जो है सभी प्रकार के लाभ होते रहे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भूमि की उर्वरा जो है उर्वरा की जानकारी भी होते रहे और पोषक तत्वों की जैसे स्थिति की जानकारी हो और संतुलित मात्रा में जैसे उर्वरकों की जानकारी सही कम बढ़ जैसे फसल की जो गुणवत्ता और उत्पादन में जो है वृद्धि, फसल की जो है सही रूप से पोषक तत्वों का होना और जैसे भैया शासन द्वारा भी भरपूर जो है प्रयास करे जा रहे हैं कि नहीं, जैसे सभी तरह की मदद और सहायता भी दी जा रही है। जैसे हमारे किसान भैया हरन को अपनी फसल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो गए, अधिक से अधिक जो है उत्पादन और मुनाफा मिले और लागत कम लगे, कम लागत में अच्छी पैदावार और उपज अधिक से अधिक जो है प्राप्त होए। तो भैया हरो हमऊ अपने कार्यक्रम चौपाल से आप सभी किसान भैया बहनन को जो ही कहें और चर्चा के माध्यम से समय समय पर देखो अवगत करात रहते हैं कि सभी का खेती बाड़ी से जो है खूब ही मुनाफा मिले, जो भी खेती किसानी किसान भाई जो भी बीज बोए बाको अधिक से अधिक जो है उपज मिले, पैदावार बढ़े और खेती की जो है भूमि की समय समय पर देश परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है करने से देखो और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो है उपयोगिता के आधार पर लाभ प्राप्त करें। तो भैया हर जो तो चर्चा थी अपनी जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता पर, और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं जो रतनलाल कुशवाहा से जो वर्षा गीत।

0: का पहला चरण इंडोनेशिया की यात्रा के साथ आज समाप्त हुआ है और भारत और इंडोनेशिया के बीच जो कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते हुए हैं जो कई क्षेत्रों में हुए हैं, चाहे वो रक्षा हो, उद्योग हो, तकनीक हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर संस्कृति, इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस तरह से महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं वो भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को और प्रगाढ़ करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो आज हम प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी कार्यक्रम में जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: कमल जी, आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: सबसे पहला मेरा मूल जो सवाल है वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच जो द्विपक्षीय वार्ताएं हुई वो कैसे भारत के और इंडोनेशिया के संबंधों को आगे आने वाले समय में और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, और कैसे दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग जो खासतौर पर जो इंडो पैसिफिक एक क्षेत्र है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।
1: यदि हम इंडोनेशिया और भारत को देखें तो बहुत लंबे सभ्यतागत रिश्ते दोनों देशों के बीच में रहे हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति का ध्वजावाहक इंडोनेशिया भी है, और 2018 तक 1949 से जो राजनयिक कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच स्थापित हुए थे बहुत अच्छे चले। 2018 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की यात्रा की तो इन संबंधों को एलिवेट करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हमने शुरुआत की, और इसके बाद से हमने देखा कि कैसे जो एक क्रिटिकल महत्व के सामरिक क्षेत्र है इसमें न सिर्फ दोनों देशों के अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, बल्कि यदि हम हिंद प्रशांत के क्षेत्र को देख लें तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कैसे रक्षा सहयोग के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश लगातार आगे बढ़े हैं। और इसमें अब यह देखना सुखद है कि इस बार की यात्रा के दौरान जो महत्वपूर्ण MOU साइन हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी डील तो ब्रह्मोस मिसाइल प्लस डील को माना जा रहा है, जिसमें इंडोनेशिया हमारी होम ग्रोन ब्रह्मोस मिसाइल्स को न सिर्फ लेगा बल्कि फिर आगे को प्रोडक्शन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमारा भागीदार होगा। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को लेकर के, सामुदायिक सुरक्षा को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, और हमारे इलेक्टोरल मैनेजमेंट की जो सराहना की है इंडोनेशिया ने, तो EVM मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी एक बड़ा MOU दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। और ये न सिर्फ दोनों देशों के बीच के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए और विकास को विस्तार देने के लिए, हिंद प्रशांत

0: कह सकते हैं एक मैरिटाइम पेट्रोलिंग तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे उद्योग तक बढ़ाने की एक पूरी पहल हुई है। तो कैसे जो समझौते हुए हैं ये भारत और इंडोनेशिया के जो रक्षा सहयोग है, खासतौर पर जो उद्योग है और आदान प्रदान है, उसमें और ज्यादा इससे बढ़ोतरी होगी?
1: कमल जी, पहले तो हम ये समझें कि भारत की जो छवि थी वो आज से 11 वर्षों पहले तक रक्षा के क्षेत्र में एक इम्पोर्टर देश की छवि थी। हम जो अपने
0: जी
1: रक्षा के इक्विपमेंट थे वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते थे, लेकिन अब 11 वर्षों में ये देखना बहुत सुखद है कि रक्षा के क्षेत्र में हमारी छवि एक एक्सपोर्टर देश की छवि बनी है और हमने अपने यहाँ पर इतने बढ़िया रक्षा प्रणालियों को, अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों को विकसित किया है। ऑपरेशन सिंदूर में उसकी चमक और धमक पूरी दुनिया ने देखी। तो अब इंडोनेशिया के साथ भी जब हम रक्षा सहयोग की बात करते हैं तो बात द्विपक्षीय या आसियान जैसे बहुपक्षीय मंचों पर एक ज्वाइंट मिलिट्रल एक्सरसाइजेस की और सामुद्रिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह जाती। एक तो जो ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर के बड़ी डील हुई है उसको लेकर के भी आगे ये बिंदु देखने को मिलते हैं कि इंडोनेशिया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो ये पूरा हमारा आह्वान है, मिशन है, इसके तहत जो हम अपने रक्षा क्षेत्र में इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं उसमें इंडोनेशिया हमारा बड़ा साझेदार बनेगा। इसके साथ आपसी निवेश की भी बात है और जो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसको सरल बनाते हुए

कि इंडोनेशिया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो ये पूरा हमारा आह्वान है, मिशन है, इसके तहत जो हम अपने रक्षा क्षेत्र में इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं उसमें इंडोनेशिया हमारा बड़ा साझेदार बनेगा। इसके साथ आपसे निवेश की भी बात है और जो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसको सरल बनाते हुए

एस.सी. बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के लिखे बोल, मोहम्मद रफी की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म काला बाजार से। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में, फिल्म का नाम प्यासा।

लता मंगेशकर जी की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म गाइड से। संगीत था एसडी बर्मन का और बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है एसडी बर्मन की आवाज में फिल्म बंदनी से।

एस डी बर्मन का संगीत शैलेंद्र के लिखे बोल एस डी बर्मन की है आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बंधनी से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म आराधना से।

0: మన్ను బాయ్ మోటార్ చలి పామ్ పామ్ పామ్ మన్ను బాయ్ మోటార్ చలి పామ్ పామ్ పామ్
1: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
2: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें
1: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
2: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
1: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
2: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
1: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
2: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित ना करें।
1: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति ना बैठें।
2: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
1: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
2: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
1: थोड़ी सी सावधानी
2: दूर करे सभी परेशानी।
0: बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे बम बम बम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम।
3: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांग संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33

0: प्रतिशत वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
4: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ।

0: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जैस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
3: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
2: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. The Prime Minister in a social media post said he is looking forward to talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex in a joint press statement at the temple premises. Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
4: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो

0: आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज शाम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुंच गए हैं। मकानात, बेघर अफराद और शहरों की ऑस्ट्रेलिया की वजीर क्लेयर ओनील ने उनका वहां पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने कहा कि उनके इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की अहम बुनियाद है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: आज मेलबोर्न की पूरी फजा जोशो खरोश से भर गई जब ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में जमा हुई। इस पुरवकार तकरीब में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें मौसीकी और रक्स के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया। सकाफती प्रोग्राम के आगाज से कबल वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के अफराद से मुख्तसर मुलाकात की और उनके साथ गुफ्तगु भी की। तकरीब का आगाज एक मुनफरिद और अलामती मौसीकी से हुआ। इसके बाद मेलबोर्न में मुकीम मारूफ कथक डांसर संचिता एब्रोल ने दिलकश कथक रक्स पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब का अख्ताम ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा के 10 रुकनी ग्रुप की शानदार मौसीकी से हुआ, जिसने एआर रहमान के मारूफ नगमे माँ तुझे सलाम को शानदार अंदाज में पेश किया, जिससे वहां मौजूद तमाम लोग जज्बात से सरशार हो गए। मेलबोर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए महताब आलम।
0: अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत करेंगे। वो भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओज के फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारियों के इज्तम से खिताब करेंगे। इससे कबल दिन में वजीर आजम मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। दोनों रहनुमा नवी सदी के मंदिर गए, जहां वजीर आजम मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के इहाते में एक मुश्तरका प्रेस बयान में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो ने मंदिर इहाते के तहफ्फुज़ और अहिया में भारत की मदद के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम मोदी ने अपने दौरे को इंतहाई रूहानी और यादगार तजुर्बा करार दिया।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: भारत और रूस ने आज अक्वामे मुत्तहदा ब्रिक्स ईएजी और शंघाई तावुन तंजीम समेत मुख्तलिफ कसीर जहती फोरम्स पर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए तावुन को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। वजारत खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक भारत रूस मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज और रूस के नायब वजीर खारजा दिमित्री ल्यूबिंस्की ने की। दोनों ममालिक ने हर किस्म की दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों, खासतौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने दहशतगर्दों, दहशतगर्द तंजीमों, उनके दरपर्दा ग्रुपों और नेटवर्क्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर दिया। सरफैन ने इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी की सूरत हाल पर अपने ख्यालात का तबादला किया और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और दहशतगर्दी के मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए बाहमी तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अस सबा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से वली अहद को नेक तमन्नाएं पहुंचाई। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और कुवैत के दरमियान दो तरफा तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए वली अहद के अज़्म को सराहा। उन्होंने खलीजी खित्ते के ताज़ा हालात व वाक़ियात से आगाह करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। दिफाई तहकीक व तरक्की के इदारे DRDO ने आज उड़ीसा के चांदीपुर में वाक़े मरबूत आजमाइशी रेंज से तवील फासले के गाइडेड रॉकेट पिनाका का कामयाब तजुर्बा किया। وزارت دفاع نے کہا کہ راکٹ کا کامیاب تجربہ صارف کی جانب سے مقدم

कोलकाता में 5 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी थी। ये तलाशी की कार्रवाई शहरी हवाबाजी के शोबे में काम करने वाली एक निजी कंपनी से वाबस्ता मकामात पर अंजाम दी गई थी। तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के दरमियान AITC के बैंक खातों से निजी कंपनी और इससे वाबस्ता इदारे को तकरीबन 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। घरेलू हिस्से बाजार में आज जबरदस्त फरोख्त हुई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। खाम तेल की कीमतों में इजाफा, कमजोर आलमी रुझानात और एक बार फिर पैदा होने वाली ज्योग्राफियाई और सियासी कशीदगी का बाजार पर काफी असर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी है। अनकरा में मुनाकिदा नेटो समिट के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ मुजाकिरात में मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहते। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नुमाइंदे मुजाकिरात जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें इन मुजाकिरात के कामयाब होने के इम्कानात पर शुबा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका ने ईरान के खिलाफ एक नई फौजी कार्रवाई करते हुए 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीका का कहना है कि ये हमले आबनाए हुर्मुज में तजारती जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में जदीद और इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए, जिनका मकसद बैन अल-अक़वामी बहरी तिजारत को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करना था। ईरानी फौज के मुताबिक हॉर्मुज़गान और महशार सूबों में साहिली फौजी अड्डों और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में रूस के रात भर जारी हमलों में 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक शख्स की मौत राजधानी कीव में हुई। खारकीव में 2 अफराद हलाक जबकि 20 दीगर जख्मी हुए। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तयुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 12वीं सीड की खिलाड़ी मार्ता कोस्तयुक ने आज सेंटर कोर्ट में इटली की जैस्मिन पाओलिनी को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। इसी तरह 9वीं सीड की खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा ने बेल्जियम की खिलाड़ी एलिस मार्टिन्स को 6-3, 7-5 से हराया और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबोर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनज़ादे दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का इरादा किया। वह दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइशी परवाज की। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तिहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
3: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का, जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, ये जो पानी था वहाँ जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज़्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहाँ समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज़्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफ़ी सारे बदलाव लेके आता है कि जहाँ कहीं बारिश होती है पहले वहाँ सूखा पड़ने लगता है और जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहाँ की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मॉनसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मॉनसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मॉनसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है जितने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रिडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कुछ कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
2: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
0: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़े निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अभी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा। ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एनडीएमए की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होता है।
2: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एलनीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
3: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडेड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एलनीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटीजेंसी प्लान की, आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, हमारी यदि कंट्री 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
2: प्रभावित होंगे,
3: वो पहले से चिन्हित हैं। आईसीएआर के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी। और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ, तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है। तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध हैं कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आप

0: के पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है,
1: जी
0: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है। मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस। यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको, तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब बताया कि भाई अलिनो है, इस बार मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग, एनडीए में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना, कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहाँ कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहाँ पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहाँ पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, और वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो है धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरीगेशन तो रखे, जैसे 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरीगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने डेवलप की है, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई

0: किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करे कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे, हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है, इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है हमारा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए। तो ये उन इलाकों के लिए है जब ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं, जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं, उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है, और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है, क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना है, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा, तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पर किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है बता

ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं. और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर, जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पर किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता

0: अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था। और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ, ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए। और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए, एक घंटा चलेगा। और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में। तो उनको पहले से सूचित करना, भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए। या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है, तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में। आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी, तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइस देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है। और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहां से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहां से केमिकल मिलेंगी, कहां से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा। और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल्स जो है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेन भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है। और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहां जरूरत है वहां उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान

0: ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं, तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है नाटक बंटवारा, जिसके लेखक है मुरलीधर बलवानी और प्रस्तुतकर्ता है राकेश ढौंडियाल। कुछ ही पलों में सुनवाएंगे हम ये नाटक आपको, कृपया प्रतीक्षा करें।
5: प्रस्तुत है नाटक बंटवारा, लेखक मुरलीधर बलवानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढौंडियाल।

0: हाँ भाई राम प्रसाद, अब तबीयत कैसी है?
1: अब जिंदगी की इस आखिरी घड़ी में तबीयत कैसी डॉक्टर साहब?
0: ऐसा मत कहो भाई, वो भी एक डॉक्टर के सामने। जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक जियो आशा के साथ जियो। विद्याराम
2: जी,
0: आज मैं एक दवाई बढ़ा रहा हूँ, इसे रात को सोने से पहले देना।
2: जी डॉक्टर साहब।
0: अच्छा मैं चलता हूँ।
2: जी
1: बेटा। विद्या।
2: जी पिताजी।
1: मुझे लगता है बेटा कि अब बिस्तर से मैं शायद ही उठ पाऊंगा।
2: ऐसा मत कहिए पिताजी, आप जरूर ये बिस्तर छोड़ देंगे और दुकान पर भी बैठेंगे।
1: तेरा प्यार और उम्मीद अपनी जगह सही है बेटा, पर मेरी सेहत को मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि
2: कहने सुनने को बहुत वक्त पड़ा है, अब पहले आप थोड़ा आराम करिए।
3: चरण स्पर्श पिताजी।
1: सदा खुश रहो बच्चों, मैं भी कितना बदनसीब हूँ, उठकर अपने हाथों से तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दे सकता।
3: अरे इसमें क्या समस्या है पिताजी, लीजिए हम अपना सर आपके हाथों से छुआ देते हैं।
4: चलिए पिताजी आप सूप पी लीजिए। और सुनिए, आप जरा पिताजी को दो तकिए और लगा दीजिए, ये पलंग को थोड़ा और ऊपर उठा दीजिए।
3: ऐसे बैठिए, बैठिए बैठिए,
4: आप पीजिए।
1: जीते रहो बहू, ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। बेटी भगवान करे विद्या के आने वाली बहू भी तुम जैसी ही हो। बेटा ज्ञान प्रकाश, उसकी शादी के मुहूर्त का क्या हुआ बेटा?
3: पिताजी पहले आप ठीक हो जाइए, फिर सोचेंगे उसकी शादी का।
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे कारण इस शुभ काम में देरी मत करो, मैं जीते जी अपनी इस आखिरी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ बेटा। और फिर ऊपर जाकर तुम्हारी माँ को भी तो जवाब देना है बच्चों, मुझे ठीक होना होगा तो हो जाऊंगा, पर इस शादी को समय पर हो जाने दो बेटा, अकेली महिमा कब तक मेरा और घर का बोझ उठाएगी?
3: पिताजी आते सोमवार का मुहूर्त निकला है।
1: अच्छा अच्छा है, बस तो तुम अब तैयारी शुरू कर दो बेटा। अरे भाई हमें कौन सा

0: उन्होंने मेरी सेवा की है।
1: पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे तो भाभी ने ही पाला पोसा है।
0: अब तुम जाओ बेटा और सब बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों का आशीर्वाद ले लो। मुझे मुझे ज्ञान प्रकाश से कुछ बात करनी है बेटा। बेटा ज्ञान प्रकाश
2: जी, कहिए पिताजी।
0: मुझे नहीं लगता कि अब मैं अधिक समय इस बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। सच पूछो तो मैं खुद इस लाचारी के जीवन से अब मुक्त होना चाहता हूँ।
2: भगवान के लिए आप ऐसी बात ना करें पिताजी।
0: बेटा मैं मानता हूँ कि माँ बाप की सेवा एक पुण्य का काम है, पर यह भी उतना ही सच है कि किसी की सेवा लेना भी एक कर्ज के समान है जिसे इंसान को अगले जन्म में चुकाना होता है।
2: ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं पिताजी।
0: नहीं बेटा नहीं नहीं, बहरहाल मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ बेटा कि हमारी संस्कृति में घर को एक मंदिर कहा गया है, जहाँ परिवार वाले यदि सुख शांति

0: पिताजी, आप मुझे हरास करके नहीं जा सकते। बोलिए बोलिए पिताजी, बोलिए।
1: रघु बेटा, बहुत खेल लिया, अंदर चलो और होमवर्क करो अब अपना। तुम्हारे पापा भी आने वाले होंगे, और हाँ, अब मैं कोई बहाना नहीं मानूंगी तुम्हारा, सीधे अंदर आओ।
2: दीदी, दाल सब्जी बना दूं, चावल चढ़ा दूं अभी?
3: अरे नहीं नहीं रानी, तू रहने दे। और ये बता, विद्या कहाँ है?
2: वो तो दुकान चले गए दीदी, मैं खाना बनाती हूँ ना।
3: अरे नहीं, तेरे हाथों की तो अभी मेहंदी भी नहीं सूखी, और वो कहाँ छोड़ के चला गया तुझे? वापस आए तो मजा चखाती हूँ उसे। और हाँ रानी, पिताजी के देहांत की वजह से तुम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा सके, कम से कम कुछ वक्त तो उसको घर में गुजारना था तुम्हारे साथ।
2: वो कह रहे थे दीदी कि घर पर पिताजी की याद आती रहती है।
3: अब उन्हें याद करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुझे तो तेरा दुख हो रहा है। तेरे हाथ पीले होते ही सर पर दुख की घड़ी आन पड़ी।
2: ये मेरी ही किस्मत का दोष है दीदी, अभी चांद ठीक से देखा भी नहीं था कि ग्रहण लग गया।
3: दिल छोटा न कर, और मेरी मान, अब तू 2-4 दिन के लिए अपने मायके चली जा, और हाँ, विद्या को भी साथ ले जा, दोनों का मन बहल जाएगा।
2: आप ही मनाइएगा दीदी अपने देवर को।
3: ठीक है, मैं ही तैयार करती हूँ उसे, ठीक है?
4: अरे भाई, क्या गपशप हो रही है देवरानी जेठानी में?
3: जी मैं कह रही थी कि घर में गमी की वजह से विद्या नई बहू को कहीं घुमाने तो ले नहीं जा पाया, तो अब कम से कम 2-4 दिन उसे उसके मायके ही ले जाए।
4: कभी कभी भाई तुम भी अकल की बात कर लेती हो।
3: हाँ, मैं कम से कम कभी कभी तो कर लेती हूँ।
4: बहरहाल तुम्हारी सलाह 16 आने सही है। विद्या
5: जी भैया,
4: तुम कल ही ससुराल निकल जाओ। अरे भाई, थोड़ी सेवा तो करवाओ ससुराल वालों से।
5: नहीं भैया, अभी मेरा मन नहीं है।
4: अरे भाई, हर चीज मन के हिसाब से नहीं की जाती है, हैं? जरा नई दुल्हन का भी तो सोचो।
5: ठीक है भैया, आप इतना जोर दे रहे हैं तो चला जाता हूँ।

0: माँ कैसी हो तुम?
1: अरे अरे रानी, मेरी बच्ची, तू यहाँ? तूने तो आज दिल खुश कर दिया मेरे बच्चों।
2: अरे बेटी, अरे वाह वाह, दामाद जी कहाँ हैं?
0: वो आ रहे हैं पिताजी, मैं तो दौड़ कर चली आई।
3: चरण स्पर्श,
2: जीते रहो।
1: तुम्हारा बहुत आभार है।
0: माँ ये तो बताओ, भैया और लता कहाँ हैं?
2: दोनों कॉलेज गए हैं। अरे भाई दुलारी
1: जी,
2: जरा दामाद जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो।
1: जी जी।
2: वो कमरा तैयार करो।
1: जी जी।
2: बेटा, तुम्हारे भैया भाभी तो कुशल पूर्वक है ना, और उनका बेटा?
3: सब आनंद में है।
2: चाय नाश्ता करके मुंह हाथ धो लो, तो तुम्हें भी मैं दुकान ले चलता हूँ।
1: अरे अब छोड़ो भी, और तुझे माई जी को पूरा आराम करने दो।
2: ये भी ठीक है। शाम को अर्जुन से कह देना शहर घुमाने ले जाएगा।
4: बेटी, तेरी ससुराल में सब ठीक तो है ना?
0: हाँ माँ, बस ठीक ही है।
4: अरे मुझे तो तेरी बड़ी फिक्र होती है।
0: क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो तुम?
4: बेटी, तेरे ससुर की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति तो बड़े बेटे के हाथ आ गई। पता नहीं तेरे पति को पूरी जायदाद की जानकारी है भी कि नहीं। हे तू जरा पूछती रहा कर, क्योंकि जमीन जायदाद में आधा हिस्सा तेरे पति का भी है।
0: वो तो मैं पूछ लूंगी माँ, पर अभी से क्यों?
4: अरे इससे पहले कि तेरे जेठ का वो छुटकू बेटा है ना, वो हिस्सेदार बने, तू अपना हिस्सा लेकर अलग हो जा, बाद में बड़े झंझट होते हैं।
0: ये बात तो तुमने बड़े ही पते की है।
4: अरे वही तो। और देखना, तू तो अभी बच्ची है, मगर मैंने दुनिया देखी है।

मैंने सुना है तेरे ससुर का लगाव भी बड़े बेटे से ज्यादा था। कहीं ऐसा न हो कि पूरी जमीन जायदाद बड़े बेटे के नाम ही कर गए हो वो।

0: माता जी, अब मुझे और रानी को वापस घर जाने की इजाजत दें।
1: जल्दी क्या है?
0: भैया दुकान पे अकेले हैं, मेरे ना होने से उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है, जरा भी आराम नहीं कर पाते। ऊपर से भाभी भी घर का काम अकेले कर करके थक जाती होंगी।
1: देखा रानी, मैं ना कह रही थी कि दामाद जी को तुझसे ज्यादा भैया भाभी की चिंता है।
0: ये बात नहीं है, अब बड़ों का मान तो रखना ही चाहिए ना।
1: बेटा, हम भी तो तुम्हारे माँ बाप समान हैं। अरे, 2-4 दिन और रुक जाते तो हमें भी अच्छा लगता।
0: देखिए माता जी, अब ये उस घर की बेटी ज्यादा है, ज्यादा वक्त तो उसे वहीं गुजारना है ना।
1: ठीक है बेटा,

0: क्या बात है, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? मायके वालों की याद आ रही है क्या?
1: नहीं, मैं कुछ और सोच रही हूं।
0: और क्या सोच रही हो भाई?
1: मैं देख रही हूं कि तुम दुकान पे जाते भी जल्दी हो और रात को भी अक्सर देर से आते हो। जेठ जी का लाया दुकान पे ठंडा नाश्ता और खाना खाते हो, जबकि जेठ जी वो तो तीनों वक्त का खाना घर पर खाते हैं, गर्मा गर्म, और वो भी आराम से।
0: बड़े होने के यही तो फायदे हैं। जब पिताजी थे तो वो मेरे वाला काम बड़े भैया करते थे और मैं पढ़ाई करता था।
1: अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि बड़े भैया दुकान पे कम बैठते हैं।
0: अरे भाई, बाहर के भी कई काम होते हैं जो सिर्फ भैया ही करते हैं। खरीदारी, सामाजिक काम, बिजली, टेलीफोन बिल भरना। अब इसके बीच अगर वो घर पे आकर खाना खाते हैं तो क्या?
1: केवल खाना खाने की बात नहीं, 1 घंटा आराम भी करते हैं घर पर, और तुम्हारा खाना इतना लेट लाते हैं।
0: तो क्या हुआ, मैं नाश्ता भी तो लेट करता हूँ।
1: इसीलिए कि जेठ जी तुम्हारा नाश्ता लेट लाते हैं। तुम दिन रात दुकान भी संभालो और खाना भी वक्त पर न खाओ। नई शादी तुम्हारी है और घर पर ज्यादा वक्त बड़े भैया बिताते हैं।
0: देखो रानी, कल को जब रघु बड़ा होगा वो भी मुझे आराम देगा। आखिर मेरी उम्र ही क्या है जो अभी से आराम का सोचूं। इसलिए तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो।
1: तुम अपनी चिंता खुद करते तो मुझे क्या पड़ी थी जो तुम्हारे बारे में सोचती। अच्छा एक बात तो बताओ, दुकान का हिसाब किताब, जमीन जायदाद का लेखा जोखा ये कौन रखता है?
0: बड़े भैया, आज तुम ये क्यों बात कर रही हो?
1: मैं भी तो जरा समझूं कि तुम्हारी कमाई क्या है और मेरे हिस्से में क्या रहेगा।
0: हे भगवान, अभी से ये चिंता? तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं भैया से लेके दे दूंगा। घर खर्च के अलावा 200 रुपए काफी रहेंगे।
1: इतने में तो मेरा मेकअप का सामान भी नहीं आएगा।
0: तो 500 रुपए ले लेना बस। अब जरा सोने भी तो।
1: ये तो पूरी तरह से अपने भाई पर आश्रित है। यही हाल रहा ना तो मुझे भी दीदी की गुलामी करनी पड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा रानी, कोई तो चक्कर चलाना पड़ेगा।

0: भाभी ये क्या, अब तो रानी घर में है, वो भी एक महीना पुरानी, फिर भी चाय तुम ला रही हो।
1: वो भी सो रही है।
0: अरे भाभी मैं उसे उठा के आया था अभी।
1: फिर आंख लग गई होगी, देर रात तक मायके वालों से बतियाती रही। अब मुझे लगता है तुम उसका ख्याल नहीं रखते विद्या।
0: लो उल्टा उसे तुम्हारा और हम सबका ख्याल रखना चाहिए।
2: ऐसा नहीं है विद्या, हम सबको भी तो उसका और उसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए ना, आखिर वो तो छोटी है ना।
0: उसकी बातों से तो वो छोटी नहीं लगती भैया।
2: क्या मतलब?
0: मेरा मतलब उम्र से क्या होता है, उसकी सोच और सियानापन तो बड़े बूढ़ों वाला है।
1: विद्या ऐसा नहीं कहते अपनी पत्नी के लिए।
0: बहरहाल भाभी तुम उससे ज्यादा नरमी और लाड़ मत करो, घर के काम में पूरी पूरी मदद लो। अब मैं चलता हूँ, दुकान के लिए तैयार होता हूँ।
2: ये विद्या आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है?
1: पता नहीं क्या हुआ है आज इस लड़के को।
3: ये लो तुम्हारा दूध।
0: क्या बात है, आज ये तुम्हारी आवाज में गुस्सा क्यों है?
3: दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करूंगी तो कहीं तो गुस्सा निकलेगा ही ना।
0: घर के काम में भी कोई थकावट होती है।
3: अब तुम्हें तो दुकान के काम में नौकर की वजह से थकावट नहीं होती, तो जरूरी नहीं कि औरों को भी ना हो। घर में तो नौकर भी नहीं।
0: अच्छा चलो तुम सो जाओ बस।
3: मैं सो या जागू तुम्हें से क्या, तुम्हें तो मेरी बातें सुनने का भी समय नहीं।
0: हे भगवान।

0: जान अब क्या हुआ?
1: जब तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती तो क्या बात करूं तुमसे? कुछ पूछो तो तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं रहता।
0: क्या मालूम नहीं है?
1: तुम्हारी दुकान की कमाई कितनी है?
0: ये तो सचमुच नहीं मालूम। मैंने बताया तो सब हिसाब किताब भैया रखते हैं, पर तुम्हें उससे क्या? तुम्हें 500 रुपए दे दिया करूंगा।
1: सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आजादी भी कोई चीज होती है। तुम दुकान की गुलामी करो और मैं घर की। हम कब घूमेंगे, सिनेमा देखेंगे, बाहर खाना खाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब? अरे इतनी उम्र हो गई, शादी हो गई, एक गाड़ी तक तो है नहीं तुम्हारे घर में। कल को तुम्हें अगर अपना धंधा करना पड़े तो तुम्हें क्या जानकारी है धंधे की, सरकारी कामों की, कोर्ट कचहरी की, कमाई खर्चे की?
0: पर भैया के रहते मैं क्यों अलग धंधा करने लगा?
1: अगर कल को भैया ही नहीं रहे तो?
0: रानी ये क्या बकवास कर रही हो तुम?
1: सच्चाई बोलो तो तुम्हें बकवास ही लगती है। कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या वो भी अपने ताऊ जी के सामने हाथ फैलाए अपने लिए खर्चा मांगेंगे? किसी पे इतना आश्रित होना भी ठीक नहीं है।
0: मेरा दिमाग खराब ना करो, चुप हो जाओ प्लीज।
2: अरे अभी तक तुम बहू को सुबह नहीं उठा रही हो? तुम्हें विद्या ने उस दिन कहा तो था ना, कम से कम अपनी तबीयत का तो ख्याल करो। वो सारा दिन टीवी देखती है या मायके बात करती रहती है। अरे भाई नई दुल्हन 9 दिन की, अब तो 4 महीना होने को आए, तुम कब तक यूं अकेली खपती रहोगी?
3: अब आप कब से मेरी चिंता करने लगे हाँ?
2: अरे भाई जब तक अकेली थी तब तक कोई चारा नहीं था, खामखा बहू को क्यों आलसी बना रही हो?
3: अब ठीक है, विद्या तो तुम्हें कम से कम आराम देता है ना, तुम तो दोनों तरफ से सुखी हो, घर हो या दुकान। अब मेरे सुख की तो तुम छोड़ ही दो।
2: अरे बीमार हो गई तो मेरे ही पल्ले पड़ोगी ना।
3: घर का काम करने से भी कोई बीमार पड़ा है क्या भला?
2: ठीक है भाई, तुम औरतों की चिंता करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत।
0: रानी तुम आज भी जल्दी नहीं उठी।
1: अब तुम ही तो रात को देर तक जगाते हो।
0: ये बहाने छोड़ो और बिस्तर छोड़ो, मेरे दुकान जाने का वक्त हो रहा है और तुम हो कि?
1: तुम्हें ध्यान रहता है, रात को 11 बजे सोई थी।
0: सुबह के 8 बज रहे हैं, सेहत के लिए केवल 6 घंटे की नींद काफी होती है। शादी को पूरे 4 महीने हो चले हैं, अब तो भाभी का हाथ बटाओ।
1: अरे वाह, भाभी की बड़ी फिक्र है।
0: तुम जानती हो मेरी माँ की जगह है मेरी भाभी, वो तुम्हारी तरह नहीं है, नाम से रानी और काम में महारानी।
1: अरे वो तो मुझसे पूरा काम करवाती भी नहीं।
0: अरे वाह, तुम्हें खुद भी तो अपनी जवाबदारी का एहसास होना चाहिए, ये घर तुम्हारा नहीं है क्या?
1: मेरा घर तो वो होगा जो तुम बनवाओगे मेरे लिए।
0: मेरा हिस्सा भी है इस घर में।
1: सच भी, अगर तुम्हारा हिस्सा है तो उसे लेके अपना एक अलग घर बनाओ। वैसे भी आजकल अलग जीने का जमाना है और इसका मजा भी कुछ और ही है। वैसे भी तुम्हें यूं घर के लिए पिसता देखकर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
0: मेरा पिसना दिख रहा है, भाभी का पिसना तुम्हें दिखाई नहीं देता। 8 साल का था जब अम्मा चल बसी, तब से हम 3 मर्दों को पालती आ रही हैं।
1: मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ग्रेजुएट होकर भी तुमने कोई नौकरी क्यों नहीं की।
0: ये मेरी बात का जवाब नहीं है।
1: मैं ये फालतू के सवाल जवाब नहीं जानती। तुम्हें मेरे साथ सुखी जीवन गुजारना है तो इस घर से निकलो और खुद की अपनी कहने लायक जमीन जायदाद और दुकान लो, नहीं तो नौकरी ही कर लो। मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी और तुम्हारे भविष्य की चिंता है, मेरा क्या, मैं तो मजे से जी रही हूँ।
0: शायद तुम सही कह रही हो, जब तक तुम्हारे सर पे नहीं पड़ेगी तुम अपना महारानीपन नहीं छोड़ोगी, और मेरी माँ समान भाभी सारी उम्र यूं ही नौकरानी बनकर मरती खपती रहेगी।
1: अब आई ना बात भेजे में, मुझे भी तुम्हारी कमाई का पूरा पैसा चाहिए, ना कि उस आधी कमाई का जिसको कि कमाते तुम अकेले हो।
0: ठीक है मैं चलता हूँ, समय देख के भैया से बात करूंगा। प्रणाम भैया।
2: आओ आओ विद्या, चाय आने ही वाली है।
0: भैया अगर बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछना चाहता था।
2: अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, दिल खोल के और बिना किसी झिझक के पूछो।
0: मैं सोचा था कि मैंने खर्चे के 500 रुपए ले तो लेता हूँ, पर ये कहीं दुकान की कमाई के हिसाब से ज्यादा तो नहीं?
2: अरे नहीं नहीं, अच्छा हुआ जो तूने आज दुकान की कमाई की बात निकाल दी, अब तुझे भी दुकान और जमीन जायदाद के बारे में जान लेना चाहिए। आखिर तो मेरे बाद तू ही संभालेगा ये सब, तुझे तो पिताजी ने नौकरी नहीं करने दी। मैं तो खुद चाहूंगा कि रघु अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करे, दुकानदारी तो तू देख रहा है, कितनी मगजमारी है इसमें। बहरहाल हमारी दुकान की कमाई है करीब 25,000 रुपये महीना, सो धीरे धीरे करके करीब 50,000 की बैंक से FDR बनवा के रखे हैं। अब तक करीब 10 लाख रुपए की FDR हो गई होगी। खेती वाली जमीन भी करीब 10 लाख रुपए की होगी। बाकी ये घर और दुकान का स्टॉक वगैरह, ये है हमारी कुल संपत्ति जिस पर हम दोनों में बराबर बराबर का हिस्सा है।
1: आपने अपने पिता समान भाई से आज सुबह कोई बात की?
0: की थी।
1: तो क्या बताया उन्होंने?
0: यही कि दुकान की कमाई करीब 25,000 रुपये महीना है और घर जमीन मिला के कोई 40-45 लाख की कुल संपत्ति होगी।
1: अब बताओ, लखपति होकर भी तुम इस 8x8 के कमरे में सड़ रहे हो। सुनो, क्यों ना हम अपना घर ले ले, आज नहीं तो कल हमारे भी बच्चे होंगे ना।
0: वो तो इसके ऊपर भी कमरे बन सकते हैं।
1: चलो ये ही सही, तुम अपना घर ऊपर बनवा लो या फिर भैया ऊपर रह ले।
0: पर अभी कहाँ उसकी जरूरत है।
1: अरे दिन ब दिन मटेरियल की कीमत भी तो बढ़ती जा रही है।
0: हाँ ठीक है, मैं भैया से बात करूंगा, पर रसोई एक जगह ही होगी। हाँ
1: अच्छा बाबा अच्छा, तुम बात तो करो। ये लीजिए भैया, चाय लीजिए।
2: अरे वाह, आज चाय तुम लाई हो। महिमा की तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ भैया, दीदी की तबीयत बिल्कुल ठीक है।
2: अरे वाह, चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है तुमने।
0: अब आपको रोज यही मिलेगी भैया। अच्छा भैया, मेरे मन में ख्याल आया है, क्यों ना हम 2-3 FDR कैश करवा के ऊपर 2 कमरे बनवा लें। साल दर साल मटेरियल और लेबर की कीमत बढ़ती जा रही है, हम अपना कमरा रघु के लिए खाली करके ऊपर के कमरों में शिफ्ट हो जाएंगे।
2: तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर
0: क्या भैया,
2: घर के 2 टुकड़े हो जाएंगे।
0: नहीं होंगे भैया, हम दोनों सिर्फ रात को ऊपर सोने जाएंगे और रसोई भी तो नीचे रहेगी ना।
2: पर इसमें तो तुम दोनों को ही परेशानी आ सकती है, कभी ऊपर कभी नीचे।
0: हम कौन से बूढ़े हैं भैया, आप अभी से ये सब कुछ सोच रहे हैं।
2: हाँ, नहीं नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, ये काम निपटा ही देते हैं।
0: लो भाई, तुम्हारे अपने घर का सपना इतनी जल्दी पूरा कर दिया। आज तो गृह प्रवेश के कार्यक्रम में पूरी तरह थका दिया।
1: लाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। और हाँ, घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तो तुमने मेरा बस 50% सपना ही पूरा किया है।
0: हे भगवान, ये बाकी का 50% सपना क्या है तुम्हारा?
1: बाकी के 50% सपने पूरे होने की खुशी मुझे कम और तुम्हें ज्यादा होगी डार्लिंग।
0: अब ये पहेलियां छोड़ो और साफ साफ बताओ कि तुम और क्या चाहती हो।
1: मैं चाहती हूँ कि अपने घर की तरह तुम्हारी अपनी दुकान भी हो जाए। दिन रात जी तोड़ मेहनत तुम करो और कमाई 50%। इतनी मेहनत तुम अपनी दुकान पर करोगे तो पूरी की पूरी 100% कमाई तुम्हारी, और फिर हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए भैया से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या वो भी अपने ताऊजी पर आश्रित होंगे?
0: ये क्या कह रही हो तुम, पहले घर अलग अब दुकान भी अलग।
1: अलग कहाँ, एक आवाज भर तो दूर है हम घर में।
0: मगर ये बात शायद भैया ना माने।
1: तुम बात तो करके देखो, घर के वक्त भी तुमने यही कहा था।
2: वाह भाई वाह, आज तो हल्का खा के मजा आ गया। आओ विद्या, आओ बैठो, आओ बहू। अरे रघु सो गया हो तो तुम भी आ जाओ महिमा। वाह भाई वाह, आज तो हल्का खा के मजा आ गया। आओ विद्या, आओ बैठो, आओ बहू। अरे रघु सो गया हो तो तुम भी आ जाओ महिमा।
3: लो जी, मैं भी आ गई। आज क्या खास बात है जी, पूरा का पूरा कुनबा इकट्ठा किया है आपने? हाँ
2: मैंने सोचा है विद्या, आज से दुकान पर मैं बैठूंगा और तुम बाहर के काम देखोगे। इसी बहाने तुम्हें पता भी चलेगा कि दुकानदारी के अलावा क्या क्या काम तुम्हें देखना और समझना है।
0: पर ये सब अचानक क्यों भैया?
2: देखो विद्या, अब मैं इतना जवान तो रहा नहीं कि भागा दौड़ी करूं। तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं दुकान संभालूंगा, आप आराम से दुकान पे आना। सो अब मुझे भी लगता है कि मुझे ज्यादा आराम दुकान पर बैठने से मिलेगा बजाय ये भागा दौड़ी करने में। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि कल से घर का खर्चा, जमीन जायदाद के कागज, शेयर, ये सब रानी संभाले।
1: ये क्या कह रहे हैं भाई आप?
2: देखो बहू, अब तुम भी इस घर का ही हिस्सा हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें भी विद्या और अपने भविष्य को लेकर कुछ आशाएं और कुछ उम्मीदें होंगी। कल को तुम लोगों के बच्चे होंगे। मुझे केवल महीने के 1000 रुपए दे दिया करो बस।
0: पर भैया ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं?
2: मुझे अपनी बात पूरी करने दो विद्या, बाद में इसी संपत्ति को लेकर बंटवारा हो जाए, इसलिए बेहतर है कि ये सब अब तुम संभालो।
0: भैया मैं आपसे कभी अलग नहीं होऊंगा, लक्ष्मण भी कभी राम से अलग हुआ है।
2: अरे तू किस युग की बात कर रहा है? अगर ऐसा नहीं था तो तूने घर को क्यों अलग करने की सोची? कल को तू दुकान अलग करने की सोचेगा तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। पिताजी को मैंने मरते वक्त वचन दिया था कि विद्या मेरे बेटे समान है, जीते जी मैं इसे कभी अपने से जुदा नहीं करूंगा। अब अगर तू कल को दुकान अलग खोलेगा तो फिर रसोई कब तक साझा रहेगी? और जब रसोई साझा नहीं रही तो दिल कैसे मिले रहेंगे? इससे पहले कि हम लोग भी एक दूसरे के लिए बेगाने हो जाएं, तुम दोनों मिलकर घर दुकान और जमीन जायदाद की जिम्मेदारी उठा लो। मुझे कोई तकलीफ नहीं है इससे। अरे क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो?
1: मुझे माफ कर दीजिए भैया, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही दो भाइयों के बीच दरार पैदा करने की सोची। मैं आपको नहीं जान पाई थी, शायद मैंने आपको बहुत गलत समझा भैया, मगर आप
2: अरे अरे अरे अरे रो मत, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कोई भी नई बहू ऐसा सोच सकती है। अगर तुमने मुझे सीधे से ये बात कही होती तो भी मेरा फैसला यही होता, क्योंकि विद्या मेरा भाई नहीं बेटा है।
1: भैया मैं ही स्वार्थी हो चली थी, मेरे स्वार्थ के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए।
2: मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया
1: जी।
2: अब कभी मत भूलना कि स्त्री तो घर की धुरी होती है
1: जी,
2: जिसके दम पर घर का चक्र चलता है।
0: मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं अपनी पत्नी के प्यार में छुपे स्वार्थ को नहीं देख पाया।
2: चलो शुक्र है, वक्त रहते घर पर आने वाला संकट टल गया। पश्चाताप के आंसुओं के प्रताप से तो बड़े बड़े पाप माफ हो जाते हैं। पता नहीं तुम लोग कैसे भूल गए कि जो शांति प्यार और एकता एक परिवार में है, अकेले में कहां।
0: भैया आपने हमें सच में माफ कर दिया है ना?
2: वैसे कहते हैं गलती इंसान करता है और माफ ईश्वर करता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से तुम्हें खुले दिल से माफ करता हूं अपने स्वार्थ के लिए।
3: अब इसका क्या मतलब हुआ जी?
2: ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान दूसरों की गलतियों को माफ करता है, ईश्वर फिर उसकी गलतियों को माफ करता है। समझी मेरी समझदार पत्नी?

0: अभी आप सुन रहे थे मुरलीधर बलवानी का लिखा ये नाटक बंटवारा। भूमिका सहित भाग लेने वाले कलाकारों का विवरण इस प्रकार है। डॉक्टर थे देशबंधु शुक्ला, रामप्रसाद, विजय दिंडोरकर, विद्याराम, अमित रिछारिया, ज्ञान प्रकाश, संजय मेहता, महिमा थी भारती ठाकुर, रानी की भूमिका निभा रही थी कंचन राजानी, दुलारी शिवांगी पवार और तीर्थ प्रकाश थे श्याम मुंशी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आपने सुना मुरलीधर बलवानी द्वारा लिखित नाटक बंटवारा। प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन राग हमीर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है।

इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।